0: इजाजत हो तो सुना
1: दूं। RM2
2: Radio Masti.
1: Feel the Masti.

0: Chillax with Radio Musty.
1: सुप्रभात, नमस्ते और एक प्यारे से गुड मॉर्निंग जी यू. मैं हूँ निर्मणि और आप अभी सुन रहे हैं चिल्लैक्स मॉर्निंग, जहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मॉर्निंग हो सबसे बेस्ट. अरे नई सुबह, नई उम्मीदें और नए गाने लेकर हम 3 घंटे तक आपके साथ हैं. तो अगर आप काम के लिए निकल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या बस गर्म चाय या कॉफ़ी का मजा ले रहे हैं, हम आपके साथ हैं. चलिए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाने के साथ आपके ही आरम जू रेडियो मस्ती पर.

0: Tracks with Radio Musty.
1: कभी कभी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर नई सुबह हमें एक नया मौका जरूर देती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि कल की टेंशन को वही छोड़ देना चाहिए और आज की मुस्कान पर फोकस करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच पूरा दिन बदल सकता है। तो अगर आप ऑफ ऑफ फील कर रहे थे तो नो वरीज जी, गानों से हम आपको ठीक कर देंगे। आप बस वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। इट्स योर RM2 रेडियो मस्ती, जहाँ पर चिल्लैक्स शो ऑन गोइंग है।
0: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: कुत्ता हो गया ना।
1: अरे हजरता मुझे टोनिया से बचाओ। ए हजरता

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: पहले आंख लड़ाइए, फिर आगे बढ़ जाइए। बढ़

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: इस वक्त हो चला है आपके होरोस्कोप का। सितारे क्या कहते हैं, किस बात पर ध्यान देना चाहिए और किस बात से मिल सकती है खुशखबरी, चलिए जानते हैं आपके राशिफल के हिसाब से। और हर राशि के साथ रहेगा आपका आज का लकी कलर नंबर। तो शुरुआत करते हैं वेदर।
2: एरीज मेष राशि।
1: अरे वाह, आज आपके अंदर भरपूर उत्साह रहेगा। जो काम काफ़ी समय से रुक गया था उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखिए और सोच समझ कर आपको फैसला लेना है। लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज घर और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी से कदम बढ़ाइए। किसी अपने की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। लकी कलर आज आपका है ग्रीन और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज बातचीत का तरीका ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक हो सकती है। अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज ना आपको भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं लेना है। धैर्य और शांति से काम लेंगे तो हर परिस्थिति में आपके पक्ष में नजर आएगी। परिवार का साथ मिलेगा। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रभावित करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सहाराना हो सकती है। विनम्रता बनाए रखिए। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज हर काम को योजना के साथ पूरा करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों पर अधिक चिंता करने से बचिए। दिन धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। लकी कलर आपका है नेवी ब्लू और नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज संतुलन बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। किसी पुराने दोस्त से भी बातचीत हो सकती है। लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 6।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज अपनी सोच को सकारात्मक कर रखिए। किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है। किसी पर भी तुरंत भरोसा करने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा। लकी कलर आपका है मरून और नंबर आपका है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज सीखने और आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। यात्रा का योग भी बन सकता है। मुस्कुराते रहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है। काम को समय पर पूरा करने की कोशिश कीजिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। लकी कलर आपका है ब्राउन और नंबर है 4।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज नए विचार और नए इरादे आपको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। खुद पर भरोसा बनाए रखें। लकी कलर आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज अपने दिल की बात ध्यान से सुनिए, लेकिन फैसले हमेशा सोच समझ कर लेना। सृजनात्मकता काम में सफलता मिल सकती है। शांति बनाए रखें। लकी कलर आपका है सी ग्रीन और नंबर है 12।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अशिता नमस्कार।
1: नमस्कार। रविवार शनिवार 11 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को नमस्ते और प्रणाम। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ फ्लैश न्यूज की शुरुआत करती हैं। मॉरिशस सरकार ने एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 547 मवेशियों को आज उतारने की अनुमति दी। उन्हें पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा। और शागुस समझौते पर मॉरिशस ने ब्रिटेन से स्पष्ट समय सीमा मांगी है, जबकि दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा ने घरेलू हिंसा विधेयक को भी बिना संशोधन के पारित कर दिया है, जिससे पीड़ितों की सुरक्षा और मजबूत होगी। सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पेंशन को समाप्त नहीं किया जाएगा और मींस टेस्ट का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। और आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष का विषय युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने पर केंद्रित है। सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन यानी कि यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग को लेकर आज पोर्ट लुइस में ट्रेड यूनियनों का विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। सोशियोलॉजिस्ट राजेंद्र संतू का कहना है कि मॉरिशस में बुजुर्गों की भूमिका बदल रही है, लेकिन पेंशन व्यवस्था का बोझ भविष्य में युवाओं पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप में भीषण गर्मी के कारण सूखे इलाकों में जंगल की आग का खतरा बढ़ गया है। कई देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा है। दक्षिणी स्पेन में भड़की आग के कारण कई बीघा जंगल नष्ट हो गई है और 12 लोग मारे गए, जबकि 23 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास अभी जारी है। और बात करें हम स्पोर्ट्स के बारे में तो फीफा विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेली गई हाल के मैच में लॉस एंजेलिस के सूफी स्टेडियम में स्पेन वर्सेस बेल्जियम का स्कोर रहा स्पेन 2-1 और मेरिनो का 88 मिनट पर दूसरा गोल रहा स्पेन के लिए। गौरतलब है कि कल रविवार सुबह 1 बजे नॉर्वे खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ और सुबह 5 बजे अर्जेंटीना खेलेगा स्विट्जरलैंड के खिलाफ। नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला काफ़ी निर्णायक सिद्ध हो सकता है, स्पेशली यदि इंग्लैंड के फैंस इस विश्व कप में इंग्लैंड को फाइनल में देखना चाहते हैं। इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर।
2: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
1: मौसम का हाल आम हालत हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी, बाद में दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा। रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर रहकर वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यानी कि 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच सेंट्रल प्लेटो पर, साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:44 पर। तो इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारे ड्रॉप की मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 जहां हम इन सुर्खियों को विस्तार देंगे।
4: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार।

0: अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी।
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू।

0: Tracks with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका वंस अगेन चिलैक्स शो में विद Nilmani, जहाँ पर आपको मीठी सी जगा रहे हैं 5 बजे से. वेकी वेकी मेरे प्यारे लिसनर्स, सैटरडे का दिन है, जो भी काम पेंडिंग था उसे खत्म करेंगे और रिलैक्स करेंगे. अभी के लिए गाना हो जाए आप सभी सुनने वालों के नाम.
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: से ले चलेंगे आपको वहां जहां पर प्यार ही प्यार है और प्यार से याद आया कि आपके प्यार प्यारे मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। तो आप हैं कमलदीप जी, आप डेडिकेट करना चाहते हैं गाना, ब्यूटीफुल गाना अपनी नीस एंजल के लिए, मेरे भी और वेदू दीदी के लिए भी जरूर जी। शतुबेनागा से वी हैव ज्योति जी नेक्स्ट गाना मांग रहे हैं आशनी रेखा सुरेखा माधव फैमिली के लिए एंड गुडलैंड से आप है चोगलाल फैमिली बेस्ट विशेस भेज रहे हैं सभी को एंड आप है सायरा बानो जी और गाना मांग रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए जो काम पर जा रहे हैं अमिचे फीलिंग स्टेशन पर। बों कुराज टू जी, सलाम आपकी मीठी वाणी को साथ ही हमारे दिन की शुरुआत एकदम मस्ती भरा ताजगी से लुफ्त उठाने के लिए धन्यवाद। आप है माला सुमारू जी कैथोबोन से शुभ सवेरा, थैंक यू आपको भी। नमस्ते डी, आप है हिमलता भंजन जी पांथुपिमा से, थैंक यू इन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के लिए। नेक्स्ट गाना आप मांग रहे हैं अपने ब्रदर विक्रम बिपन और फैमिली के लिए भजन सुभग सुदाम बोईजनाथ गंगू मेघराज दामरी फैमिली और आप विश कर रहे हैं सभी को वेरी गुड डे एंड साज हॉस्पिटल से कनेक्टेड है जयशन जी, गाना मांग रहे हैं तेम्बा जीवन उमिरान गोटिया आकाश शर्वन रामदेव और मेविन के लिए और विश कर रहे हैं सभी को एक वेरी हैप्पी मॉर्निंग। याद रखिए दोस्तों कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ परफेक्ट तो ज़रूर होता है, बस उसे ढूंढने की देर होती है। तो आप भी उस पॉजिटिविटी को ढूंढिए और उससे अपने दिन को बेस्ट बनाइए। गाने तो हम लाते रहेंगे आप तक आरएम टू वीडियो मस्ती पर ही।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: ये सभी आपकी नेक्स्ट डे आराम टू वीडियो मस्ती के साथ और पूरा समाचार आप जल्दी ही सुन पाएंगे।
1: अरे मिलाती चलिए सुबह के ठीक 6:30 हैं। शनिवार 11 जुलाई 2026 के प्रातकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को नमस्ते और प्रणाम। सबसे आगे आज की सुर्खियां। मॉरिशस सरकार ने एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 547 मवेशियों को आज उतारने की अनुमति दी, जिन्हें पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा। शागो समझौते पर मॉरिशस ने ब्रिटेन से स्पष्ट समय सीमा मांगी है, जबकि दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा ने घरेलू हिंसा विधेयक को बिना संशोधन के पारित कर दिया है, जिससे पीड़ितों की सुरक्षा और मजबूत होगी। सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबोह ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पेंशन को समाप्त नहीं किया जाएगा और मींस टेस्ट का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष का विषय युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने पर केंद्रित है। सार्वभौमिक पेंशन यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग को लेकर आज पोर्टलिस में ट्रेड यूनियनों का विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ सोशियोलॉजिस्ट राजन संतू का कहना है कि मॉरिशस में बुजुर्गों की भूमिका बदल रही है, लेकिन पेंशन व्यवस्था का बोझ भविष्य में युवाओं पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दशकों के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक के कारण फिलीपींस में भूस्खलन से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यूरोप में दक्षिणी स्पेन में भड़की आग के कारण 12 लोग मारे गए और 23 अभी भी लापता हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मंत्री परिषद की कल हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक निर्णय एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 537 मवेशियों से संबंधित है। इन सभी मवेशियों को आज शनिवार 11 जुलाई को जहाज से उतारा जाएगा। कृषि एवं उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने बताया कि मवेशियों को सबसे पहले लाशुमिया स्थित एक क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। इसके बाद उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाएंगे, साथ ही जहाज के चालक दल के सदस्यों की स्वास्थ्य निगरानी भी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया पशु कल्याण और लागू स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये अनुमति आयातक कंपनी उबोरा वेंचर्स को विशेष परिस्थिति में एक असाधारण उपाय के रूप में दी जाएगी। कृषि मंत्री अरविंद बुलेल को सुनते हैं, उनसे बात की राजमिला सीतामणि ने।
2: Le poil en quarantaine, et ben le test pour faire est suivi par le service vétérinaire du ministère qui fait importe ça à ce niveau-là. Right? Il est vrai qu'on compte très bien dans quelles circonstances une ville dans le pont, parce que ça va à ce niveau-là, d'après Ubora Ventures, je suis supposé à Guinée-Conakry. Mais l'un d'affaires qui nous dit à Ubora Ventures, right? Ça sent très bien que Mozambique, il y a un pays quand même dans certains risques. Mais nous disons que c'est one-off. C'est-à-dire que ça ne ferait pas jamais et jamais arriver. Et n'importe qui bateau qui saute Mozambique ou bien n'importe qui destination, ça peut avoir un risque de ce qu'on appelle foot and mouth disease, il n'y a pas un droit à venir voir. Donc, on appelle ça un one-off sous bonne condition sanitaire très stricte.
1: आपको हम याद दिला देते हैं कि एमवी अपेक्स तंजानिया के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज मोजाम्बिक के मापुतो बंदरगाह से 537 मवेशियों को लेकर गिनी के लिए रवाना हुआ था। हालांकि अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए जहाज के कप्तान ने पोर्ट लुइस बंदरगाह पर रुकने की अनुमति मांगी। इसके बाद 4 जुलाई को मॉरिशस के अधिकारियों ने जहाज को मॉरिशस के तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर समुद्र में ही रुकने का निर्देश दिया था। और मंत्रिपरिषद ने शागुस द्वीप समूह से जुड़े मामले में हुए हाल के नए घटनाक्रम की भी

0: की समीक्षा की। 2 जुलाई 2026 को अटॉर्नी जनरल गेविन ग्रोवर तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि शागुस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बैठक के दौरान मॉरिशस ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को शागुस समझौते के अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मॉरिशस ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक प्रगति नहीं हुई तो वे सितंबर 2026 तक अपनी स्थिति की समीक्षा कर सकता है। ब्रिटेन ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि 5 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में एक प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस का दौरा करेगा। इस दौरान देश की समुद्री क्षमताओं और आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। इस पर ज्यादा विस्तार से पेश है ये विवरण गीता सुनारायण के साथ।
1: मंत्रिमंडल ने नोट किया कि 2 जुलाई 2026 को अटॉर्नी जनरल ने प्रधानमंत्री दफ्तर और विदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के ओवरसीज टेरिटोरीज एंड पोलर डायरेक्टोरेट के निदेशक के साथ एक वर्चुअल बैठक लगाई। बैठक का उद्देश्य शागुस द्वीप समूह मुद्दे पर हुई प्रगति की समीक्षा करना था। यूके पक्ष ने जानकारी दी कि 20 जुलाई 2026 तक नए यूके प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की संभावना है, लेकिन शागुस द्वीप समूह के संबंध में यूके की नीति में बदलाव होने की संभावना नहीं है। यूके ने इस मुद्दे पर मॉरिशस द्वारा अपनाए गए संतुलित रुख की सराहना की, लेकिन उसे ये भी बताया गया कि मॉरिशस अपने रुख की समीक्षा सितंबर 2026 तक कर सकता है। मॉरिशस की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि नए यूके प्रधानमंत्री को शागुस द्वीप समूह समझौते के यूके द्वारा अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम ने यह भी कहा कि पिछले महीने ओलिविए बॉनकोर्ट के नेतृत्व में शागुस वासियों के यूनाइटेड किंगडम दौरे का परिणाम कुल मिलाकर सकारात्मक रहा। यूनाइटेड किंगडम के अनुसार इस मिशन के कारण हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्रमुख सदस्यों को मॉरिशस और यूके के बीच शागुस द्वीप समूह समझौते पर ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण सुनने का अवसर मिला। यूनाइटेड किंगडम ने ये प्रस्ताव भी रखे। यूके का एक प्रतिनिधिमंडल 5 अक्टूबर 2026 वाले सप्ताह में मॉरिशस का दौरा करे ताकि समुद्री क्षमताओं की आवश्यकता का आकलन किया जा सके और शागुस वासियों के लिए शागुस द्वीप समूह की यात्रा साल 2027 की पहली या दूसरी तिमाही में आयोजित की जाए। मंत्रिमंडल ने सिविल स्टेटस एक्ट तथा संबंधित कानूनों में संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की है ताकि बिना पंजीकरण वाले बच्चों की समस्या का समाधान किया जा सके। इन संशोधनों के तहत मॉरिशस में बिना पंजीकरण वाले नाबालिगों के मामलों की निगरानी करने और उनके मामलों से निपटने के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू की जाए। कैबिनेट ने वर्कर्स राइट्स लेबर कॉन्ट्रैक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर रेगुलेशंस 2026 को कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति दी ताकि छोटे खेतीहर विदेशी कामगारों को काम पर रख सके। मंत्रिमंडल ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट की स्थिति और आने वाले कुछ महीनों में मोगास तथा गैस ऑयल की संभावित कीमतों के रुख पर ध्यान दिया। मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण एसटीसी के प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट में मोगास और गैस ऑयल को मिलाकर घाटा बढ़कर 3.28 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। इसमें केवल गैस ऑयल की बिक्री पर एसटीसी को हुए नुकसान का हिस्सा ही 3 बिलियन रुपए है।
0: राज्यसभा ने कल देर शाम घरेलू हिंसा विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं लैंगिक समानता मंत्री अरियाना वमारी ने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और अपराधियों को जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नए कानून के तहत अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करते समय घरेलू हिंसा के मामलों की जानकारी मिलने पर संबंधित पेशेवरों के लिए इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की जिम्मेदारियों का भी विस्तार किया गया है। मंत्री ने बताया कि इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय की ओर से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन प्रशिक्षणों में सेफ लाइव्स यूके के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। आरियाना वमारी ने यह भी कहा कि इस नए विधायी ढांचे में

0: दो महत्वपूर्ण सुधार शामिल किए गए हैं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों की सुरक्षा और सहायता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं लैंगिक समानता मंत्री आर्यन नव मारी को सुनते हैं यशना मिश्रा के विवरण के साथ।
1: धारा 8(4) के तहत एक ओर ट्रिब्यूनल को अब से हिंसा करने वाले व्यक्ति के बर्ताव का समय समय पर मूल्यांकन करना होगा हर 3 महीने में। प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अब निगरानी रखी जाएगी। धारा 13 के तहत एक्सक्लूजन ऑर्डर्स जोड़े गए हैं। अब से हिंसा करने वाले को घर छोड़ना पड़ेगा और ना कि हिंसा सहने वाले को। दर्द सहने वाले को अपने बच्चों को या वातावरण को या घर को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होगी।
2: Non la victime qui devra déraciner ses enfants et abandonner son foyer.
0: सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो ने कल दोपहर पोर्ट लुइस में आईजी के वार्ता में स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशन योजना को समाप्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रस्तावित मींस टेस्ट यानी आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर पेंशन देने की व्यवस्था को सरकार ने वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि अब मॉरिशस के नागरिकों के पास 60 वर्ष की आयु से संशोधित पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा। वहीं जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करेंगे उन्हें अधिक राशि की पेंशन मिलेगी। अब सुनते हैं सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो को।
3: Aucune pension pas pour couper. Tout jimoun qui peut gagner pension, tout nous grand jimoun qui gagne pension, aucune pension pas pour couper.
1: कोई पेंशन नहीं काटा जाएगा, सभी बुजुर्गों को अपना पेंशन मिलता रहेगा। मींस टेस्ट हमेशा के लिए हटाया गया है। ये मासिक वेतन पर आधारित नहीं होगा, ये एक अधिकार है, सभी बुजुर्गों का अधिकार।
3: Tout grand jimoun dans nos pays. Ça, c'est le premier message qu'ils ont envie de faire bien clair, parce qu'il y en a certains dimouns qui peuvent induire la population en erreur lorsqu'ils s'assisent là. Deuxième décision importante, nous faire que tout dimoun de Maurice, qui gagne 60 ans, ok, tout dimoun qui gagne 60 ans, pour gagner une pension.
1: कुछ लोग इस विषय पर आम जनता को बहका रहे हैं। दूसरा जरूरी फैसला यह है कि मॉरिशस में 60 साल के होने पर हर एक व्यक्ति को पेंशन मिलेगा, चाहे वो काम करता हो या नहीं, चाहे उसका वेतन कितना भी हो। लेकिन पेंशन को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल ही पेंशन प्राप्त करने की उम्र को 65 साल तक बढ़ाया गया। हम इस धन को विभाजित कर रहे हैं। 60 साल का होने वाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से पेंशन लेने के लिए बाध्य नहीं, वो चुन सकता है कि उसे कब पेंशन लेना है, 61, 62, 63, 64 या 65 साल पर होने पर। लेकिन यदि व्यक्ति 65 साल की उम्र के बाद अपना पेंशन लेने की सोचे तो उसका पेंशन बढ़ाया जाएगा।
3: Qui pourrait une pension à 60 ans, lui capable choisir. Le papier oblige lui prendre une pension à 60 ans. Il est pas obligé prendre une pension à 60 ans. Lui qui a décidé, ben vos conditions permettez-moi faire d'autres affaires et clair là, bon pas besoin de pension là si. Les cas décidé pour prendre lit 61 ans, les cas décidé pour prendre lit 72 ans, les cas décidé pour prendre lit 63 ans, les cas décidé pour prendre lit 64 ans, les cas décidé pour prendre lit 65. Et nous n'allons plus loin. Si ils décident pour prendre lit après 65, ce pension peut augmenter quand ils commencent à prendre pension.
1: जब कोई 60 साल की उम्र में एडजस्ट किया गया पेंशन लेगा तो जब रकम बढ़ेगी तो उसे एडजस्टमेंट वाली रकम भी मिलेगी। अभी भी पेंशन प्राप्त लोगों को कर्मचारियों के साथ साथ कंपेंसेशन मिलता आया है। जैसे इस साल 15,000 का पेंशन कंपेंसेशन के साथ बढ़कर 15,555 रुपया हो गया।
3: Avec compris monté, nous gouvernement une faire qui à ce temps-là pensionnaire aussi gagne compensation quand travailleur gagne compensation. À partir de janvier cette année-là, pensionnaire il gagne ce compensation compris de monté. La pension c'est 15 000 roupies, mais là l'invin 15 555.
1: पेंशन सुधार एक दूसरा स्तंभ है ताकि हम पूर्व सरकार द्वारा जो तबाह किया गया उसे वापस खड़ा कर सके। नेशनल पेंशन फंड को हम एनपीएफ

0: 2.0 ला रहे हैं, जो फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं होगा।
1: नेशनल पेंशन फंड Et nous l'appelons National Pension Fund 2.0. Et nous pour relancer NPF 2.0, on appelle les comme ça, les pas pour intégrer dans Finance Bill.
2: सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड को फाइनेंस बिल में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परामर्श किया जाएगा। हालांकि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता आयु को चरणबद्ध तरीके से 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय फिलहाल यथावत रहेगा। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है आज और भविष्य के लिए युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को साकार करना। ये विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के निष्कर्षों को दर्शाता है। इस सर्वेक्षण में 73 देशों के 18 से 49 वर्ष आयु के वर्ग के इंटरनेट से जुड़े 1,00,000 से अधिक लोगों को उनके रिश्तों, परिवार, आयोजन, संतानोत्पत्ति और जीवन से जुड़ी आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली गई। रिपोर्ट से ये वैश्विक तस्वीर सामने आती है कि आज के युवा वयस्क अपने संबंधों, पारिवारिक जीवन और भविष्य से क्या अपेक्षाएं रखते हैं तथा उन्हें किन प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के डिप्टी डायरेक्टर चेतन कुमार आर्यनाइक ने मॉरिशस में आज के युवाओं के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उनको सुनते हैं।
3: नौजवान अपने क्वालिफिकेशंस के अनुरूप ही नौकरी तलाशते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि शुरुआती तौर पे वे पहली नौकरी पर लग जाएं, अनुभव प्राप्त करें और बाद में अपने क्वालिफिकेशंस के अनुरूप नौकरी बदलें। भविष्य में उनको पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए मौका देना चाहिए। हाउसिंग, बच्चों की देखभाल आदि के लिए सेवाएं देनी चाहिए। इसके साथ ही देश के विकास में भी युवाओं को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, खासकर वे जो विदेश जाते हैं, उन्हें इंसेंटिव्स दे सकते हैं ताकि वे वापस लौटे। नौजवानों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
2: प्लेटफॉर्म कोमेस सेंसिकाल के बानर तले आज 11 जुलाई को पोर्ट लुइस में एक विशाल ट्रेड यूनियन प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। ये रैली मारी रेन दे ला पे सोशल सेंटर से शुरू होगी। प्रदर्शनकारी सार्वभौमिक वृद्धावस्था यानी यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन का भुगतान 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहा है कि क्या मौजूद पेंशन व्यवस्था को लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक प्रभावों के बिना बनाए रखना संभव है। समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजिस्ट राजेंद्र संतु के अनुसार यदि वर्तमान पेंशन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया तो इससे सरकारी वित्त पर दबाव पड़ सकता है। साथ ही बुजुर्ग आबादी का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण योजनाओं पर और अधिक निर्भर हो सकता है। वे अद्रियन वालिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। सुनते हैं, उनको सुनते हैं।
4: C'est une grande pension, mais qui était avant. Depuis, il y a une répercussion du normal économiquement et socialement. Côté social, il y a des gens qui sont contents de gagner sur casse. En pension, ils sont contents de gagner sur casse et ils sont contents de vivre, comment dire, correctement. Mais à ce nous avons aussi été. Est-ce que le gouvernement, pour foutre le pays, ça va dans ce sens-là? Et nous avons compris, comment dire, nous pouvons vivre dans une société vraiment vieillissante. Une société, comment dire, nous, aging population. Les very high, nous faisons de presque, nous faisons tous là-haut, presque 20% quelque chose. Mais il est un peu difficile dans les années à venir, dans 15 ans, 20 ans, nous pouvons presque 40-45%, quand même un petit peu plus même. Mais est-ce que le gouvernement pour capable de payer ça? Parce qu'il nous faisons comprendre. Ça va nous mettre pour une dépendant. Pas juste côté casse, côté l'hôpital, côté la santé, côté sécurité sociale, c'est un peu compliqué.
2: समाजशास्त्री राजेंद्र संतु का कहना है कि मॉरिशस के समाज में बुजुर्गों की भूमिका में पिछले कुछ वर्षों के दौरान

0: उल्लेखनीय बदलाव आया है। उनके अनुसार आज कई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं युवा पीढ़ी पहले से ही अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस के अनेक परिवारों में दादा दादी और नाना नानी युवा माता पिता की महत्वपूर्ण सहायता करती हैं। वे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हैं जिससे युवा अपने काम पर ध्यान दे सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। हालांकि सोशियोलॉजिस्ट ने आगाह किया कि यदि वर्तमान व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो दीर्घकाल में पेंशन प्रणाली के वित्त पोषण का बोझ अधिकतर युवा पीढ़ी पर पड़ सकता है।
1: Aujourd'hui, juste, elle nous remarque, ben, nous n'avons pas guette bandier du monde. C'est pas guetté. Généralement, c'est pas guetté. Bandier du monde, c'est débrouillé par eux-mêmes. Ben, nous n'avons pas un tellement de problèmes pour le travail, pour le marié, pour le faire de famille. C'est bien difficile pour guette bandier des personnes. C'est bien difficile pour ben là. Au contraire, ben, vieille personne qui guette ben les enfants. Pour ça, ben, nous avons des enfants qui peuvent marier là. Bon, j'ai pu finir un problème pour ben, nous avons dans les années à venir. Quand nous parlons, comment dire, quand ben, nous avons contribué beaucoup plus, comment dire, pour capable payer la sécurité sociale, la santé, la pension, les pouvoirs sont un peu difficiles. À cause de ça, comment dire, le gouvernement, comment dire, peut prendre, on peut faire un débat, on peut reprendre une décision, comment dire, qui, comment dire, diminuer la dépendance de l'État, comment dire, pour subvenir à ce besoin.
0: जैसा कि आपने सुना, मॉरिशस तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी की चुनौती का सामना कर रहा है। ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन सुधार पर बहस जारी है, लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आता है। क्या देश की स्वास्थ्य व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है? वित्तीय चुनौतियों के अलावा बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है जो उनकी विशेष जरूरतों के अनुरूप हों। इसके लिए अधिक जेरियाट्रिक विशेषज्ञों की उपलब्धता के साथ साथ दीर्घकालिक और समग्र योजना भी जरूरी है। जेरियाट्रिक विशेषज्ञ डॉक्टर पास्कल जीनो की राय के अनुसार जेरियाट्रिक विशेषज्ञों की कमी निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता वृद्धावस्था से जुड़े मुद्दों के लिए एक ठोस राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने की है। और सुर्खियों में हम बात कर रहे थे फीफा विश्व कप के बारे में। फीफा विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेली गई हाल के मैच में लॉस एंजेलिस के सोफी स्टेडियम में स्पेन वर्सेस बेल्जियम का स्कोर रहा 2-1। मेरिनो ने 88 मिनट पर स्पेन के लिए दूसरा गोल दागा। गौरतलब है कि कल रविवार को सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड तथा सुबह 5 बजे अर्जेंटीना खेलेगा स्विट्जरलैंड के खिलाफ। नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच का ये मुकाबला काफी निर्णायक सिद्ध हो सकता है, स्पेशली यदि इंग्लैंड के फैंस विश्व कप में इंग्लैंड को फाइनल में देखना चाहती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात कर रहे थे स्पेन के बारे में ही। दक्षिणी स्पेन में लगी भीषण जंगल की आग में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 अन्य लापता बताई जा रही है। आपातकालीन सेवाओं की टीमें शुक्रवार को भी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही। अधिकारियों के अनुसार आग गुरुवार दोपहर अल्मेरिया प्रांत के लॉस गालादोस क्षेत्र में उस समय भड़की जब एक बिजली का खंभा जंगल में गिर गया और उससे निकली चिंगारी से आग पकड़ ली। स्थानीय मीडिया से बातचीत में कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग ने पूरे इलाके को इस तरह तबाह कर दिया मानो वहां बम विस्फोट हुआ हो। वहीं कई लोगों ने कहा कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। पटना मौसम के हाल की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी, बाद में दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा। रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर रहकर वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा, 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा, सेंट्रल प्लेटो पर 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:44 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। सुनने वालों को आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसल पर हमारे सहयोगी कादर हैं तथा हम पूरे समाचार डेस्क को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। क्रिमेशन रोड रोशनुआ में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री अभिमन्यु इमांदी जिन्हें राम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके दामाद अनिल कपूर पादियाची के घर रोशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। स्कूल लेन लावेनिया सैपिया में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की बीबी फरूदा दगाही पैदा शम सोहन और जिन्हें मदाम आहून के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज 1:30 बजे इनके मकान लावेनिया सैपिया से उठाकर दफनाने के लिए सैकोसा सैपिया का कब्रिस्तान ले जाएगा। फिर एट 1:30 PM दुखी रोड लालोगा सैपिया में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रानी बुदन पैदाश्याम भागोस और जिन्हें इंदिरा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर लालोगा सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM प्लेजांस रोजिल में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिहरन मुथिया जिन्हें राजन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे राय रोड बुबासें एलियनसन के यहाँ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोनी शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1:30 PM त्रेबो नंबर पाँच वाकवा में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गोइंदामा पेमाल पैराशाम मुत्तुसामी और जिन्हें तौचिन गाने के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1 बजे उनके बेटे विष्णु पेमाल के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फिगनो नंबर 5 वाकवा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM लोरेटो कॉन्वेंट स्ट्रीट ओकुले में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दानो लक्ष्मी गोविंदू नायडू पैदाशना नायकेन और जिन्हें मनी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनकी पति श्री नायडू श्रीनिवासन गोपाला किसनामा के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM ला रू क्लेजियो क्यूपिप में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के रेजा बोरू जिन्हें रेजा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज सुबह 11 बजे इनके मकान क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए बीगा का कब्रिस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM बगालू रोड ब्रिजेवेजिया में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की बीबी सलमा नोदाली पैदाशना फोकन और जिन्हें सलमा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज सुबह 10 बजे इनके बेटे मोहम्मद रियाज नोदाली के मकान ब्रिजेवेजिया से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए सैयद पीर कुदरत अली शाह मस्जिद ले जाएगी। फिर दफनाने के लिए बोबालाल माटी का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे 10 AM रॉयल रोड मोदालबे में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती बाबूलाल पैदाश्रम लकुआ जिन्हें मामा संजय के नाम से भी ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके बेटे संजय बाबूलाल के घर मोदालबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM रॉबर्ट बर्न्स एवेन्यू फ्लोरियाल में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बसंती भवन पैदाश्रम बंधु और जिन्हें बसंती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके पति राज भवन के घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले ब्रियों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM एवेन्यू पेड्रिक्स नंबर 2 मोसेलमोर आफ्रे पाई में

85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृष्णमावती मधु, श्रीमती कृष्णमावती मधु पैदाश्रम जन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 12:30 बजे उनके बेटे धनजय मधु के घर पाए से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे हाफ पास्ट नून। मातुलेन लाफ्लोरा में, मातुलेन लाफ्लोरा में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमंती अपुलासामी, श्रीमती सुमंती अपुलासामी पैदाश्रम गिरधारी और जिन्हें सुमंती के नाम से हम लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे प्रीतम अपुलासामी के घर लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौवा शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 1 PM। नंबर 41 रॉय रोड कास्टेल में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मालिंगा महामास्वामी, श्री धर्मालिंगा महामास्वामी जिन्हें बोम्बा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 1:30 बजे लाशा पहला और दौतेली एंसर बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबेल की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 1:30 PM। रॉय रोड पीतो में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिचंद जोयराम जिन्हें प्रभु इंदर के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 1:30 बजे उनके घर पीतो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कागो मोतल स्पेरॉस पीतो शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 1:30 PM। पायोंके रोड मोसलमो सेंट अंतोइन गुडलैंड्स में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाश्रम जोधवा और जिन्हें इंद्रानी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज 11 बजे उनके बेटे विमल राजकुमार के घर सेंट अंतोइन गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोची शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। मोंटोक्यो रोड रियोबेल में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुबावती दुखाज की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9 बजे उनके पिता ज्ञानी दुखाज के घर रियोबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक के शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 9 AM। कोंकाहोल केन्या में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मानती नायको पैदाश्रम सिपौसाद और जिन्हें नंदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके घर कोंकाहोल केन्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। नंबर 21 एवेन्यू लुवे कैट्रोबोन में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वार्ता कुमारी गुआना पैदाशी नाम वेंक्या और जिन जीवा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनके घर काठोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा काठोबोन की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टू डियर हॉफ पॉस्ट 10 AM। अलीब्रियों वाकुआ में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुबौती पेसान पैदाशी नाम शिवनाथ और जिन्हें साबित के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 बजे लाशा पहला और दौतेली एंसर बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे हाफ पास 9 AM। काली लेन बॉम्बू में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री दनीलाल पाऊ जिन्हें ज्ञान के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12:30 बजे उनके घर बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजर बॉम्बू की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे हाफ पास नून। रॉय रोड क्रेवक्योर में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मेधा दनु पैदाश्रम बर्तन और जिन्हें मेधा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन के एक्टिंग डेप्यूटी रह चुकी थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके पति सोमराज सिंह धनु के घर कैफ्यू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। मोसलमो बुले रूज फ्लाक में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री करण गजाधर जिन्हें सुरतम पेपे के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले गांधी रोड लालमाटी के रहने वाले थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर बुलेगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। वाल्तो मोतैलोंग में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यानंद इतवा जिन्हें अजीत के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती बबीता इतवा के घर मोतालोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौसम

Pierre-Rouge, Kishimshan, Boumili, Jajegi, Cremation Today at 9 AM. Avenue de l'Espérance, Pitome, Avenue de l'Espérance, Pitome, 72 Saleki, 72 years old, Kishimati Shanti Devi Shembu, Shimati Shanti Devi Shembu, Pedasham Badri, or Jinhe Basanti Kiramsha Zada Jante, Kimitu Hogi, Unki Arti at Subasari Nobaji, Unki Beti, Ramchen, Shembu Kegher, Pito Sutaka, and Tim Saskarki, Vahikshimshan, Boumili, Jajegi, Cremation Today at 9 AM. New Road, the Roshnome, New Road, the Roshnome, 76 Saleki, 76 years old के श्री धर्मराज अलोल, श्री धर्मराज अलोल जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती माला अरोल के घर खुशनों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टू डेयर 11:30 AM। कॉम्बिले ग्लेन पार्क वाकुआ में, कॉम्बिले ग्लेन पार्क वाकुआ में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री ओनंद हरिलाल, श्री ओनंद हरिलाल जिन्हें विदान के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके बेटे राकेश ओनंद के घर ग्लेन पार्क वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टू डेर 9 AM। रॉयल रोड एन एस फ्लोरों में, रॉयल रोड एन एस फ्लोरों में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराम सिंह बृहस्पतिया, श्री जयराम सिंह बृहस्पतिया की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे इनके घर एन एस प्लोगों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। नंबर 9 मोसलमो माउट पॉपलेबुसेस में, नंबर 9 मोसलमो माउट पॉपलेबुसेस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेमानंदा मंगापति, श्री प्रेमा नंदा मंगापति जिन्हें नंदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर मुसलमान माउंट पॉपलेबुसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 9 AM। कालीमाई पालमा काट्रोबोन में, कालीमाई रोड पालमा काट्रोबोन में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री जसोनाथ बोयरू, श्री जसोनाथ बोयरू जिन्हें अच्छी बाई के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले CNT में ड्राइवर का काम करती थी, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: Chillax with Radio Musty.
1: Your number one Bollywood radio station.
2: सात बजकर आठ मिनट हुए हैं। वेलकम बैक चिलैक्स की आखिरी आवाज़ में।

एंड यस आशा है कि आप जाग गए होंगे एंड ब्रेकफास्ट भी कर लिया होगा. अगर नहीं तो किस बात की देरी है, पेट रात से खाना मांग रहे हैं. टू ईट समथिंग वाइब को ऑन गोइंग रखते हैं तो एक और गाना हो जाए आप सभी के नाम. गुड मॉर्निंग.

0: Lunch with Radio Musty.
1: साथ बज कर 17 मिनट हो चला है। यस, सुबह सुबह आपको पैम्पर करने के लिए गेम लेकर आए हैं, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हो विनर ऑफ अ टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टूर फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। सैटरडे 25th जुलाई को SBICC पाए पर वो परफॉर्म करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन है कि अभिजीत भट्टाचार्य ने हिंदी के अलावा कई लैंग्वेजेस में गाना गाया है, True or False? आपको भेजना है 5499-1294 पर आपके जवाब, एंड फिर हम सिलेक्ट करने वाले हैं लकी विनर को। गुड लक टू यू।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: वादा रहा सनम अभिजीत जी की ही आवाज में, तो आप रेडी हो गए हैं टू विटनेस दिस इनक्रेडिबल शो। क्वेश्चन था, अभिजीत भट्टाचार्य ने हिंदी के अलावा कई लैंग्वेजेस में गाना गाया है, ट्रू और फॉल्स? एंड सही जवाब है ट्रू। सही जवाब बहुत मिले, लेकिन हमारे लक विनर बन चुके हैं पद्मिनी जी, वाकवा की रहने वाली है। कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने जीता है एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टूर अभिजीत भट्टाचार्य का। टिकट कलेक्ट करने के लिए आपको वीकडेज पर आईडी कार्ड के साथ आना है एमबीसी। एंड यस, अभी के लिए हम चिलैक्स वाइब को जारी रखते हैं, तो आप एंजॉय कीजिए। स्टे कनेक्टेड टू आरएम2 रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: जी हाँ, अभी के लिए लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट्स सुनते हैं विकास जी से. गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग दिलमणि, एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. माचन वर्ल्ड कप 2026 अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है विद द फर्स्ट सेमीफाइनल बिटवीन एकिप दे फ्रांस एंड लागोरा, यानी स्पेन वर्सेस फ्रांस. ये है फीफा विश्व कप 2026 का पहला धमाकेदार सेमीफाइनल जो मंगलवार रात 11 बजे के लिए निर्धारित है. कल रात क्वार्टर फाइनल नंबर दो में मिकेल मेरिनो फिर बना स्पेन का हीरो, जिसने खेल के 88th मिनट पर बेल्जियम की धज्जियां उड़ा दी. गोलकीपर सेन लामेंस की भारी गलती पर मेरिनो ने फायदा उठाया और बेल्जियम के समूचे गोल्डन जेनरेशन को उठा के पटक डाला. सो मेरिनो द अनलाइकली हीरो अगेन. स्पेन 2 बेल्जियम 1. पहला गोल खेल के 30वें मिनट पर फाबियन रूज ने बनाया, जिसे काटा बेल्जियम के स्ट्राइकर शाल दे के तेलेरे ने खेल के 41st मिनट पर, यानी फर्स्ट हाफ में स्पेन 1 बेल्जियम 1. और सेकंड हाफ में चिबो कुतुआ के घायल होने पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोलकीपर सेन लामेंस से स्ट्राइक को कैच न कर पाया और मिकेल मेरिनो 88वें मिनट पर लगातार दूसरे मैच में बना स्पेन का हीरो. स्पेन 2 बेल्जियम 1. अब सेमीफाइनल में फ्रांस वर्सेस स्पेन, यानी आज रात आराम से कंबल चादर ओढ़कर और मुड़ी गाड़कर सो जाइए, क्योंकि आज रात 12 बजे तक कोई भी मैच नहीं है. लेकिन कल सुबह तड़के 1 बजे, संडे की सुबह 1 बजे क्वार्टर फाइनल नंबर 3 जरूर देखिए. इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे या हरिकेन वर्सेस हेलेन का तूफान. गोल मशीन अर्लिंग हेलेन के दम पर नॉर्वे इस मुकाम पर पहली बार पहुंचकर पहले से ही इतिहास रच चुका है. तो इंग्लैंड 60 सालों में 60 years से इस ट्रॉफी का प्यासा है. सवाल सिर्फ इतना है कि क्या द थ्री लायंस दहाड़ेंगे या नॉर्वे के वाइकिंग्स एक बार फिर इंग्लैंड की उम्मीदें बहा ले जाएंगे. जवाब कल तड़के 1 बजे से मायामी गार्डन्स के हार्ड रॉक स्टेडियम में. हैरी केन ने यदि अब तक 5 गोल बनाए हैं तो अर्लिंग हेलेन ने 7 गोल दागे हैं, यानी ये दोनों अभी भी लियोनेल मेसी और किलियान एम्बापे के साथ गोल्डन बूट जीतने के प्रबल दावेदार हैं. इसलिए देखते रहिए और सुनते रहिए. जो जीतेगा वो लोहा लेगा अर्जेंटीना या स्विट्जरलैंड से, यानी क्वार्टर फाइनल नंबर 4 कल रविवार की सुबह 5 बजे ही खेला जाएगा. पहला सेमीफाइनल मंगलवार रात 11 बजे फ्रांस वर्सेस स्पेन और दूसरा बुधवार 15 जुलाई को वर्ल्ड कप का महाफाइनल रविवार 19 जुलाई 2026 की रात 11 बजे. सो बता दें कि कल तड़के इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे तड़के 1 बजे, कल ही सुबह 5 बजे स्विट्जरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना. सो इन सब के बारे में देखते रहिए. इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे कल सुबह 1 बजे. मार्क गेही, डेक्लन राइस और रिस जेम्स सब के सब ट्रेनिंग पर लौट आए हैं, इसलिए कोई भूल चूक नहीं. इट्स कमिंग होम. इंग्लैंड का ट्रांसफर बाजार इस बीच 15 जून से को खुलते ही फटने लगा है. अब तक का सबसे महंगा और ढांसू ट्रांसफर मैनचेस्टर सिटी ने पूरा किया है, यानी एलियट एंडरसन 116 मिलियन पाउंड में नॉटिंगहम फॉरेस्ट से आया मैनचेस्टर सिटी में. सैंड्रो टोनाली 92.5 मिलियन पाउंड फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड टू टोटेनम हॉट्सपर. मैथ्यूस फर्नांडेज वेस्टहम यूनाइटेड से टोटेनम हॉट्सपर में 85 मिलियन पाउंड. फिर टोटेनम हॉट्सपर ने यान पोल वान हेक को भी ब्राइटन से हासिल किया 52 मिलियन पाउंड में. टोटेनम बहुत ही सक्रिय

0: एक्टिव हो गया है एंटोनी गार्डन 69 मिलियन पाउंड में 69 मिलियन पाउंड में न्यूकासल यूनाइटेड से एफसी बार्सिलोना में जेरेमी जाके रेन से लिवरपूल में 60 मिलियन पाउंड विक्टर म्यूनोज ओसासुना से लिवरपूल में 34.5 मिलियन पाउंड और ब्राजील का डिफेंडर एडिसन अटलांटा से मैनचेस्टर यूनाइटेड में 35 मिलियन पाउंड की फी पर एक समझौता तय हो गया था लेकिन खबर ये है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि उसके मेडिकल टेस्ट में कुछ गड़बड़ी है इसलिए द डील मे बी ऑफ। सुनते रहिए, पहली सितंबर की रात ट्रांसफर विंडो बंद हो जाएगा किंतु इससे पहले खूब बजेगा बाजा और खूब होगी नीलामी खिलाड़ियों की। टेनिस में गुड बट नॉट गुड इनफ, लेजेंडरी खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की विंबलडन यात्रा समाप्त। अलेक्जेंडर जेरेव वर्सेस यानिक सिनर, ये है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का महाफाइनल। कल रात विश्व नंबर दो यानिक सिनर ने 39 ईयर ओल्ड नोवाक जोकोविच को रुला दिया इन ए क्लिनिकल फिनिश, यानी तीन बार 6-4, 6-4 और 6-4 से हराकर फाइनल में सिनर टक्कर लेगा 29 ईयर ओल्ड जर्मन चैंपियन अलेक्जेंडर जेरेव से। कल ही फ्रेंच ओपन चैंपियन जेरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को, उसका फेरी टेल समाप्त हुआ, उसको 7-6, 6-2 और 6-4 से हराकर साबित कर दिखाया कि रोलां गारोस में जाकर जीतना कोई इत्तफाक नहीं था। इट्स ए कन्फर्मेशन कि 29 साल की आयु में उसका टाइम आ गया है। अलेक्जेंडर जेरेव वर्सेस यानिक सिनर कल शाम विंबलडन के सेंटर कोर्ट में। और आज रात लगभग 7 बजे वुमेन सिंगल का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा बिटवीन कैरोलिना मुचोवा एंड लिंडा नुस्कोवा, यानी 100% चेक रिपब्लिक फाइनल एंड ऑल चेक फाइनल। क्रिकेट में इट्स ए कंप्लीट व्हाइट वॉश, एक कैंसलेशन और बाकी 3 मैच बुरी तरह से हारने के बाद भारत की T20 टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी T20 मैच खेलने उतर रही है। साउदम्पटन के यूटिलिटा बाउल में सीरीज हारने के बाद युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की कमियों की बात हो रही है तो दूसरी ओर भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज का ये आखिरी T20 मुकाबला जीतना सम्मान का भी सवाल है। तो दूसरी ओर भारत की महिला टीम को भी मुंह की खानी पड़ रही है। अभी फिलहाल पहला जो टेस्ट मैच शुरू हुआ है उसके पहले दिन भारतीय टीम 285 पर ऑल आउट हो गई। हालांकि स्मृति मंधाना ने एक शानदार 83 रन बनाकर टीम इंडिया को मजबूती प्रदान की किंतु इंग्लैंड ने कल रात ही 1 विकेट के नुकसान पर और 21 रन बनाकर पहले दिन का खेल समाप्त किया। पर किस्सा भी खत्म नहीं हुआ है। लॉर्ड स्टेडियम में आज जबरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी की अपेक्षा की जा रही है। सो संक्षेप में कल स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल का पहला मैच फ्रांस वर्सेस स्पेन मंगलवार रात 11 बजे, आज रात 12 बजे तक आराम, कल तड़के 1 बजे इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे, फिर कल ही सुबह 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, यानी सुपर संडे की सुपर सुबह। किंतु आज सैटरडे है, फिर मिलेंगे आज ही रात 7-9 के बीच आपके अपने झंकार बीच में। तब तक बाय बाय, नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
3: RM2
4: रेडियो मस्ती।
3: Chillax with Radio Masti,
4: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: Yes, आपके साथ टाइम कैसे जल्दी से बीतती है पता नहीं चलता। शिलैक्स मॉर्निंग से मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपका दिन खुशियों, मुस्कुराहट और अच्छी एनर्जी से भर गया होगा। मैं अनिल मनी और आपसे मुलाकात फिर होगी कल। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन। हैव अ वंडरफुल सैटरडे।
0: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.

13 फजीर के 8:03 हुआ था। सब कोई के नमस्ते आ प्रणाम। देरी से शुरू करल जाए होला ई भोजपुरी समाचार खाती क्षमा प्रार्थी हैं जा। सबसे आगे हमनी देश के समाचार संगे बुलेटिन की शुरू करब जा। आज 11 जुलाई के विश्व जनसंख्या दिवस मनावल जाता ई बरिस के विषय आज और भविष्य खातिर युवा के आशा और आकांक्षा के साकार करे के है। ई विषय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड देने से जारी एगो नवा रिपोर्ट के निष्कर्ष के दर्शावेला। ई सर्वेक्षण में 73 देश के 18 से 39 बरिस आयु वर्ग के इंटरनेट से जुड़ल 1,00,000 से जस्ती आदमी के उलो के रिश्ता परिवार नियोजन संतानोपति और जीवन से जुड़ल आकांक्षा के बारे में जानकारी देवेला। रिपोर्ट से ई वैश्विक तस्वीर सामने आवता कि आज के युवा वयस्क अपन संबंध पारिवारिक जीवन और भविष्य से कौन अपेक्षा रखत हुआ जा और उ लोग कौन कौन प्रमुख चुनौती और बाधा के सामना करत हुआ जा। सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबों कल सांझ के पोर्ट्रिस में आज एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट करलन कि कोनो भी पेंशन योजना के समाप्त नहीं कर जाता। मंत्री बोलन कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन हर एगो पात्र नागरिक के अधिकार है। उ ई भी पुष्टि करलन कि वरिष्ठ 2026-2027 के बजट में प्रस्तावित मींस टेस्ट यानी आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर पेंशन दे होला व्यवस्था के सरकार वापस ले ले बाटे। उ बतैलन कि अब मॉरिशस के नागरिक लगे 60 बरिस के आयु से संशोधित पेंशन मिले के विकल्प बाटे हुए परी जे अपन स्टेट एज पेंशन के भुगतान 65 बरिस के आयु ले स्थगित करे खोजत हुआ जा उ लोग के आज जस्ती पैसा पेंशन में मिली। राज्यसभा काल देरी सांझ के घरेलू हिंसा विधेयक के यानी के डोमेस्टिक अब्यूज बिल के बिना कोनो संशोधन के पारित कर दिले बाटे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं लैंगिक समानता मंत्री आर्याना वमाही बोलन कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ित के जस्ती बेहतर सुरक्षा दे खातिर और अपराधी के जवाबदेह बनाए खातिर प्रतिबद्ध बाटे। ई नवा कानून के चलत अपन पेशेवर दायित्व के निर्वहन करत बखत घरेलू हिंसा के मामला के जानकारी मिलला पर संबंधित पेशेवर खातिर एकर सूचना दे के अनिवार्य होई। एकर संगे एनफोर्समेंट ऑफिसर के जिम्मेदारी के भी विस्तार करल जाता। मंत्री बोलन कि ई कानून के प्रभावी क्रियान्वयन खातिर मंत्रालय देने से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करल

0: सिंचाई ई प्रशिक्षण सेफ लाइफ्स यूके के विशेषज्ञ प्रशिक्षक के सहयोग से देवल जाए। मंत्री परिषद शागोस द्वीप समूह से जुड़ल मामला में हाल में भयल नवा घटनाक्रम की भी समीक्षा करलक। 2 जुलाई 2026 के अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर और प्रधानमंत्री दफ्तर तथा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ब्रिटेन सरकार के अधिकारी संगेगो वर्चुअल बैठक में भाग लेलन जा। ब्रिटिश अधिकारी बतैलन जा कि 20 जुलाई 2026 ले नवा प्रधानमंत्री के नियुक्ति होइला के उम्मीद बाटे। कर संगे उ लोग भी बोलन जा कि शागोस द्वीप समूह के लेके ब्रिटेन के नीति में कोनो बड़ा बदलाव की संभावना नहीं बाटे। बैठक के बखत मॉरिशस ई बात पर जोर दिलक कि ब्रिटेन के नवा प्रधानमंत्री के शागोस समझौता के अनुमोदन खातिर एगो स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करे के चाहिए। मॉरिशस ई भी संकेत दिलक कि जे आवश्यक प्रगति नहीं हो तो उ सितम्बर 2026 ले अपन स्थिति के समीक्षा करे सकी। आर मंत्री परिषद काल भयल बैठक में कईगो महत्वपूर्ण निर्णय भी लेलक। जिकर में एगो निर्णय एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 137 गो मवेशी से संबंधित बाटे। इस मवेशी के आज सामदी 11 जुलाई के जहाज से उतारल जाता। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुल्लेल बोलन की मवेशी के सबसे आगे लाशोमियम के क्वारंटीन केंद्र में रखल जाए। एक बाद उलो के स्वास्थ्य के जांच खातिर कईगो परीक्षण करल जाए। एक संगे जहाज के चालक दल के भी स्वास्थ्य के निगरानी करल जाता। मंत्री बोलन की ई पूरा प्रक्रिया पशु कल्याण और लागू स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के पूरा पालन करत करल जाता। ई भी स्पष्ट करलन की अनुमति आयातक कंपनी कि ई अनुमति आयातक कंपनी उबोरा वेंचर्स के विशेष परिस्थिति में एगो असाधारण उपाय के रूप में देवल जाता। ध्यान रखे कि एमवी अपेक्स तंजानिया के ध्वज होला एगो मालवाहक जहाज मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह से 537 गो मवेशी के लेके गिनी खातिर रवाना हो रहा। हालांकि अपरिहार्य परिस्थिति के हवाला देवत जहाज के कप्तान पोर्टलिस बंदरगाह पर रुके के अनुमति मांगले रहल। एकर बाद 4 जुलाई के मॉरिशस के अधिकारी जहाज के मॉरिशस के तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर समुद्र में ठड़ा होय के आदेश देली रहल। अब बात फुटबॉल के बारे में करिया जा। फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन सेमीफाइनल में चलाल बाटे। कल रात के खेला गए क्वार्टर फाइनल मुकाबला में स्पेन बेल्जियम के 2-1 के स्कोर से हरेलक। पूरा मैच में स्पेन दबदबा दिखेलक। एक बार फिर पोर्चुगाल के खिलाफ राउंड 16 निखन मिकेल मेरिनो टीम के हीरो बनलन। मैच के बखत बतौर सब्सिट्यूट मैदान में उतर के आर्सेनल के मिडफील्डर मेरिनो अंतिम क्षण में बेल्जियम के गोलकीपर लामेंस के गलती के फायदा उठावत विजय गोल दाके स्पेन के सेमीफाइनल के टिकट दिलैलक। एकर से आगे मैच के आधा घंटा होइला पर यानी कि 30वां मिनट पर फाबियो रुइज स्पेन के बढ़त दिखेलक जबकि बेल्जियम खातिर देके तेलेरे बराबरी के गोल करलक। अब मंगर के सेमीफाइनल में स्पेन के सामना फ्रांस से हो। ई मुकाबला के सीधा प्रसारण एमबीसी पर करल जाए। फीफा विश्व कप के दुगो खेल जोन क्वार्टर फाइनल में हो ऊह दिमास 1 बजे फजीर के इंग्लैंड अपन दूसर विश्व कप खिताब के उम्मीद लेके नॉर्वे के खिलाफ खेली। ई मुकाबला के सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स 11 पर करल जाए। दूसर मैच जो रही उ क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के मुकाबला स्विट्जरलैंड से हो। ई मैच काल फजीर के ही 5 बजे फजीर के खेलल जाए। दूसरा देश के समाचार में दक्षिण स्पेन में लगल भीषण जंगल के आग में अबले 12 जना के मौत हो गल बाटी जबकि 23 जना अभी ले उलो के कोनो अता पता नहीं बाटी। आपातकालीन सेवा के टीम सुक से आग बुताई में लगल हवन जा। अधिकारी लोग बोलत हवन जा कि बीफे के लगल ई आग फैलते गल बाटी और ऐसा बखत में लगल जब एगो बिजली के खम्बा जंगल में गिर गल और उससे जोन चिंगारी भरकल उसे आग धरगल। तही संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। ध्यान से सुनला ओका खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Ramirez Tarka.
1: RM2.
2: तो वेल फ्रेंड्स, सुबह के 8:14 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग हमारे सभी लिसनर्स को जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. विशिंग यू ऑल अ हैप्पी हैप्पी सैटरडे. मैं हूं परी आपके साथ और 3 घंटों का ये सफर बनाने वाले हैं आपके लिए खास. साथ रहने वाला है गुड म्यूजिक का और साथ में लेकर आएंगे आपके लिए पॉजिटिविटी एंड लोड्स ऑफ मस्ती टू मेक योर सैटरडे अ वंडरफुल वन. तो चलिए दोस्तों, हमारा साथ दे रहे हैं आप और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस तो आप जानते हैं, रहता है इंतजार हमें ऑन 5499-1294. आज का सैटरडे कैसा रहेगा, मौसम का हाल चलिए आपको बताते हैं.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: ओनली टू विनर्स. योर वेदर फोरकास्ट ऑन RM2
1: रेडियो मस्ती.
4: मौसम का हाल आम हालत. हमारे इलाके पर हल्की सी सामान्य हवा का बहाव है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों में थोड़ी वर्षा होगी, बाद में दिन के दौरान मौसम में सुधार.

0: आएगा। रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो पर रहकर वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यानी कि 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच सेंट्रल प्लेटो पर, साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:44 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Une thermos de 500 ml à 449,95 € et le kilo de chips Winners, allumettes ou french fries à 109,95 €. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet

0: Bollywood.
1: Radio Masti. वेल फ्रेंड्स, अगर आप इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर वीकेंड के लीजी स्टार्ट को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग. गुड म्यूजिक आपके लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती. एंजॉय दिस वन.
2: दिल में

0: prête au défi de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: सो वेल फ्रेंड्स, ये तो हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप हर सुबह एक नया चैप्टर लिख सकते हैं। हर सुबह हमें एक नया मौका मिलता है कल की गलतियों को पीछे छोड़कर आज को दिल से जीने का। और जैसे हम कहते हैं कि हर इंसान अपनी एक खामोश जंग लड़ रहा होता है, इसीलिए जब भी मौका मिले अल्फाज से नहीं बल्कि अपनी काइंडनेस से किसी के दिन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। अभी के लिए विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल मॉर्निंग एंड अ वंडरफुल म्यूजिकल जर्नी ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती।
0: Avant de défi, de long shift. Commence par une bonne décision.

So well, आज भी वह मौका मिला है कि आप इस दिन को खास बना सके। कहते हैं ना दोस्तों कि हर एक दिन एक नया चैप्टर हम जरूर लिख सकते हैं। So आज के चैप्टर में लिख दीजिए हैप्पीनेस एंड बस गुड वाइब्स। अभी के लिए हमारा साथ दे रहे हैं आप। So we have this beautiful song हमारे सभी लिसनर्स के नाम। मैं हूं परी आपके साथ। It's time for your timeless तड़का। कुछ खूबसूरत गाने आपके इस मॉर्निंग को खास और स्पेशल बनाने के लिए। गुड वाइब्स की बात की है। So we have this beautiful song। Enjoy this one।

0: 2.
1: Radio Musty.
2: Et 1, et 2, et 3, 4, 5. Et 1, et 2, et 3, 4, 5. Toguin doublé, Toguin doublé. Ça, samedi 11 juillet, Multiwin 5 Périvini dans Tirage Loto et Cossi Loto Plus. Qui était sa Multiwin 5? Quand on gagne 5 bons numéros dans Tirage Loto ou bien Loto Plus, ça samedi là, ou gain multiplié par des lits doublés. Avec Multiwin 5, Asté ou Tap Double.
3: Ceci est un communiqué de l'Autothèque. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
4: सो वेल फ्रेंड्स, कनेक्टेड हैं आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ मॉर्निंग टाइम और वीकेंड को खास एंड स्पेशल बनाने. इट्स टाइम टू प्ले अ गेम आपके साथ, जहां पर आपको मौका मिल सकता है टू विन वन टिकट टू द गोल्डन इरा 90s इरा टूर फीचरिंग अभिजीत दा, और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं. बिल्कुल, इस टिकट को आप भी पा सकते हैं. बस आपको हमें बताना है कि ये जो कॉन्सर्ट है वो कब होने वाला है, कौन सी डेट पर होने वाला है. यस, आपके सही जवाब आप हम तक पहुँचा सकते हैं ऑन 5499 1294 5499 1294 पर. आप हमें भेजिए अपने सही जवाब. बात हो रही है अभिजीत दा के कॉन्सर्ट की, 90s के वो गोल्डन मेलोडीज को आप एक बार फिर रीलिव कर सकते हैं. और ये जो कॉन्सर्ट है मॉरिशस में, कौन सी डेट पर होने वाला है, सेंड मी योर राइट आंसर्स ऑन 5499 1294 अपने पूरे नाम और पते के साथ. ऑल द बेस्ट.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: सो वेल फ्रेंड्स, रो या हंसो, आपको तो बस हम हंसाना चाहते हैं, आपके चेहरे की स्माइल को और भी बढ़ाना चाहते हैं। एंड यहां पर आपसे पूछा था सवाल कि अभिजीत दा का जो कॉन्सर्ट होने वाला है इन मॉरिशस, वो कौन सी तारीख, कौन सी डेट पर होने वाला है। एंड द राइट आंसर इज 25th of July। यस, दिस जुलाई और 25th, यस, इस डेट को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए जहां पर आप रीलिव करने वाले हैं 90s के इस ब्यूटीफुल मैजिक को। सो यहां पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब और लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गई है हमारी लकी विनर और आप है तोशिमा द्वारका ऑफ ग्लेन पार्क। कांग्रेचुलेशंस। सो वेल तोशिमा, दिया आपने हमें बिल्कुल सही जवाब और आपने जीती है 1 ticket टू द गोल्डन 90s इरा टूर फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है सैटरडे 25th of July 2026 और ये होगा एट 7:30 PM एट SVICCPI। स्टेप कर सकते हैं आप इन वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड रीलिव कर सकते हैं उन अनफॉरगेटेबल मेलोडीज को जिसे बॉलीवुड के गोल्डन एरा कहा जाता है। आपको बता दें दैट आपको एक खूबसूरत शाम एंजॉय करने का मौका मिल रहा है जहां पर टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर म्यूजिकल मैजिक होने वाला है। टिकट्स स्टार्ट एट ₹850 एंड आर अवेलेबल एट moticket.mu एंड रेजो ओटायो। Do not miss this unforgettable concert experience. Reservations के लिए आप कॉल कर सकते हैं उनकी हॉटलाइन 466-99

9469999। तो ये खास मौका मिल गया है आपको, तोशीमा द्वारका ऑफ ग्लेन पार्क बन गई हैं हमारी लकी लकी विनर। और आरएम टू रेडियो मस्ती पर जीतने के मौके तो और भी मिलेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड और हमारे साथ प्यारे प्यारे गानों को एंजॉय करें।

0: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: Radio Master ki team ke saath
3: chaliye
1: United States, Canada or Mexico.
4: और वेल दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि काफी कुछ हो रहा है और हमारे साथ वी हैव हमारे स्पोर्ट्स गुरु विकास रामधनी. चलिए जानते हैं क्या है मोर अपडेट्स ऑन दिस वर्ल्ड कप. हेलो गुड मॉर्निंग.
5: गुड मॉर्निंग परी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू स्पोर्ट्स फैंस. सो वर्ल्ड कप स्पेशल अभी सुन रहे थे. सो तीनों जो मेजबान देश है सह मेजबान देश यूएसए मैक्सिको एंड कनाडा आपको पता है कि तीनों ही आउट हो गए हैं. एंड द रेस्ट जो है बाकी सब जो टीमें हैं एक से बढ़कर एक टीमें अभी क्वार्टर फाइनल राउंड में है. एंड फर्स्ट राउंड फर्स्ट सेमीफाइनल भी आप पता चल गया है कल रात स्पेन की जीत हुई 2-1 से बेल्जियम को उसने हराया. सो स्पेन का मुकाबला अब फ्रांस से होगा. ये एक एक्सप्लोजिव धुआंधार सेमीफाइनल साबित हो सकता है. और सेकंड सेमीफाइनल जो है वो बुधवार के लिए निर्धारित है जबकि फर्स्ट सेमीफाइनल फ्रांस एंड स्पेन ये मंगलवार के लिए. और कल जो सेकंड क्वार्टर फाइनल खेला गया उसमें स्पेन ने 88 मिनट पर ही जाकर मिकेल मेरिनो के बल पर उसने ये विनिंग गोल स्कोर किया. तब जाकर बेल्जियम की जो गोल्डन जनरेशन है उनकी हार हुई. एंड इट्स फाइनली स्पेन 2-1. और अब आज जो है तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच आज के लिए नहीं है. आज 12 बजे तक कोई भी मैच नहीं. कल सुबह संडे की सुबह 1 बजे इट्स गोइंग टू बी इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे. और आपको बताया कि इंग्लैंड जो है मॉरिशियन फुटबॉल प्रेमियों का चहेता ये देश है. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड गेम ऑन बिहाफ ऑफ हैरी केन और साथी. और उधर है अर्लिंग हैलन यानी कि हैरी केन वर्सेस हैलन. ये मैच कल सुबह 1 बजे खेला जाएगा. गोल मशीन अर्लिंग हैलन के दम पर आपको पता है कि नॉर्वे इस मुकाम पर पहली बार पहुंचकर पहले से ही इतिहास रच चुका है. पर क्या वो आगे बढ़ पाएगा. सामने है इंग्लैंड जो पिछले 60 ईयर्स से अभी भी इस ट्रॉफी का वो प्यासा है तलाश है. सो ये मैच मायामी गार्डन्स के हार्ड रॉक स्टेडियम में कल सुबह 1 बजे खेला जाएगा. और फिर बता दें कि कल ही सुबह 5 बजे एक और महामुकाबला बिटवीन अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड. ये होगा क्वार्टर फाइनल नंबर 4 अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड. कल सुबह 5 बजे ये मैच खेला जाएगा. यानी कि कल आज तो कुछ नहीं है. कल सुबह 1 बजे से लेकर सुबह 7 तक दो मैच खेले जाएंगे. एंड इट्स सुरेजेब से कहते हैं शुड नॉट मिस एनी मैच. और बता दें कि पहला सेमीफाइनल होगा

0: मंगलवार रात 11 बजे फ्रांस वर्सेस स्पेन और दूसरा बुधवार 15 जुलाई को रात 11 बजे ही कौन होगा उसमें इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना या फिर स्विट्जरलैंड वर्सेस नॉर्वे कुछ भी हो सकता है। और वर्ल्ड कप का जो ग्रैंड फिनाले है आपको पता है रविवार 19 जुलाई 2026 की रात 11 बजे ये खेला जाएगा। और आपको बता दें कि जो इंग्लैंड के जो फैंस हैं उनको बता दें कि मागेही और साथी जो हैं उन्होंने ट्रेन करना शुरू कर लिया है, सो कोई भूल चूक नहीं, उनको खेलना है और खेल कर जीतना भी है। मागेही, डिक्लान राइस और रिस जेम्स सबके सब ट्रेनिंग पर लौट आए हैं, इसलिए इट्स कमिंग होम क्या हम ये कह सकते हैं। कल सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, देखते रहिए और सुनते रहिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अपडेट्स।
2: FIFA World Cup 2026, 11 जून से 19 जुलाई। Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: सो वेल फ्रेंड्स, ये है आपका अपना टाइमलेस तड़का, जहां पर कुछ ऐसी मेलोडीज हम आपके लिए लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर दिल हमेशा बागबान हो जाता है। अभी के लिए तो आप हमारा साथ दे रहे हैं और आपकी सैटरडे मॉर्निंग को बना रहे हैं खास एंड स्पेशल विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद दिस वन। एक गाना ऐसा जो हमेशा से रहा है दिल के करीब। तो चलिए दोस्तों, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस की भरमार ऑन 5499-1294 इसे जरूर पहुंचाएंगे आपके अपनों तक। अभी के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं तो बस साथ निभाते रहिए। थोड़ी देर में बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, उसके बाद गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ, दिन के 11 बजे तक बस प्यारे प्यारे गाने लेकर आपको एंटरटेन करेंगे। And this one goes out for all the fans of 90s. Kumar Sanu and Radha Podwal ki awaazein. Enjoy this one.

0: संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं आशिता रघु। नमस्कार आशिता।
1: नमस्कार किरण। श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को आकार साकार करना। ये विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के निष्कर्षों को दर्शाता है। इस सर्वेक्षण में 73 देशों की 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के इंटरनेट से जुड़े 1,00,000 से अधिक लोगों से उनके रिश्तों, परिवार, नियोजन, संतानोपत्ति और जीवन से जुड़ी आकांक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई। रिपोर्ट से ये वैश्विक तस्वीर सामने आती है कि आज के युवा वयस्क अपने संबंधों, पारिवारिक जीवन और भविष्य से क्या अपेक्षाएं रखते हैं तथा उन्हें किन प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रसभा ने कल देर शाम घरेलू हिंसक विधेयक यानी कि

0: डोमेस्टिक अब्यूज बिल को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं लैंगिक समानता मंत्री अरियाना बोमागी ने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और अपराधियों को जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नए कानून के तहत अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करते समय घरेलू हिंसा के मामलों की जानकारी मिलने पर संबंधित पेशेवरों के लिए इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की जिम्मेदारियों का भी विस्तार किया गया है। मंत्रिपरिषद ने शागोस द्वीप समूह से जुड़े मामले में हुए हाल के नए घटनाक्रम की भी समीक्षा की है। 2 जुलाई 2026 को अटॉर्नी जनरल गैविन ग्लोवर तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि शागोस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बैठक के दौरान मॉरिशस ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को शागोस समझौते के अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मॉरिशस ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक प्रगति नहीं हुई तो वह सितंबर 2026 तक अपनी स्थिति की समीक्षा कर सकता है। और मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक निर्णय एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 537 मवेशियों से संबंधित है। इन सभी मवेशियों को आज शनिवार 11 जुलाई को जहाज से उतारा जाएगा। कृषि एवं उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने बताया कि मवेशियों को सबसे पहले लाशोमिया स्थित एक क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। इसके बाद उनके स्वास्थ्य की जाँच के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाएंगे। साथ ही जहाज के चालक दल के सदस्यों की स्वास्थ्य निगरानी भी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया पशु कल्याण और लागू स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये अनुमति आयातक कंपनी यूबोरा वेंचर्स को विशेष परिस्थिति में एक असाधारण उपाय के रूप में दी गई है। बात करें अब फीफा के बारे में। फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 के स्कोर से हराया। पूरे मैच में स्पेन का दबदबा देखने को मिला। एक बार फिर पोर्चुगल के खिलाफ राउंड ऑफ 16 की तरह मिकेल मेरिनो टीम के हीरो बने। मैच के दौरान बतौर सब्स्टिट्यूट मैदान पर उतरे आर्सेनल के मिडफील्डर मेरिनो ने अंतिम क्षणों में बेल्जियम के गोलकीपर लेमेंस की गलती का फायदा उठाते हुए विजयी गोल दागकर स्पेन को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। इससे पहले मैच के 30वें मिनट पर फाबियन रुइज ने स्पेन को बढ़त दिलाई थी, जबकि बेल्जियम के लिए देकेतेलेरे ने बराबरी का गोल किया। अब मंगलवार रात सेमीफाइनल में स्पेन का सामना फ्रांस से होगा। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण एमबीसी पर किया जाएगा। फीफा विश्व कप के 2 शेष क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल सुबह खेले जाएंगे। कल रविवार सुबह 1 बजे इंग्लैंड अपने दूसरे विश्व कप खिताब की उम्मीद के साथ नॉर्वे का सामना करेगा। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स 11 पर किया जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच कल सुबह 5 बजे खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी स्पेन में लगी भीषण जंगल की आग में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं की टीमें शुक्रवार को भी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही। और चलते चलते हम आपको याद दिला देते हैं कि आज समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम में विश्व विरासत सूची में आप्रवासी घाट के शामिल किए जाने की 20वीं सालगिरह के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम पेश किया जा रहा है। मुख्य मेहमान होंगे विष्णु बंदन जी और साथ में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी किरण जानकी जी। तो इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Body Branch, RM2, Radio Must See.

0: Comedy Brunch RM2 Radio Masti.
1: एंड वेल फ्रेंड्स, जिंदगी तो हमें हर सुबह गले लगाती है. हर सुबह हमें 24 आवर्स फ्रेश आवर्स मिलते हैं हमारी जिंदगी को और भी स्पेशल एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए. अभी के लिए हमारा साथ दे रहे हैं परफेक्ट टाइम सुबह के 9:09 सैटरडे की ये सुबह. इट्स 11th of July. मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉली ब्रंच जहां पर हमने प्लेटर सजाई है गुड म्यूजिक के साथ. कुछ ऐसे गाने जो आपके सैटरडे मॉर्निंग को खास और स्पेशल बनाने वाले हैं. एंड वेल फ्रेंड्स, जब वीकेंड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बस आप सुबह लेट उठे, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप हर एक पल को खास और स्पेशल बनाए. एक कप चाय, फेवरेट म्यूजिक, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट या बस बालकनी में बैठकर वो फ्रेश एयर को एंजॉय करना, ये छोटी छोटी खुशियां ही तो मायने रखती है भाग दौड़ भरी जिंदगी में. ये मौके हमें कम ही मिलते हैं. सो जब भी मौका मिले इसे आप सीज करें. एंड अभी के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं दोस्तों. सो आपकी इस मॉर्निंग को खास और स्पेशल बनाने वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. आपकी मॉर्निंग को एकदम परफेक्ट स्टार्ट मिलने वाला है और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So, जैसे हमने बताया, we have आपके messages, आपके dedications already आ चुके हैं 5499-1294 पर. और अगर अभी अभी आपने tune in किया है, you can send us your sweet sweet messages. एक shout out आपके नाम, आपके सभी अपनों के नाम.
2: कभी spicy, कभी sweet, music lovers की heartbeat.
3: Tak tak Bollywood.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: So well, beautiful chemistry हमें देखने को मिली in this song, Preeti Zinta, the very beautiful dimpled beauty of Bollywood and उनका साथ देते हुए one and only Hrithik Roshan from the film Mission Kashmir. ये गाना था आप सभी के लिए सुबह के 9:20. I do hope friends you are enjoying the music and you are enjoying your Saturday morning. अपने weekend को आप enjoy कर रहे हैं and आपके messages, आपके dedications. Well, यहाँ पर Davison Lalmati से हमारा साथ दे रहे हैं. Warm welcome आपका Davison and wishing you a wonderful weekend. We also have Ritesh श्यामा रानी थनीश आदर्श निष्ठा साथ में है जयश्री युषरा शकील वशेष याशना एंड सभी जीवन परिवार बेले से हमारा साथ दे रहे हैं कहते हैं गाना गोज आउट फॉर एंटायर क्रू ऑफ रेडियो मस्ती अरेवा थैंक यू सो मच और यहां पर हो गए हैं तैयार सी साइड जाने के लिए क्या बात है ये हुई ना बात यानी कि वीकेंड हो और एक भी पल को मिस ना करे यही होता है वीकेंड का असली मजा सो यहां पर आप तो जा रहे हैं सी साइड एंड याद कर रहे हैं अपने कलीग्स को ओहो दैट्स रियली स्वीट फुल वॉल्यूम प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं एंड डेडिकेटिंग गाना फॉर सीमा नीना नुशी साथ में है निष्ठा विमी लोलियाना एंड स्वीटी एशले है रवि रीना ललिता जीतन सभी को याद कर रही हैं और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना अपने सभी अपनों के नाम साथ ही यहाँ पर आज शीतल एंड विकी दे आर सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी विशिंग देम लोड्स ऑफ लव विशेस है फ्रॉम बेटा नील भाई नितिन भाभी रितिना साथ में है सिस्टर मेधा जीजा मनीष नीस श्रेया नेफ्यू आर्यन साथ में है मामा संगीता एंड हेवनली ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम पापा रघुनाथ जी सभी दयाल परिवार मोंटाई ब्लॉन्च से आप तक पहुंचा रहे हैं प्यार एंड स्पेशल विशेज यहाँ पर ऋषि विदेशी साथ दे रहे हैं और कहते हैं इट्स अ रॉकिंग सैटरडे मॉर्निंग एंड सभी आरएम2 लिसनर्स के नाम एक ब्यूटीफुल गाना स्पेशली फॉर ऑल द स्पेन fans and aapki modi girlfriend ke naam and saath hi goes out for everyone jo hamare saath jude hue hain good friend jo is waqt kaam kar rahe hain

तो उनके लिए आप स्पेशल विशेस पहुंचा रहे हैं और उनका बर्थडे होने वाला है ऑन 22nd ऑफ जुलाई सो उनके लिए स्पेशल विशेस एंड प्यार सो चलिए गाना होगा आपकी डियर फ्रेंड के नाम एंड कहते हैं एक प्यारा सा गाना फॉर लवली मदर इन लॉ सुनीता आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं बेस्ट विशेस लेकर आए हैं उनके दो बेटे करण एंड अवि और साथ में है आरव अविशा

आए हैं आपके लिए गुडी गुड विशेस. तो यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस की गुड विशेस हम पहुंचा रहे हैं भर भर कर आपके अपनों के नाम. सो भूलिएगा नहीं, मैं हूं परी आपके साथ. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर, एंड दैट्स योर बॉली ब्रांच ऑन RM2 रेडियो मस्ती. हियर वी गो विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती
1: एंड वेल टू ऑल द क्यूरी पाइज जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. इट्स 9:33 और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन मॉर्निंग टाइम. विंटर की ये मॉर्निंग जहां पर सुबह सुबह उठना ऐसा लगता है ओ माय गॉड. सुबह उठकर कोजी कोजी सी मॉर्निंग जहां पर आप अपने ब्लैंकेट में थोड़ा सा लेजी लेजी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. कभी कभार ये छोटी छोटी चीज़ें भी ब्लेसिंग्स ही लगती हैं. सो बस जैसे हम कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज और फिर देखिए कि आपकी ये जो ग्रैटिट्यूड है आपका ये जो ग्रैटिट्यूड है वो आपकी लाइफ को और कितना ब्यूटीफुल बना देगा. सो वेल फ्रेंड्स मैं हूँ परी आपके साथ. आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो विशिंग यू अ हैप्पी हैप्पी सैटरडे मॉर्निंग एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉली ब्रंच जहाँ पर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हम लेकर आए हैं आपके लिए. साथ ही आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हमारे सभी लिसनर्स ऑन 5499 1294 ऑल द वे फ्रॉम फ्लाक आई हैं जाना जी अपना प्यार लेकर और कहती है स्वीट बातों को एंजॉय कर रही हूँ मॉर्निंग को एंजॉय कर रही हूँ रेडियो मस्ती के साथ. प्लीज एक स्वीट सा गाना डेडिकेट करें हमारे पूरे परिवार के नाम रीमा जनिता सेष्टा अंशनी सिल्विया युवी कृषि सरसरन परिवार फ्लाक से हमारा साथ दे रहे हैं. सो थैंक यू सो मच जाना जी फॉर ऑल द लवली वर्ड्स जो आपने यहाँ पर लिखे हैं. इट मीन्स अ लॉट और बस इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिएगा. एंड कहते हैं हेलो जी यहाँ पर एक प्यारा सा गाना आप जरूर डेडिकेट करें और ये होने वाला है फॉर माम चांद एंड वियान जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके लिए प्यार ब्लेसिंग्स हैप्पीनेस गुड हेल्थ दैट्स कमिंग फ्रॉम निशा रिशा जमिशा माही वानिया साथ में है विजय नीरज नितीश पापी जान एंड फ्रॉम ऑल संतक चतुर परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंड साथ ही विशेष कमिंग फ्रॉम एंजल वर्ष ऑफ पेचराफरे उनके लिए भेजा है बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेष. विशिंग सिस्टर इन लॉ काजल महादेवा वेरी हैप्पी बर्थडे और ये है फ्रॉम सभी परिवार ऑफ ट्रियोले पूजा मीनू केव किड्स कुशान ज्ञानवी मानस वेदांशी नुरव और नक्ष सभी ने भेजा है प्यार एंड स्पेशल विशेष. साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर जया एंड निष्ठा ये है आपकी प्यारी जेठानिया दैट्स सो स्वीट और कहती हैं थैंकिंग देम फॉर बीइंग द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड आई लव देम सो मच एंड आई एम सो लकी टू हैव देम इन माय लाइफ. ये है फ्रॉम देवरानी कृति एंड इट्स रियली स्वीट. जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर फैमिली में प्यार बना रहे ना तो बस लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है और देवरानी जेठानी के बीच इतना सारा प्यार देखकर मेरा दिल तो आज पिघल रहा है. सो लोड्स ऑफ लव टू जया एंड निष्ठा दैट्स कमिंग फ्रॉम कृति उनके लिए भेजा है प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज. काजल जगो कोइचे से हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं गाना हो जाए फॉर हस्बैंड नकुलेश एंड बेटा जिशांत उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. तो चलिए यहाँ पर स्पेशल विशेज उन तमाम लोगों के नाम भी जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे ऑन 11th ऑफ जुलाई. स्पेशल स्पेशल विश हमारी पूरी RM2 रेडियो मस्ती टीम की ओर से.

0: Indie Brunch RM2 Radio Masti.
1: So that was a beautiful indie pop, Rafta Rafta Nazar, one and only Sonu Nigam, unki magical voice. Aur is waqt hamare saath jude hue hamare sabhi listeners. Kya baat hai, itne sare messages, lekin acha lagta hai. Yahi to aapka pyar hai jo hum tak pahunch raha hai. So Aarti ji Pamplemousse se hamara saath de rahi hain aap. Dedicating gana for Habi Shakti aur kids Ashi, Ashish and Renu, jo sare naam se hain aur unke liye pyar and special wishes. और चलिए यहाँ पर आ गए हैं और भी मैसेजेस एंड डेडिकेशंस और अपना प्यार आप हम तक पहुँचा रही हैं, ये जानकर हमें अच्छा अच्छा लगता है. सो वेल, अभी के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सभी सीतोहल परिवार, एंजॉयिंग द सॉन्ग. सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू सभी परिवार के लिए. बबीता जी पोंकोलवेल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप और कहते हैं अगला गाना मेरी फैमिली के नाम, सभी के लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. और यहाँ पर विजया जी साथ दे रही हैं आप. सो हैप्पी हैप्पी सैटरडे एंड हैप्पी वीकेंड आपको, आपके परिवार को. गाना गोज आउट फॉर आतिश एंड समायरा, उनके लिए भेजा है आपने प्यार. एंड डेडिकेटिंग गाना फॉर ममा मंती बिहारी ऑफ रिबिजोगांपा और उनके लिए बेस्ट बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम शायन ओगू. दादी मीरा विदुषी है मोक्षदा, छोटी शायना एंड सभी परिवार फ्रॉम मोंगो, उनके लिए भेज रहे हैं प्यार एंड स्पेशल विशेज. सो चलिए दोस्तों, ऐसे ही आपका प्यार एंड आपकी स्पेशल विशेज आप हम तक पहुंचा सकते हैं. नंबर तो आप जानते ही हैं, इट्स 5499-1294 पर हो रहा है आपका इंतजार.
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट.
3: तक तक बॉलीवुड.
2: Radio Masti.

0: एंड वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. यहाँ पर प्रीतम वेटू जी साथ दे रहे हैं पीतों से, एंड आपकी वंडरफुल ब्यूटीफुल वाइफ वर्षा. बिल्कुल जी, कुछ लोग तो दिल में बसे होते हैं और आप उनमें से एक हैं. सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ स्वीट लिसनर, हमेशा साथ निभाते हैं. और अभी के लिए नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ एंड इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार प्रिय श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुबोह ने कल दोपहर पोर्टरिस में आज एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशन योजना को समाप्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रस्तावित मींस टेस्ट यानी आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर पेंशन देने की व्यवस्था को सरकार ने वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि मॉरिशस के नागरिकों के पास 60 वर्ष की आयु से संशोधित पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा। वहीं जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करेंगे, उन्हें अधिक राशि की पेंशन मिलेगी। प्लेटफॉर्म को मैं सेंजिकाल के बैनर तले आज 11 जुलाई को पोर्टरिस में एक विशाल ट्रेड यूनियन प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। ये रैली मारीगन दे ला पे सोशल सेंटर से शुरू होगी। प्रदर्शनकारी सार्वभौमिक वृद्धावस्था यानी यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन का भुगतान 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग कर रही है। हालांकि इस आंदोलन के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहा है कि क्या मौजूदा पेंशन व्यवस्था को लंबे समय तक आर्थिक और सामाजिक प्रभावों के बिना बनाए रखना संभव है कि नहीं। अन्य खबरों में समाजशास्त्री राजेंद्र संतू का कहना है कि मॉरिशस के समाज में बुजुर्गों की भूमिका में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। उनके अनुसार आज कई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है। वहीं युवा पीढ़ी पहले से ही अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस के अनेक परिवारों में दादा दादी नाना नानी युवा माता पिता की महत्वपूर्ण सहायता करती हैं। वे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाती हैं जिससे युवा अपने काम पर ध्यान दे सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। मंत्रिपरिषद ने शागुस द्वीप समूह से जुड़े मामले में हुई हाल के नए घटनाक्रम की भी समीक्षा की है। 2 जुलाई 2026 को अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि शागुस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बैठक के दौरान मॉरिशस ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को शागुस समझौते के अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मॉरिशस ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक प्रगति नहीं हुई तो वह सितंबर 2026 तक अपनी स्थिति की समीक्षा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी फिलीपींस में दशकों के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच पूर्वी एशिया के कई देश एक बड़े तूफान के आने की तैयारी कर रहे हैं। टाइफून बावी अपने सबसे चौड़े हिस्से में लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो करीब करीब फ्रांस की चौड़ाई के बराबर है। ये तूफान प्रशांत महासागर के ऊपर से बढ़ते हुए ताइवान की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि ये ताइवान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों तथा जापान के दूरदराज द्वीपों की श्रृंखला में भारी बारिश लाएगा। इसके बाद शनिवार को इसके दक्षिण पूर्वी चीन यानी कि आज दक्षिण पूर्वी चीन में पहुंचने की संभावना है। तूफान को देखते हुए पूरे क्षेत्र में दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कई स्कूलों ने कक्षाएं स्थगित कर दी हैं। तूफान से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने आवश्यक सामान जमा करना शुरू कर दिया है जिसके चलते कई सुपरमार्केट की अलमारियां खाली हो गई है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। 61 साल के 61 साल के श्री हरिहरन मुचिया, श्री हरिहरन मुचिया जिन राजेन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे ला शपेल ओदों तेलियनसन बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 12 बजे कॉलोव्यू की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। इकसठ साल के श्री हरिहरन मुचिया जिन्हें राजेन के नाम से ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज लाशा पेलौदों तेलियनसन बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोवीक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। जगुले मोताबा में 75 साल की 75 years old की श्रीमती भगवंती गुमानी पैदाश्रम सुबान, और जिन्हें भगवंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके बेटे नीरज गुमानी के घर मोताबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। काना एवेन्यू कैट्रोकोको में 44 साल के 44 years old के श्री आदेश कुंजल जिन्हें विदेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले लॉन्ग बीच होटल के टैक्सी ड्राइवर थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर काथाकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
7: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Holy Branch RM2 Radio Masti.
1: तो चलिए दोस्तों रेडियो मस्ती पर इट्स टाइम फॉर योर बॉली ब्रंच 10:16 मैं हूं परी आपके साथ इट्स 11th ऑफ जुलाई आज आपकी इस मॉर्निंग को खास एंड स्पेशल बनाने कुछ प्यारे गाने आपके लिए लेकर आए हैं आई डू होप दैट यू आल्सो एंजॉयिंग अपना वीकेंड एंड मेक इट स्पेशल जैसे हम कहते हैं कुछ टाइम अपने लिए भी आप जरूर निकालें वैसे विंटर का टाइम शुरू हो चुका है और विंटर के टाइम में कितना कुछ खास और स्पेशल हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई विंटर में कहीं बाहर नहीं जाना कोई भी पार्टीज नहीं होनी चाहिए लेकिन विंटर में आप विंटर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहां पर हॉट चॉकलेट कॉफी और एक टी बार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ब्लैंकेट्स फेरी लाइट्स और कैंडल्स के साथ आपके फेवरेट मूवी मैराथन लगाकर आप एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ कुछ वार्म ड्रिंक्स और साथ ही साथ एक कोजी सिटिंग आपके इस वीकेंड को खास और स्पेशल बना सकता है जरा सोचिए इसके बारे में आज सैटरडे नाइट है सो आप कुछ खास और स्पेशल जरूर कर सकते हैं सो वेल फ्रेंड्स मैं हूं परी आपके साथ और आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं हम जानते हैं योर मैसेजेस योर डेडिकेशन हमेशा की तरह रहेगा इंतजार 5499-1294 पर अभी के लिए एक और प्यारा सा गाना आप सभी के नाम एंड दैट्स इन द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ जुबिन नौटियाल और उनका साथ देती हुई साक्षी होलकर सो एंजॉय दिस वन एवरीवन जो हमारा साथ दे रहे हैं वो वीकेंड एंड आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन योर दिल का हाल 5499-1294 पर

0: Story Brunch RM2 Radio Masti.
1: सो वेल फ्रेंड्स 10:26 और आप हमारा साथ दे रहे हैं सैटरडे की सुबह मस्त मस्ती सुबह जहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं गुड म्यूजिक. वैसे दोस्तों इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए ना रिलैक्स करने के लिए चिलैक्स करने के लिए तो ये भी एक ब्लेसिंग ही लगता है. और तभी तो हम कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप खुशियाँ ढूंढेंगे तो आप देखिए कि लाइफ कितनी खूबसूरत कितनी ब्यूटीफुल लगेगी. अभी के लिए तो हम भी खुशी पा रहे हैं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस के साथ. जहां पर मैसेजेस आ जाते हैं तो हमारे चेहरे की स्माइल भी बढ़ जाती है कि ओहो हमारे सभी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहिए. अभी के लिए तो अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. आप गाना होगा आपके नाम. साथ ही जितने भी लिसनर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: tips powered by Halkuri Fashion, house of ready-made garments.
1: Bolly Brunch, RM2, Radio Masti.
2: सो वेल दोस्तों, स्टाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं और जैसे हम जानते हैं कि अभी तो विंटर का सीज़न चल रहा है और विंटर में आप कितना कुछ स्टाइलिश कर सकते हैं अपने लुक को और भी एनहांस करने के लिए. सो लेयर स्मार्ट नॉट बल्कि एक हैवी स्वेटर की बजाय आप एक टी शर्ट प्लस शर्ट और एक जैकेट पहन सकते हैं. ये आपके लुक को और भी स्टाइलिश बनाएगा. स्कार्फ्स ये तो होते हैं गेम चेंजर. एक कलरफुल स्कार्फ आपके सिंपल आउटफिट को इंस्टेंटली क्लासी लुक दे सकता है. एंड स्नीकर्स के साथ साथ अगर एंकल बूट्स एंड लॉन्ग बूट्स भी अगर आप ट्राई करें तो ये एक शीक विंटर वाइब देता है. साथ ही अगर कलर्स के साथ खेलना चाहे तो बेज, बर्गंडी, ऑलिव ग्रीन, नेवी ब्लू एंड मरून जैसे शेड्स विंटर में और भी एलिगेंट और स्टाइलिश लगते हैं. साथ ही साथ जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि फैशन सिर्फ कपड़ों से नहीं वेल ग्रूम्ड लुक से भी कंप्लीट होता है. सो डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर लिप बाम एंड हैंड क्रीम, इसे हमेशा हैंडी रखें. और ये थी कुछ फैशन टिप्स आपके लिए आपके इस विंटर को और भी स्टाइलिश बनाने के लिए.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्लेटफॉर्म कुमें सेंजिकाल की बानतली आज 11 जुलाई को पोर्ट लुइस में एक विशाल ट्रेड यूनियन प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। ये रैली मरियन दे ला पे सोशल सेंटर से शुरू होगी। प्रदर्शनकारी सार्वभौमिक वृद्धावस्था यानी यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन का भुगतान 60 वर्ष की आयु से जारी रखने की मांग कर रहे हैं। समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजिस्ट राजेंद्र संतु का कहना है कि मॉरिशस की समाज में बुजुर्गों की भूमिका में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। उनके अनुसार आज कई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है, वहीं युवा पीढ़ी पहले से ही अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस के अनेक परिवारों में दादा दादी और नाना नानी युवा माता पिता की महत्वपूर्ण सहायता करती है। वे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाती हैं, जिससे युवा अपने काम पर ध्यान दे सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। ये विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के निष्कर्षों को दर्शाता है। इस सर्वेक्षण में 73 देशों के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के इंटरनेट से जुड़े 1,00,000 से अधिक लोगों से उनके रिश्तों, परिवार नियोजन, संतानोपत्ति और जीवन से जुड़ी आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली गई। रिपोर्ट से ये वैश्विक तस्वीर सामने आती है कि आज के युवा वयस्क अपने संबंधों, पारिवारिक जीवन और भविष्य से क्या अपेक्षाएं रखती हैं तथा उन्हें किन प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका ने ईरान से मांग की है कि वह सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज व्यापारिक जहाज़ों के लिए खुला और सुरक्षित है तथा व्यापार जहाज़ों पर हमले पूरी तरह रोकने का वचन दे। ये मुद्दा आज शनिवार को ओमान में होने वाली वार्ता में प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। अमरीकी मीडिया के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने निजी तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों से स्वीकार किया है कि व्यापारिक जहाज़ों पर हुई गोलीबारी एक गलती थी। हालांकि ईरान ने इसके लिए अपने ही एक कथित कट्टरपंथी गुट को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस सप्ताह हुए संघर्ष के बावजूद दोनों देशों ने वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस ने इन घटनाओं को युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। डालिया रोड आमिचे में 80 साल की 80 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सनपतिया अनाम पैदाशराम रामबकस और जिन्हें सत्या के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर आमिचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टूडिया 3 PM। पोतीराम लेन विचमिल त्रियोली में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की कुमारी अस्वंती नोगतन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर विचमिल त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी त्रियोली शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। आवनी सिकन बासन रोड कैथरबोन में उनासी साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बसंती कुमारी अनंत जिन्हें पैदाश्राम बुदन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे अजय अनंत के घर कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा कैथरबोन की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: मॉली ब्रांच
1: और M2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 11:10 हो चुके हैं और क्या बात है, आज तो मौसम भी फुल मूड में है। धूप खिली है, वीकेंड आ गया, तो फिर हम पीछे क्यों रहे भाई। हम भी मूड बनाते हैं, चलिए वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मुस्कुराते हैं और बॉलीवुड के सुपरहिट गानों के साथ जुड़ जाते हैं। वीकेंड को तो बनाना है मज़ेदार, सुपरहिट। मैं हूँ आपके साथ पूनम और शुरू हो चुका है बॉली ब्रांच।
0: बॉली ब्रांच
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती
1: 11:22 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने बॉली ब्रंच के साथ और हम तो आ जाते हैं आपको सिर्फ एंटरटेन करने के लिए और आपके साथ थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई वीकेंड हो और सिर्फ ऐसे स्मूथ सा दिन निकल जाए, फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। अगर आपके भी कोई प्लान्स हैं, आपके दिल में भी या आपकी प्ले लिस्ट में कोई स्पेशल सॉन्ग है या कोई डेडिकेशन है या कोई लेटेस्ट ऐसा गाना है जो हमारी आंखों से ऐसे गुजरता हुआ चला गया, तो आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं 5499-1294 पर। जो अगला गाना सुनेंगे ये तो भैया बहुत ही फेमस हुआ, गाना तो फेमस हुआ बट जो उन्होंने एक हमारे एक स्टार थे, मतलब नॉट स्टार, वो कहते हैं ना को स्टार थे, तो उन्होंने उसके जब लास्ट शूट हो रहा था उसके ऊपर वो डांस कर दिया और वो इतना फेमस हो गया, मतलब जिसने किया वो इतना फेमस नहीं हुआ, गाना फेमस हो गया, को स्टार फेमस हो गया। देख लीजिए ये भी होता है, बस आपको अपने जो पैशन है उसके साथ जुड़े रहना है और कहीं नहीं जाना है, तो इंजॉय कीजिए ये गाना और आप सबको पता होगा कितना सुपर हिट ये वायरल जो ये सॉन्ग गया था। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: हेलो ब्रांच
1: और एम टू
0: रेडियो मस्ती
2: 11:34 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। क्या बात है, वही कई गाने ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं और मैं ये कहती हूँ ये जब गाने चलते हैं ना उस टाइम थोड़ा सा डांस वांस कर लिया करो, कहीं पे भी खड़े हो एटलीस्ट बिग स्माइल करा करो, थोड़ा सा झूम लिया करो अगर ईयर पीस लगाए हुए हैं, वरना लोग कहेंगे क्या हो गया इनको। तो चलिए भाई दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से आए हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनीता जी फ्लिक ऑन फ्लॉक से और इन्जॉय कर रही हैं और मुझसे पूछ रही हैं

0: हमारी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:46 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं पली ब्रंच के साथ में। भाई यार क्या करें, धूप इतनी प्यारी निकली हुई है ना, और ऐसा लग रहा है बस बाहर घर से बाहर निकल जाएं, थोड़ी सी धूप को अपनी बॉडी में ले लें। भाई ये तो चीज़ चाहिए, पर हम क्या करें, हम तो स्टूडियो के अंदर हैं, हम तो

0: नहीं जा सकते, पर आप लोग तो घर पर हैं। जो लोग घर पर है थोड़ा सा धूप में निकलो, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। चलिए भाई दो तीन प्यारे से मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है स्नेहल, जो कि अपने भाई भाभी और अपनी मामा को प्यारा सा गाना सुनाना चाहती है, एंड स्पेशली गुलशन भोला को। भाई क्या करें, आपके मैसेजेस आते इतने प्यारे हैं तो हमारा दिल करता है सारे मैसेजेस पढ़ें। विश्वानी धूमन जी जुड़ी हुई है वाकफा से, और वो कह रही हैं कि गार्डन में हूँ और बस गार्डन में पानी डाल रही हूँ। क्या बात है, ये सबसे अच्छा काम किया। साथ में इस समय हमारी एक प्यारी सी आज कमला जी का बर्थडे है, जो कि तनवीर, आयशा, तेजल, तारा चंद, मनीषा, वर्षा, रायन, रायना एंड अनिष्ठा जो कि उन्हें विश कर रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे, और चिल्ला के कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जोर से बोलना, उनको सुनना चाहिए कि हम कितने एक्साइटेड हैं। बस आप ये बताओ पार्टी कहाँ दे रहे हो। क्या बात है भैया, ये बहुत अच्छी बात होती है, पार्टी ज़रूर मांगनी चाहिए। चलिए भैया, एक प्यारा सा मैसेज और आया है ललित जी का, जो कि यूएसए से हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि गाना सुनते सुनते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो गया। मैंने बोला भाई बता दो दो, कहते हैं कि अब हमें पता ही नहीं चल रहा हम कैसे जाएँ कहाँ जाएँ, तो हम बहुत पास में कहीं रोकने वाले हैं। पर अगर आप भी यहाँ पर हैं कहीं पर, आपको ये बड़ी दूर जाना है, तो भाई डीजल या पेट्रोल जो भी डलवाना है अपनी गाड़ी में डलवा लो, इन्जॉय करो गाने, बट ये नहीं कि बीच में कहीं रुक जाओ। तो ललित जी हम तो आपको यही बोलेंगे, जहाँ पर भी जा रहे हैं थोड़ा सा पेट्रोल बस भरवा लीजिए, आस पास देखिए स्टेशन कहाँ पर है, इन्जॉय कीजिए अपना ये गाना।
1: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से. आशिता आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम जी. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभोन ने कल दोपहर पोर्टलिस में आयोजित एक वार्ता में स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशन योजना को समाप्त नहीं किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि राज्य वृद्धावस्था पेंशन प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार है. उन्होंने ये भी पुष्टि की कि वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रस्तावित मींस टेस्ट यानी आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर पेंशन देने की व्यवस्था को सरकार ने वापस दे दिया है. उन्होंने बताया कि अब मॉरिशस के नागरिकों के पास 60 वर्ष की आयु से संशोधित पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा. वहीं जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन का भुगतान 65 वर्ष की आयु तक स्थगित करेंगे उन्हें अधिक राशि की पेंशन मिलेगी. मंत्रिपरिषद ने शागुस द्वीप समूह से जुड़े मामले में हुए हाल के नए घटनाक्रम की भी समीक्षा की है. 2 जुलाई 2026 को अटॉर्नी जनरल गेविन ग्रोवर तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया. ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नई प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है. साथ ही उन्होंने कहा कि शागुस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. बैठक के दौरान मॉरिशस ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को शागुस समझौते के अनुमोदन के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए. मॉरिशस ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक प्रगति नहीं हुई तो वह सितंबर 2026 तक अपनी स्थिति की समीक्षा कर सकता है. मंत्रिपरिषद की बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इनमें से एक निर्णय एमवी अपेक्स जहाज पर मौजूद 537 मवेशियों से संबंधित है. इन सभी मवेशियों को आज शनिवार 11 जुलाई को जहाज से उतारा जाएगा तथा इसके बाद लाशोमिया स्थित क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा जहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए विभिन्न परीक्षण किए जाएंगे तथा जहाज के चालक दल के सदस्यों की स्वास्थ्य निगरानी की भी जाएगी. मंत्री अरविंद बुलेला ने पुष्टि की कि पूरी प्रक्रिया पशु कल्याण और लागू स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करते हुए की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि अनुमति आयात तक कंपनी बोरा वेंचर्स को विशेष परिस्थिति में एक असाधारण उपाय के रूप में दी गई है. राज्यसभा ने कल देर शाम घरेलू हिंसा विधेयक यानी कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल को बिना किसी संशोधन के पारित किया. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एवं लैंगिक समानता मंत्री अरियाना वोमागी ने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और अपराधियों को जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी स्पेन में लगी भीषण जंगल की आग में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 23 अन्य लापता बताए जा रहे हैं. आपातकालीन सेवाओं की टीमें शुक्रवार को भी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी थी. तथा अन्य खबरों में अमेरिका ने ईरान से मांग की है कि वह सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ व्यापारिक जहाज़ों के लिए खुला और सुरक्षित हैं तथा व्यापार जहाज़ों पर हमले पूरी तरह रोकने का वचन दें. ये मुद्दा आज शनिवार को ओमान में होने वाली वार्ता में प्रमुख रूप से उठाया जाएगा. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार. गनुरोड रिविया जुपस में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमित्रा गनु पैदाश नाम भुजावन और जिन्हें मामा विनय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विनय गनु के घर रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौलाबू रिविया जुपस की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो 1 PM. रिशमा रोड सेंट्रो दे फ्लैक में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती भेंगेरोती पैदाश्रम जा हुई और जिन्हें फोनो के नाम से बुक ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल 11 बजे उनकी बेटी मनीषा बीजमोहन के घर सौंपोदे फ्लाक का रिश्मा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमारो एट 11 AM 16 मील फॉरेस्ट साइड क्यूपिक में 93 साल के 93 years old के श्री मनीलाल जीवता जिन्हें तोमान के नाम से भी ज्यादा जानती थी कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके घर फॉरेस्ट क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM बुले रोज सेंटर दे फ्लाक में 82 साल के 82 years old के श्री मारीमुतू रामसामी जिन्हें सामुगों के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती मुदली किसनामा वालायुदा के घर से उनकी पत्नी श्रीमती मुदले किसनामा वालायुदा के घर सौंपो दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डेमास की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टूडे 3 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
7: NBC Play,
8: NBC Radio.tv,
7: NBC Radio.tv.
8: Love Lounge,
9: RM2,
8: Love Lounge.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: दोस्तों कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, कहते हैं ना सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही प्यार भरे खूबसूरत गानों के साथ अगले दो घंटे हम आपके साथ रहेंगे। स्वागत है उन सभी का जो कि जुड़े हैं हमारे साथ लव लाउंज में। सुबह से तो हमारे आपको मस्ती वाले गाने सुना रहे थे, क्योंकि भाई पूरा दिन भी तो चलाना है और आपको कहना है जो जो काम करने हैं आप करते रहिए, पर बस थोड़ा सा टाइम ये जो है थोड़ा सा रुकने का है। तो हम शुरू कर रहे हैं लव लाउंज। यहाँ पर 12:09 हो चुके हैं। जो भी अपने प्यार के नाम कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं 5499-1294 पर। एंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि दिल से डायरेक्ट जुड़ा है।
0: लव लाउंज
2: RM2
0: लव लाउंज

0: हमारी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:14 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़ गए हैं फिर से बॉली ब्रंच के साथ। भाई मेरा दिल कर रहा था कि क्यों ना मैं दोबारा से बॉली ब्रंच करूं, क्योंकि पता क्या है, सैटरडे का दिन है, थोड़ा सा मूड और मस्ती भाई बनी हुई थी, तो मैंने बोला चलो इसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए भाई आप भी जुड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए भाई हमें बाहर घूमने जाना है, तो हमारे को कोई तड़क भड़क वाले गाने फिर से सुना दीजिए। क्यों ना हो, हम तो आपके मूड के हिसाब से चलते हैं भाई। पर सबसे स्पेशल आज है किसी स्पेशल का बर्थडे, तो आज है हमारी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त है जिनका नाम है सैबी, जो कि आई है मुंबई से मॉरिशस में, जो कि वेकेशन पर आई है, और उनको हम देते हैं बहुत सारी ढेरों बधाइयां, क्योंकि RM2 रेडियो मिस्ती हमेशा उनके साथ रहता है, आप सबके साथ रहता है। तो हम तो यही कहेंगे आपका दिन बहुत अच्छा जाए, क्योंकि आप यहाँ आई हैं स्पेशल, तो हम तो यही कहेंगे आपको कि आपकी बधाइयाँ तो आपको मिलनी चाहिए, पर हम तो यही कहेंगे आप आ जाओ यहाँ पे RM2 रेडियो मस्ती के स्टूडियो पर, यहाँ पर और थोड़ी सी बातें करेंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे। पर फिर भी अगर आप नहीं आ सकती तो हम आपको अपना जो सेलिब्रेट करने आए हैं अपना बर्थडे, इंजॉय कीजिएगा, मस्ती कीजिएगा, और मॉरिशस आपको बहुत प्यार करता है। तो चलिए भाई हैप्पी बर्थडे विश करते हैं हमारी पूरी एमबीसी की टीम, और स्पेशली RM2 रेडियो मस्ती, और मेरी तरफ से भी, पूनम की तरफ से भी, सैबी जी आपको हैप्पी बर्थडे।

0: Bollywood.
1: Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:27 हो चुके हैं। हमें पता है आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट क्या करें, हमें तो उनका भी ख्याल रखना है जिनको पसंद है हॉर्स रेसिंग। जी थोड़ी देर में आप जुड़ पाएंगे शौंदी मॉस की तरफ, जहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारे क्रेजी हो रखे हैं इस टाइम हॉर्स रेसिंग की तरफ। तो चलिए बस एक प्यारा सा गाना साथ साथ सुनते हैं और थोड़ी देर में जुड़ेंगे शौंदी मॉस की तरफ।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ओली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:46 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़ गए हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। भैया ये टाइम जो है ना थोड़ा सा सुकून वाला है, बट नॉट ऑन सैटरडे एंड संडे, क्योंकि सैटरडे संडे भाई जो जितने काम आपके पेंडिंग होते हैं पूरे वीक में, क्योंकि आपको वीक में तो भाई ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, बहुत सारे काम होते हैं, पर थोड़ा सा टाइम जो होता है ना ये सैटरडे संडे वाला थोड़ा परिवार के लिए भी होता है। बट बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो भाई शिफ्ट अलग से करते हैं, जो सैटरडे संडे भी जाते हैं, तो उनको भी हम ये कहेंगे भाई आप इंजॉय कीजिएगा को और साथ में अपने काम करते रहिए। 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे साए। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजा, प्रियंका, कमलदीप, हर्षनी, कृतिका और प्रिया। चलिए जी, और

के साथ में जेना जी जुड़ी हुई हैं, साथ में पेरिस से, और इंजॉय कर रही हैं अपने प्रोग्राम को। उसके साथ में यलेश जी भी जुड़े हैं और बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है, इतने सारे फूड की, साथ में कह रहे हैं कि अगर आपको दिल करता है पूनम जी खा लो। हाँ बस मैं कैसे स्क्रीन में से हाथ डालूं और खा लूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा भी तो लंच आवर है। कोई बात नहीं, बट मैं, मेरे मुँह में पानी फुल आपने दे दिया है, मैं थोड़ी देर बाद बिल्कुल खाऊंगी। पर थैंक यू यलेश आपके साथ जुड़ने का। इसके साथ में एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है हमारी एक और, कहते हैं कि जो ऐसी मदर इन लॉ मिलती है ना, उनके लिए बहुत प्यार, मतलब प्यार उमड़ उमड़ कर आता है। इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं राजविनी जी, राजविनी माधव जी, जो कि त्रियोले से हैं, और वो अपनी डॉटर इन लॉ को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हैं। उनका नाम है काजल, और वो कह रही हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी जैसी है और मुझे इतनी प्यारी लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ। सो नाइस, थैंक यू सो मच, और हम भी आपको कहेंगे विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे आपकी ममा की तरफ से। तो चलिए भाई, ये उनके लिए हमारी तरफ से।

0: from Radio Musti.
1: Body Brunch RM2 Radio Musti.

एक बजे सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और उसके बाद 1:05 पे होगी सेकंड रेस, वहां जुड़ेंगे हम एकदम से शानदार मौज की तरफ। तब तक एंजॉय कीजिए अपने गाने।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Kabhi spicy, kabhi sweet. Music lovers ki heartbeat.
5: Tak tak Bollywood.
6: Tak tak Bollywood.
4: Radio Musti.
7: Time check dopahar ke 1 baj rahe hain. सभी को नमस्कार अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से आस्था आपको नमस्कार
8: नमस्कार एक बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का मंत्री परिषद ने शागुस मुद्दे से जुड़ा नया घटनाक्रम सामने रखा है 2 जुलाई 2026 को अटॉर्नी जनरल गेविन ग्लोवर प्रधानमंत्री दफ्तर और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक लगाई ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शागुस को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बदलाव की संभावना नहीं मॉरिशस ने बैठक में कहा कि नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को शागुस समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट रोड मैप पेश करना चाहिए साथ ही ये भी कहा कि यदि प्रगति नहीं होती है तो मॉरिशस सितंबर 2026 तक अपने रुख पर फिर से विचार कर सकता है ब्रिटेन ने 5 अक्टूबर 2026 वाले सप्ताह में एक प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस भेजने का भी प्रस्ताव रखा है ये दल देश की समुद्री क्षमताओं से जुड़ी जरूरतों का आकलन करेगा राज्यसभा ने कल देर शाम डोमेस्टिक अब्यूज बिल को बिना सुधार के साथ पारित कर दिया डीपीएम और लैंगिक समानता मंत्री ओया नावामारी ने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा की पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा देने और दोषियों को उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रतिबद्ध है इस नए कानून के तहत अपने काम के दौरान घरेलू हिंसा का मामला सामने आने पर संबंधित पेशेवरों के लिए इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा साथ ही एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां भी बढ़ाई गई हैं मंत्रालय की ओर से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें सेव लाइव्स यूके के प्रशिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा किसी की पेंशन बंद नहीं होगी ये बात समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुबो ने कल पोटली में आयोजित प्रेस सम्मेलन में कही है उन्होंने कहा कि स्टेट एज पेंशन हर नागरिक का अधिकार है मंत्री ने यह भी साफ किया कि बजट 2026-2027 में प्रस्तावित मींस टेस्ट व्यवस्था को पूरी तरह वापस ले लिया गया है उन्होंने बताया कि अब मॉरिशस के नागरिक 60 वर्ष की उम्र से संशोधित पेंशन ले सकेंगे वहीं जो लोग अपनी स्टेट एज पेंशन 65 साल की उम्र तक लेना लेंगे उन्हें ज्यादा राशि मिलेगी समाज सुरक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड को फाइनेंस बिल में शामिल नहीं करने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर राज्यसभा में लोगों से सरा मशवरा किया जाएगा हालांकि पेंशन की पात्रता

0: आयु को चरणबद्ध तरीके से 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का फैसला पहले की तरह लागू रहेगा। और विदेश की खबरों में, न्यूजीलैंड के ओकलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध दोस्ती, साझा मूल्यों और बेहतर भविष्य की सोच पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय है, जो दोनों देशों के रिश्तों को लगातार मजबूत बनाता रहता है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। इकबाल रोड कॉम्बे में 65 साल के 65 years old के बीबी रहीमुन हुसैनी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज शाम के 4 बजे उनके भाई अलीम हुसैनी के मकान कॉम्बे से निकालकर दफनाने के लिए कपमालुगु का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए, गिर जाए।
3: ਕੀ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਕਰ ਦਮ ਗੁੱਟ।
4: 1:05 में हम जाए पाएंगे शौनी मोमोज की तरफ, जहां पे हो रही है हॉर्स रेसिंग। तो एंजॉय कीजिए छोटा सा गाना, बट उसके साथ भी जुड़े रहिए।

0: हमारी ब्रांच
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: 1:16 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम वाली ब्रंच के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो ये भाई एंजॉय करने का तो टाइम है, बट हम इतना आपको कहेंगे कि अगर आपने खाना खा लिया है थोड़ा सा नैप ले सकते हैं घर में है तो, अगर बाहर ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, डांस कीजिए, जो भी मिले भाई वो करना ज़रूरी है क्योंकि भाई अगले पूरे हफ्ते की तैयारी भी तो करनी है। फैमिली को खुश कीजिए पर सबसे पहले अपने आप को मत भूलिएगा। तो चलिए भाई, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय, पर एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल मैसेज है रुशान जी जो इस टाइम फ्लिकम फ्लाक की तरफ जा रहे हैं। उनके 55 फ्रेंड्स हैं जो कि बस में एक साथ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब दो उनके पास बसेस हैं जहाँ जो भी वैन है उस

0: के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा तो मस्ती, हमें स्पीकर्स लगाने की सिर्फ जरूरत पड़ी है, बाकी हमें कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है और हम इंजॉय कर रहे हैं रेडियो मस्ती को। तो भाई थैंक यू सो मच, आपका हमारे साथ जुड़े रहना हमारे लिए बहुत खास बात है। और उसके साथ में हमारे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं, वो लिसनर हैं, उनका नाम है प्रवीण जी, जो कि इस समय साज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और प्रवीण जी का कहना है कि अस्पताल में रहते हुए भी RM2 रेडियो मस्ती को नहीं छोड़ रहा, मैंने यहाँ पर एक चुपके से लगाया हुआ है अपना रेडियो, आराम से सुन रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, ईयरपीस लगाए हुए हैं, बट मेरे सारे फ्रेंड सर्कल और जो स्टाफ वाले हैं वो कह रहे हैं क्या सुन रहे हो, और मैंने उनको बताया भाई RM2 रेडियो मस्ती को सुन रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं बीमार हूँ पर मैं जल्दी वापस आऊँगा। अरे मैं तो आपको कहूँगी कि आप जल्दी वापस आएँ, अपनी जो भी बीमारी लेकर गए हैं उसको वहीं छोड़ कर आइएगा और बजा दीजिएगा पुंगी, किसकी, यस पुंगी बजाएगा बीमारी की, और फटाफट से आ जाइए, हंसते मुस्कुराते आइए अपने परिवार के बीच, इंजॉय कीजिए। एक गाना जाता है प्रवीण जी आपके नाम।
1: Body Branch RM2 Radio Masti।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

To Bollywood, Radio Musti. एक बजकर 40 मिनट पे आप जुड़ पाएंगे शानिमास की तरफ और यहाँ पर हॉर्सेस लग चुके हैं अपनी लाइन में, बस एक एक करके पहुँच रहे हैं। तो चलिए भाई उधर भी चलते हैं थोड़ी देर के लिए।

0: RM2 Radio Musty.
1: एक बजकर 52 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इन खूबसूरत बॉलीवुड गानों ने आपके सैटरडे को और खास बना दिया होगा। मैं थी आपके साथ पूनम अपनों का

ख्याल रखिएगा, वीकेंड को भरपूर इंजॉय कीजिएगा और यूं ही जुड़े रहिए आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। मेरे बाद आपको साथ मिलेगा हंसनी का, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, इंजॉय कीजिए ये गाना।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Good afternoon, everyone. I check your time. It's already 2 p.m. Sunte hai sangshit samachar. Aastha ke saath aapko namaskar Aastha.
5: नमस्कार मंत्री परिषद ने शागुस मुद्दे से जुड़ा ताज़ा घटनाक्रम उसकी जानकारी दी कल 2 जुलाई 2026 को अटोर्नी जनरल गेविन ग्लोवर प्रधानमंत्री दफ्तर और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन सरकार के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक लगाई ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई 2026 तक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने की उम्मीद है हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शागुस को लेकर ब्रिटेन की नीति में किसी बदलाव की संभावना नहीं मॉरिशस ने बैठक में कहा कि नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को शागस समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट रोड मैप पेश करना चाहिए साथ ही यह भी कहा कि यदि प्रगति नहीं होती तो मॉरिशस सितंबर 2026 तक अपने रुख पर फिर से विचार कर सकता है राष्ट्रसभा ने कल देर शाम डोमेस्टिक अब्यूज बिल को बिना किसी संशोधन के साथ पारित कर दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और लैंगिक समानता मंत्री ओयाना वोमागी ने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा के पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा देने और दोषियों को उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रतिबद्ध है इस नए कानून के तहत अपने काम के दौरान घरेलू हिंसा का मामला सामने आने पर संबंधित पेशेवरों के लिए इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा किसी का भी पेंशन बंद नहीं किया जाएगा ये बात समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सिब्बो ने कल पोटली में आयोजित प्रेस सम्मेलन के बाद कही उन्होंने कहा कि स्टेट एड पेंशन हर नागरिक का अधिकार है मंत्री ने साफ किया कि बजट 2026-2027 में प्रस्तावित मींस टेस्ट व्यवस्था को पूरी तरह वापस ले लिया गया है उन्होंने बताया कि अब मॉरिशस के नागरिक 60 वर्ष की उम्र से संशोधित पेंशन ले सकेंगे वहीं जो लोग अपनी स्टेट एड पेंशन 65 साल की उम्र तक लेना टालेंगे उन्हें ज्यादा राशि मिलेगी समाज सुरक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने नेशनल पेंशन और प्रोविडेंट फंड को फाइनेंस बिल में शामिल नहीं करने का फैसला किया है आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है विषय है आज और भविष्य के लिए युवाओं की उम्मीदों और सपनों को साकार करना इस ये विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक नई रिपोर्ट पर आधारित है रिपोर्ट के लिए 73 देशों में 18 से 39 वर्ष की उम्र के 1 लाख से अधिक लोगों से ऑनलाइन सर्वे किया गया रिपोर्ट में युवाओं के

0: संबंधों, परिवार, बच्चों और भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों के साथ उन चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया है जिन्हें वे अपने सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Testing. Testing.
3: Testing. Testing. Testing.
2: One, two.
3: Yeah. कभी सोचा है
4: NBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
4: NBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन NBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
3: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
4: NBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। NBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस।
4: डोंट मिस इट।
5: Plug and play.
6: RM2.
5: Plug and play.

0: Tag and play.
1: RM2.
2: तो यहाँ पर शुरुआत एकदम रोमांटिक अंदाज से आज हुई है. दैट वाज कहो ना प्यार है. तो अगर बाय चांस किसी ने कहा है कि हाँ प्यार है, सो लेट अस नो. यहाँ पर जो कनेक्शन है उनको बस आगे बढ़ाएंगे, उनको और भी स्पेशल बनाना तो है ही आज इस सैटरडे के लिए, टू सेलिब्रेट योर 11th of July. हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून. सभी का वेलकम है इन आज का प्लग एंड प्ले. ये जो म्यूजिकल जर्नी होने वाला है दैट विल बी ग्रेट. कुछ और मजेदार गाने हम लेकर आएंगे ऑफ कोर्स टू एंटरटेन यू. एंटरटेनमेंट ही यहाँ पर होता है ना. एंड टू जॉइन यू ऑल यहाँ पर आज हम सुनी इज हियर विशिंग यू ऑल अ ग्रेट ग्रेट टाइम. और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक से बस जा रहा है सुबह से. और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी ठीक बनाएंगे. अभी जो मूड है आपका ठीक रहेगा विद स्पेशल डोज ऑफ म्यूजिक जो यहाँ पर हम चलाएंगे, लेकर आएंगे. आई रियली होप यू विल अप्रिशिएट. और आज तो घूमना भी होगा. लेट अस

0: get ready for the next race. यहाँ पे घोड़े भी बिल्कुल तैयार हो रही हैं. यहाँ पे रेस सफर जो होने वाला है. So to get the latest updates, किसकी जीत होने वाली है, तो यहाँ पर ये सब जो डिटेल्स है रेडियो मस्ती आपको बिल्कुल शेयर करेंगे थोड़ी देर के बाद. विल बी हेडिंग टुवर्ड्स शादमा स्पोर्ट रेस. तो यहाँ पर प्लग एंड प्ले का ये शो है जहाँ पर कुछ बातें हम करेंगे. बातें तो हम करते रहते हैं नॉन स्टॉप, लेकिन यहाँ पे चांस हम आपको देंगे कुछ आपकी बातें सुनने के लिए. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, कोई है खास जन्मदिन है, कोई खास ओकेजन है, या फिर यूं ही दिल कुछ कहना चाहता है. ऐसा होता है ना कि दिल कभी कहना चाहता है लेकिन कैसे कहे. तो यहाँ पर बोलने की बारी आपकी ऑन 549-1294 फॉर योर मैसेजेस. अभी इशारा है एक कमर्शियल ब्रेक की, इसके बाद विल बी हेडिंग टुवर्ड्स शॉन डेमोस पोर्ट रेस.
1: RM2 Radio Musti.

0: Plug and Play.
1: RM2.
2: प्लग एंड प्ले में आप सभी का वेलकम है. यहाँ पर दोस्ती जो आप निभाते जाते हो इसके लिए दिल से थैंक यू तो कहना चाहेंगे. और हाँ, ये तो हम मानते हैं, दोस्त वो होता है जो बिना कहे आपके दिल की बात समझ जाए और हर मुश्किलों में आपके साथ खड़ा रहे, राइट. और वैसे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग तो मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ

दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल में बस जाते हैं. तो अगर आसपास है आपका दोस्त और उन्हीं के लिए है एक स्पेशल मैसेज, दोस्ती के मैसेजेस, प्यार के मैसेजेस, या फिर आपके हैप्पी ओकेजन्स को स्पेशल बनाने के लिए ढूंढ रही हो वो स्पेशल तरीका कि कैसे हम मैसेज को पहुंचा सके और रेडियो रेडियो मिस्ट्री इज हियर. टेंशन की क्या बात, यहाँ पर टेंशन को हम दूर कर लेते हैं, यहाँ पर चिंता को हम चिता दे देते हैं. ऐसा यहाँ पर पावर है रेडियो मिस्ट्री का. सो वी आर हियर आपके साथ टू एंटरटेन यू. यहाँ पर हंसनी है एंड ये जो सफ़र है बहुत ही खास है हमारे लिए. म्यूजिक को हम सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं और जो भी है स्ट्रेस, जो भी है तकलीफ, आंसू, दर्द, उन सभी को हम पीछे छोड़ते हैं. वी कीप मूविंग फॉरवर्ड ताकि जो प्यार है ना वो फिर से हम पर मुस्कुरा जाए. और इट्स नियरली टी टाइम. हमारे फ्रेंड्स जो घर पर है मे बी साफ सफाई हो गई है और थोड़े से थक गए हैं. कोई बात नहीं, अभी आराम से बैठ जाइए. टेक एन ऑफ, टेक डीप ब्रेथ और कह लीजिए अभी टाइम टू टेक सम रेस्ट. अभी चाय को आप बनाएंगे, मे बी कुछ खाएंगे उनके साथ, रिलैक्स करें, फैमिली टाइम को एंजॉय करें एंड बी विद अस ऑन रेडियो मस्ती टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ म्यूजिक फॉर आज का प्लग एंड प्ले.

0: मस्ती,
1: फील द मस्ती, मस्ती
0: तेरी याद ही हर रोज मेरे दिल का दरवाजा खटखटाता जाता है, तो दूर होकर भी हर पल मेरे पास नजर आती है। तुम्हारी कमी आज भी उतनी ही महसूस होती है जितनी उस दिन हुई थी जब तुम दूर गए थे। हर रात तेरी जो यादें हैं वो तो बिल्कुल यहाँ पर गुजर जाती है, एंड दिल में दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम दोहराती है। काश तुम समझ पाते कि कितना याद करते हैं तुम्हें, हर मुस्कान के पीछे बस तुम्हारी ही कमी छुपी रहती है।

जब अल्फाज साथ छोड़ दें तब संगीत दिल की सुबह बन जाता है. ये आपके लिए है जस्ट टू एंजॉय दिस फैंटास्टिक गाना. और ये हम डेडिकेट करेंगे फॉर महेंद्र संपत के लिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है विद रेडियो एमएसटी. हेलो जी, आपका वेलकम. साथ में है टू प्रिंस युवराज एंड युवंश. वैसे युवराज तो काफ़ी बिजी है, सो कैच हिम वेरी सून. लेकिन ये जो प्यारा सा गाना है डेडिकेटेड आपके लिए, फॉर यू टू हैव अ सुपर टाइम एंड एंजॉय दिस आफ्टरनून विद रेडियो एमएसटी.

एंड वी हैव वेट फॉर ऑल द फैंस रितिक रोशन जी यहाँ पर कनेक्टेड है इन प्लग एंड प्ले. तो चलिए इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद पोर्ट लुइस शॉन डी मार्स जहाँ पे लगने वाला है द रेस फाइव.

0: as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories, including spare parts. All details and conditions are available on NBC's website, nbc.mu, and on NBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through NBC's website or the Procurement Policy Office's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
1: Kabhi spicy, kabhi sweet. Music lovers ki heartbeat.
2: Tak tak Bollywood.
3: Tak tak Bollywood.
1: Radio Musti.
4: RM2 Radio Musti.
5: The time is brought to you by
6: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
5: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: Radio Musti.
7: North, South,
4: 103.5.
7: East, West,
4: 96.4.
7: Center,
4: 99.4.
8: RM2 Radio Musti.
4: Radio Musti.
8: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
9: Wishing you all a very good afternoon. When you check your time, it's already 3 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार यहाँ पर आस्था के साथ. आपको नमस्कार आस्था.
10: नमस्कार. सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. प्लेटफॉर्म कुम सेंटिकल की पहल पर इस समय राजधानी की सड़कों पर एक शांतिपूर्ण रैली निकाली जा रही है. ये रैली बेसिक रिटायरमेंट पेंशन में प्रस्तावित सुधार के विरोध में आयोजित की गई है. रैली आज दोपहर करीब 1 बजे मैरीगन दे ला पे से शुरू हुई और कंपनी गार्डन में जाकर समाप्त होगी. हर उम्र के लोग श्रमिक संघों के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं. वे वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं. साथ ही उनका कहना है कि किसी भी सुधार को लागू करने से पहले लोगों से व्यापक स्तर पर सलाह मशवरा किया जाना चाहिए. कैबिनेट ने अक्टूबर में होने वाली प्राइमरी स्कूल अचीवमेंट सर्टिफिकेट पीसा परीक्षा के टाइम टेबल की भी जानकारी दी. परीक्षाएं 22 अक्टूबर से शुरू होंगी. पहले दिन फ्रेंच और साइंस की परीक्षा होगी. 23 अक्टूबर को इंग्लिश का पेपर होगा. इसके बाद छात्र 26 और 27 अक्टूबर को भी परीक्षा देंगी. आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है. इस वर्ष का विषय है आज के भविष्य के लिए युवाओं की उम्मीदों और सपनों को साकार करना. यह विषय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक नई रिपोर्ट पर आधारित है. इस रिपोर्ट के लिए 73 देशों में 18 से 39 वर्ष की उम्र के 1,00,000 से अधिक लोगों से ऑनलाइन सर्वे किया गया. रिपोर्ट में युवाओं के संबंधों, परिवार, बच्चों, भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों के साथ साथ उन चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया जिन्हें वे अपने सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में न्यूजीलैंड के ओकलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते दोस्ती, साझा मूल्यों और बेहतर भविष्य की सोच पर आधारित है. श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय है जो दोनों देशों के संबंधों को लगातार मजबूत बना रहा है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए.
4: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: यहाँ पर शुरुआत हो गई है द सेकंड आवर ऑफ द म्यूजिकल जर्नी. यहाँ पर इट्स अ प्लग एंड प्ले ब्रिंगिंग सम ग्रेट ट्रैक्स. कुछ ऐसे गाने जो आपको पसंद आए एंड इसी उम्मीद के साथ हम ये शो को बस सजा रहे हैं कि बस आप खुश रहें हमेशा. जो है भूली बिसरी बातें वो बस भूलकर आप आगे बढ़े. एंड वी आर हियर टू मेक इट मोर म्यूजिकल फॉर दिस सैटरडे आफ्टरनून. लेट अस ऑल एंजॉय आज का प्लग एंड प्ले विद आवर जो हम सुनिए टिल 4 PM.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: Well, तारीफ के लिए आप सभी को थैंक यू तो कहना चाहेंगे. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. आपके ढेर सारे मैसेजेस के लिए आपको दिल से थैंक यू तो कहना चाहेंगे. और यहाँ पर जान कौन है, प्यार से प्यारे कौन है, ये सब मैसेजेस में आ गए हैं. लेट अस हैव सम डेडिकेशंस नाउ. हेलो रवि जी, कैसे हो? रवि आरवी जी का वार्म वेलकम. वेली होप कि सब ठीक है. एक जबरदस्त गाना ये तो चल जाएगा आपके लिए. To wish you a nice Saturday ahead. Thank you for joining in. We have Veena Jagisaw from Bellevue Morel. आपके लिए गाना चल जाएगा. For your परिवार के लिए, आपके friends के लिए, भाई बहनों के लिए, and for our Radio Masti team. How sweet of you, Veena ji. Thank you. Hi Hansini, how you doing? Well, getting better. Thank you. बाप रे, such a hectic day. बहुत काम अभी भी जारी है. So एक मस्त गाना ये तो बनता है आपकी थकान को दूर करने के लिए, राइट? और आपके जो हौसला है उनको बढ़ाने के लिए. थैंक यू फॉर सेंडिंग योर लव. यहाँ पर एक स्पेशल ट्रैक उन सभी लोगों के लिए जो बस अभी कुछ आराम करना चाहते हैं. सुबह से इतना चहल पहल, इतना सारा काम हुआ है. चाहे काम पर आप गए थे या फिर घर पर ही, इतना सारा काम होता है ना घर पर ही, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है. ओह माई गॉड. लेकिन अभी इट्स टाइम टू हैव सम रेस्ट.

0: afternoon time, चाय को enjoy करें, make it fun, family के साथ आप बैठे या फिर अकेले बैठना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये भी चलता है क्योंकि यहाँ पर आपको कंपनी देने के लिए आपके साथ और जो हंसनी है ना, I'll be here till 4 p.m. just for you to enjoy the best of songs in आज का plug and play.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

और यहाँ पर गाना तो चल पड़ा है फॉर एवरीवन लिसनिंग, स्पेशली फॉर ऋषभ जी के लिए. हाय, विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर योर लविंग मैसेज. यहाँ पर जानकर खुशी हुई कि आप हमारे गानों को इतना पसंद कर रहे हो. तो एक तो बनता है ना खास आपके लिए एंड फॉर ऑल योर टीम जो आपके साथ है, एज ऑलवेज वर्किंग वेरी हार्ड. बो कुराज आपको एंड स्टे वेल कनेक्टेड.

well tuned on the Radio Masti and stay well connected for Plug and Play. यहाँ पर हम सनी है जो आपके साथ है और इशारा है कि कुछ ही पल में ना हम बढ़ेंगे पोर्टविस शादमास हम जाएंगे जहाँ पे लगने वाला है द नेक्स्ट रेस.

0: tag and play.
1: RM2.
2: वाली कुछ गाने ऐसे होते हैं कि सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें दिल से जिया जाता है. That was a great one. और काफी क्रेज था on TikTok जब ये गाना बस सुनने को आया था, and कई लोग उस पर try कर रहे थे, and that was fun. तो ऐसे में trend के साथ हम बस आगे बढ़ते रहते हैं, और यहाँ Radio Masti always here to keep you in the trend, to make you happy और आपको special feel करवाने के लिए. तो यहाँ पर है ये म्यूजिकल संगम अब टिल 4 PM विद आर्जे हंसनी. एंड जो गाने हैं, कैसे हैं हमारे गाने, अगर है कुछ शेयर करने के लिए, सो आई एम वेटिंग. आप ही का इंतज़ार होता रहता है ऑन 5491294. यहाँ पर कुछ आपके मैसेजेस हो जाएंगे. हाय हंसनी, विश यू अ ग्रेट आफ्टरनून. थैंक यू सो मच. सेम टू यू. आप हो विक्रम और आपका साथ है फ्रॉम पोर्ट लुइस. स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड. और थोड़ी देर के बाद हम घर वापस जाएंगे, लेकिन थैंक्स टू रेडियो मस्ती जो हमारा हम सफर बन जाता है. ये तो है, दैट्स ट्रू. और ये जो खास गाना है हम चलाएंगे आपके लिए, रोमांटिक सा गाना आने वाला है, एंड दैट विल बी अ लेटेस्ट वन, धुरंधर का गाना. ओके, क्लू हमने आपको बता दिया है, दैट विल बी रोमांटिक प्लस धुरंधर, इक्वल्स टू गहरा हुआ. यही चलने वाला है नेक्स्ट. तुमसे प्यार करना मेरी आदत नहीं, मेरी जिंदगी है. तुमसे प्यार करना मेरी आदत नहीं, मेरी जिंदगी है. हर दिन तुम्हें पहले से भी ज्यादा चाहने लगा हूँ. तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया को रोशन कर देती है. बस

0: करना मेरी आदत नहीं मेरी जिंदगी है हर दिन तुम्हें पहले से भी ज्यादा चाहने लगा हूं तुम्हारे मुस्कान मेरी दुनिया को रोशन कर देती है बस के साथ बैठे हुए हो टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ म्यूजिक तो मामा का भी वेलकम है हेलो टू मीला जी रेली हो कि सब ठीक है तो रामदिकल परिवार के लिए चल पड़ा है नेक्स्ट सॉन्ग आप भी परिवारों को याद करें ये जो म्यूजिकल संगम है इट्स लाइक टू एंजॉय आवर फैमिली टाइम टू एंजॉय योर मी टाइम कभी ऐसा होता है कि हम अकेले रहना चाहते हैं वी वॉन्ट टू बी विद आवर सेल्फ ऐसा होता है आपके साथ कई बार मेरे साथ ऐसा होता है सो अभी जो ड्राइव टाइम है आपका सफर करते हुए अगर साथ जारी है सो लेट अस एंजॉय योर ड्राइव साथ साथ इन आज का प्लग एंड प्ले
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: All right, my lovely people, time for me to wave goodbye. Thank you so much इतना सारा प्यार देने के लिए इन आज का प्लग इन प्ले. अभी 4 बजे हम बढ़ेंगे समाचारों की ओर विद टीना. इसके बाद हम शो को आगे बढ़ाएंगे. यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए इट्स दिव्या. या शेष है. हाय दिव्या, वेलकम. विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. भागती भागती आ गई.
1: हेलो हंसु, गुड आफ्टरनून. आपको भी कैसे हो?
0: क्या बात है, बंठन की आई है.
1: बंठन चली देखो.
0: इशारा मिल गया है, पहला गाना यही चलने वाला है.
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, विल ट्राई टू फिट इट इन द प्लेलिस्ट.
0: ऑलराइट, सो ऑल योर्स दिव्या, डू हैव फन फॉर योर बॉलीवुड टक टक टक.

0: शाम के 4:04 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। टीना से नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्लेटफॉर्म कुमा सांझीकाल के आह्वान पर इस समय राजधानी की सड़कों पर एक शांतिपूर्ण रैली निकाली जा रही है। ये रैली बेसिक रिटायरमेंट पेंशन में प्रस्तावित सुधार के विरोध में आयोजित की गई है। रैली आज दोपहर करीब 1 बजे सेंटर मारी दे ला पी से शुरू हुई और कंपनी गार्डन यानी जार्डन दे ला कंपनी में जाकर समाप्त होगी। और उम्र के लोग श्रमिक संघों के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं। वे वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था को बनाए रखने की मांग कर रही है और साथ ही उनका कहना है कि किसी भी सुधार को लागू करने से पहले लोगों से व्यापक स्तर पर सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। किसी की भी पेंशन बंद नहीं होगी। ये बात सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कल पोर्टवी में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि स्टेट एज पेंशन हर नागरिक का अधिकार है। मंत्री ने यह भी साफ किया कि बजट 2026-2027 में प्रस्तावित मींस टेस्ट व्यवस्था को पूरी तरह वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब मॉरिशस में नागरिक 60 वर्ष की उम्र से संशोधित पेंशन ले सकेंगे। विदेश में ब्रिटेन में तीसरी भीषण गर्मी के कारण कर्मचारी घर की उमस से बचने के लिए एयर कंडीशन दफ्तरों में लौट रही है, जिससे दफ्तरों में उपस्थिति कोविड के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ब्रिटेन के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब पहले सेमीफाइनल का मुकाबला तय हो गया है। मंगलवार रात फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। कल रात क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने कड़ी टक्कर के बाद बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया और मिकेल मेरिनो ने निर्णायक गोल करके ला रोजा को प्रतियोगिता के अंतिम 4 में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल दौर धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। फ्रांस और स्पेन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए 2 और टिकटों का फैसला शनिवार और रविवार की रात होगा। इस दौरान 2 बहुत ही रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा, जबकि अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड भी आमने सामने होंगे। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Music, Dr. Gatta.
4: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: यस एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात ऑन द वेव्स ऑफ RM2 एंड कैसे हैं आप लोग। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फ्राइडे मूड के बाद अभी सैटरडे मूड को एकदम से फील करने के लिए आ चुके हैं कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ। एंड शायद आप लोग अभी रिलैक्स कर रहे होंगे और मे बी आप लोग निकल चुके हैं कहीं पर घूमने जाने के लिए। एंड चलिए, आते ही इतने सारे मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं। अंतिश, हेलो जी, हाउ आर यू? यस हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आपने ज़रूर एक गाना मांगा है और ये गाना हम थोड़ी देर बाद किसी खास के लिए डेडिकेट करेंगे जरूर, और उनके लिए खास तौर से आपने एक मैसेज भेजा हमें, वी आर रियली टच्ड। तो चलिए अंतिश, द नेक्स्ट सॉन्ग इज आउट स्पेशली फॉर यू, एंड जिनके नाम आपने डेडिकेशन भेजा है उनके लिए हम थोड़ी देर में ये मैसेज जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसे ऐसे गाने चलाएंगे जिनको सुनने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि आज सच में सैटरडे है। तो चलिए इस सैटरडे आफ्टरनून को एकदम मजेदार और धमाकेदार बनाते हैं कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ।
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: चार बजकर 19 मिनट हो चुके हैं। सोच ही रही थी कि ऐसे खाली हाथ आना अच्छी बात नहीं होती है, तो तब मुझे याद आया कि नहीं, आपके साथ एक गेम हम ज़रूर खेलेंगे। और गेम कुछ ऐसा है जिनको अगर आपने

0: जीत लिया, तो इस जीत को आप सेलिब्रेट करने के लिए सीधा कॉन्सर्ट, म्यूजिकल कॉन्सर्ट को असिस्ट करेंगे. यस यस, आपने सही सुना. एक्चुअली हम खेल रहे हैं विद अभिजीत कॉन्सर्ट. अगर आपकी जीत होती है तो आपको मौका मिलता है टू विन वन एंट्री टिकट वर्थ 850 रुपीज, और ये टिकट आपको खुद आकर MBC कलेक्ट करना होगा. और लेट मी टेल यू कि ओनली इफ यू कैन कलेक्ट योर टिकट बाय 3 PM तभी आपको ये गेम खेलना है. तो चलिए अभी के लिए वी हैव समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू, एंड ये टिकट तो एक्स्ट्रा स्पेशल है ही, बट वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. आपको हमें बताना है कि एक मूवी है, यस अंजाम मूवी के बारे में हम बात कर रही है, एक मूवी है जिसका टाइटल है अंजाम. आपको हमें बताना है कि इस मूवी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जहां पर अभिजीत दा ने अपनी आवाज़ दी. यू हैव टू टेल मी वो कौन सा गाना है. एक मूवी है अंजाम मूवी, इसके उसके अंदर अभिजीत दा ने एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाया है, अपनी आवाज़ दिया है उसमें. यू हैव टू टेल मी कि वो कौन सा गाना है. वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294. ऑल द वेरी बेस्ट.
1: म्यूजिक टक टक आता है. RM2 रेडियो मस्ती.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: हाय व्हाट अ ब्यूटीफुल गाना, तेरे बिना दिल लगता नहीं, क्या करूं। बस आप ये करिए, आप बस मोबाइल उठाइए और उस शख्स को फ़ोन कीजिए जिनको आप याद कर रहे हैं, और अगर आप हमें याद कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी लाइक एंड वी विल बी ग्लैड टू रिसीव योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। चलिए कुछ ही देर पहले हमने आपके साथ एक सवाल किया था। सवाल ये था कि अंजाम मूवी के अंदर अभिजीत दा को मौका मिला था एक खूबसूरत गाना गाने के लिए, एंड आपको बताना था कि वो कौन सा गाना है। द राइट आंसर इज़ मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। चलिए आपके दिल को

0: और जोर से धड़काने के लिए हम लेकर आए हैं अपना लकी विनर. एंड यहाँ पर काफी लोगों ने सही जवाब दिए, बट लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है शारदा कल्पनत ऑफ मोदाई ब्लॉश. कंग्रेचुलेशंस टू यू शारदा जी, आपको मिल रहा है अ चांस to get the ticket to the Golden 90s Era 2 featuring Abhijit Bhattacharya live in concert on Saturday 25th July 2026 as from 7:30 PM at SVICC Pyre. जी हाँ, ये concert को आपको मौका मिल रहा है assist करने के लिए 25 जुलाई को, वो भी at SVICC Pyre as from 7:30 PM. Step in a world of nostalgia and relive the unforgettable voice that defined Bollywood's golden era. और आप बिल्कुल इस टाइमलेस मेलेडीज इवनिंग को एंजॉय कीजिएगा, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर म्यूजिकल मैजिक. टिकट स्टार्ट एज फ्रॉम 850 रुपीज एंड और अवेलेबल एट moticket.mu एंड रिजो उतायो. डोंट मिस दिस अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस. और रिजर्वेशन के लिए आप हॉटलाइन को भी फोन कर सकते हैं ऑन 4669999. सो वंस अगेन शारदा कल्पनत ऑफ मोताई ब्लॉश, आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड आपको हम बता देते हैं दैट वीकडेज के दौरान आपको एमबीसी आना पड़ेगा अपने गिफ्ट को कलेक्ट करने के लिए, एंड यू हैव टू ब्रिंग योर आईडी कार्ड अलोंग. और 3 बजे से पहले आपको यहां पर आ ही जाना चाहिए, यानी कि वीकडेज में 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे के बीच आपके पास टाइम है, तो आप जरूर आइएगा और कम एंड कलेक्ट योर गिफ्ट वाउचर.
1: Music, Dr. Gutter. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: All right, it's already 4:48. अभी आप सुन रहे थे रेसेस. चलिए भी खेलिए दिव्या का साथ है न्यू म्यूजिक टकटकाटक टिल 7 PM. और ये गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे अंतिश के लिए ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड. यस, शुरुआत में आपका मैसेज हमें मिला था और हमने कहा था कि बहुत ही प्यार से ये डेडिकेशन आपके स्पेशल वन तक ज़रूर हम पहुंचाएंगे. और वो स्पेशल वन है अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन जिनको सब प्यार करते हैं हमारी रेडियो मस्ती टीम में, एंड वो है यलेश श्याम फ्रॉम सुरीनाम. थैंक यू सो मच यलेश इतने प्यार से साथ देने के लिए. अंतिश स्विट्जरलैंड से आपके लिए बहुत ही प्यार से ये डेडिकेशन इन्होंने मांगा है. एंड ही सेंडिंग लोड्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू एंड अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हग एंड वॉर्म. चलिए उम्मीद करते हैं कि बस इस गाने को सुनने के बाद यलेश आप ज़रूर मुस्कुरा रहे होंगे. कीप स्माइलिंग, ये मैंने नहीं बल्कि अंतिश ने कहा.

भाई इस गाने को सुनने के बाद आई एम वेरी श्योर कि मन में इमोशन जागे रे, और जब मन में इमोशंस जागते हैं ऐसे में आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। हर बार हम एक्सप्रेसिंग पर फोकस करते हैं क्योंकि सब लोग सप्रेसिंग पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं अगर उसको प्यार है तो उसको समझ जाना चाहिए। हाँ मुझे पता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्यार में बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि आप खुद को एक्सप्रेस करें, क्योंकि जब तक आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो आपका नेचर, आपका बिहेवियर उस इंसान को कभी पता नहीं चलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा प्यार में खुले। एंड ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज नॉट अ शेम, बट इट जस्ट डिफाइंस यू द वे यू आर। चलिए अभी के लिए वी आर ऑल सेट, क्योंकि इस गाने के बाद कदम रखने वाले हैं द सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक टक टकाटक। स्टे वाई कनेक्टेड, दिव्या और आपका साथ है टिल 7 PM।

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वाह क्या बात है, मैं दो धारी तलवार नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ बल्कि गाने में बोला गया है, मैं तो बस ऐसे ही रिपीट कर रही थी। चलिए, इट्स गुड टू नो कि आप भी हमारे साथ गाते गुनगुना रहे हैं और लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल चुके हैं, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल क्योंकि सैटरडे आफ्टरनून को और सैटरडे इवनिंग को काफ़ी गाड़ियाँ निकल पड़ती हैं रास्ते पर फ्राइडे इवनिंग की तरह, एंड संडे इवनिंग बहुत ही खास होता है। मतलब सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ स्लो डाउन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ जल्दी जल्दी निकल जाता है। मतलब यू स्टार्ट एंजॉयिंग द संडे कि बस देखते ही देखते पलक झपकते शाम भी हो जाती है। तो चलिए, जितना हो सके ट्राई टू रिवाइव सम ब्यूटीफुल एंड गोल्डन मेमोरीज, और जितना हो सके कुछ और खूबसूरत यादों को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आज है सैटरडे और आपको एक बहाना भी मिल रहा है और बहाने के साथ साथ यहाँ पर गाने भी मिल रहे हैं। वेल, शाम के 5:11 एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात वंस अगेन ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, दिव्या का साथ टिल 7 PM। एंड चलिए, ऐसे ही हमें याद करते रहिएगा एंड आपके मैसेजेस ज़रूर ज़रूर हम तक पहुँच रहे हैं, तो कुछ और आपके मैसेजेस हम तक पहुँचाए ऑन 5499-1294।
0: Music, Tak Tak Tak.
1: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बिल्कुल, आप लोग जब भी एंट्री मारते हैं ना तो शो में चार चांद लग ही जाता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आपके कुछ मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो हेलो ललिता जीतन जी, आप इस वक्त गाड़ी को धो रही हैं एंड लिसनिंग टू द शो, तो चलिए प्लीज़ बी माइंडफुल कि जल ही जीवन है और पानी को बिल्कुल आप सही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। एंड द नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर कुमारी, गीता, ज्ञानती, वीना सरोज, दो भाई हैं संजय विजय, ललिता जीतन एंड आपके पूरे परिवार के लिए और लावांचुया, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम यहाँ पर डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एंड आप लोग सोच ही रहे होंगे कि बस सैटरडे को क्या बनाना है किचन में, और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी सवाल तो यही होता है कि सुबह उठते ही सब लोगों के दिमाग में यही चलता है कि आज क्या बनाना है किचन में। तो चलिए, अगर आपका आपने खाना बना दिया है सो वेरी गुड, लेकिन अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि क्या बनाना है तो आई जस्ट होप कि आपको आइडिया मिल जाए, और अगर ना मिले तो बस हमारे गीत सुनते रहिए एंड आई एम वेरी श्योर कि ट्यूबलाइट तो जल ही जाएगी। एंड चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 7 PM, इट्स योर म्यूजिक टक टका टक।
0: म्यूजिक टक टका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Fashion tips powered by Halkuri Fashion, house of ready-made garments. Music tak-takata.
1: RM2 Radio Masti.
2: वेल, आज भी हर सैटरडे की तरह एक टिप्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. और आज का फैशन टिप्स यही है कि जब भी हम शादियों में जाते हैं, स्पेशली जब कपल साथ में जाते हैं, तो आपका मन होता है कि आप ट्विन करें. और एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप सेम टू सेम कलर डालते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका पति कोई शेरवानी डाल रहा है या फिर कोई कुर्ता डाल रहा है, तो यू वांट टू मैच विद द सेम आउटफिट. लेकिन आपको पूरा सर से लेकर पांव तक सेम कलर का नहीं दिखना है. एंड आप कलर कंट्रास्ट भी डाल सकते हैं, विच कैन कॉम्प्लीमेंट द अदर कलर. तो कलर व्हील के हिसाब से ही आप कलर के साथ प्ले कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट, कभी आप पार्टियों में जाते हैं तब भी आपको ट्विनिंग करने का मन होता है. तो कभी भी अगर आप सूट पहन रहे हैं तो अपनी वाइफ के साथ ट्विनिंग करने के लिए बस सेम कलर का टाई आप पहन सकते हैं, रादर दैन फाइंडिंग अ कलर. पूरे का पूरा का पूरा सूट ही कलरफुल नहीं होना चाहिए. तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा. और कभी आप ट्विनिंग

0: नहीं करना पसंद करते हैं तो इस को आप कंट्रास्ट बनाइए एंड ये और भी लुक मज़ेदार बनता है. एंड जब भी कोई कपल एक दूसरे के आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इट जस्ट रॉक द लुक. तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें एंड आई एम वेरी श्योर कि आप भी इसको अब दिमाग में रखेंगे कि पूरा सेम टू सेम कलर का नहीं दिखना है, बस कलर कंट्रास्ट या फिर एक चीज़ जो आपका मेन है आपके आउटफिट में वो कलर उस आउटफिट के साथ मैच होना चाहिए.
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स. म्यूजिक टक टकाटक
2: आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: शाम के 6 बजे है। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। कुछ बदलावों के बाद भले ही 7 साल की उम्र पर यूनिवर्सल पेंशन फिर से शुरू होने की घोषणा की गई है, इसके बावजूद श्रमिक संघों ने अपना आंदोलन जारी रखा। इस सिलसिले में आज पौड़ी में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मिशनों ने भाग लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। मॉरिशस में डेमोग्राफी यानी आबादी के स्तर पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। मॉरिशन लोग ज़्यादा लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, लेकिन बर्थ रेट घट रहा है। इस बदलाव का असर श्रम मंदी, पब्लिक फाइनेंस और आर्थिक विकास पर पहले से पड़ रहा है, और विशेषज्ञों का मानना है कि सभी विकास नीतियों के लिए आबादी से जुड़े रुझानों को ध्यान में रखना आवश्यक है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार यौन दुराचार के हर 3 पीड़ितों में से लगभग 2 की उम्र 16 साल से कम की है। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होते हैं, और इसलिए सभी का सतर्क रहना आवश्यक है। विदेश में जोरदार चक्रवाती तूफान बावी की कल तड़के सुबह दक्षिण पूर्वी चीन पर प्रहार करने का अनुमान है। वहां ऑरेंज अलर्ट और दूसरे दर्जे की चेतावनी जारी की गई है, और 9 लाख से ज्यादा लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और अब समाचार विस्तार से। कुछ बदलावों के बाद भले ही 7 साल की उम्र पर यूनिवर्सल पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है, इसके बावजूद श्रमिक संघों ने अपना आंदोलन जारी रखा। इस सिलसिले में आज मारीगन दे ला पे सामाजिक केंद्र से कंपनी गार्डन यानी जार्डन दे ला कंपनी तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुरशनों ने भाग लिया। लोगों ने अपनी चिंताएं जाहिर की और उन सुधारों का विरोध दोहराया जिन्हें वे मौजूदा सामाजिक सुविधाओं के लिए नुकसानदेह मानते हैं। जरा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: आवाजें ऊंची हुई, राजधानी की सड़कों पर नारे गूंजे, हाथों में पोस्टर और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग, किसी भी रूप में पेंशन सुधार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई श्रमिक संघों द्वारा इस शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया गया।
2: Le démantèlement de pension de la vieillesse définitivement amène une mobilisation en général dans le pays.
3: Toujours une amende floue, une amende question qui peut poser. Beaucoup de monde a un petit peu confusion entre pension et PPF. Il demande que la pension reste universelle, que l'État, pas tous l'État-providence, et que tout le monde bien qui nous finit acquis n'est pas rassé depuis nous l'armée.
1: रैली में बड़ी संख्या में बुजुर्ग शामिल हुए अपना समर्थन देने के लिए।
4: Mon sentiment obligé venu aujourd'hui. Je peux pas reconnaître valeur le peuple mauricien. Et Nadimoun actuellement, pas précis joindre les deux bouts. Nous le peuple mauricien, nous pas mérite ça.
5: Gouvernement a annoncé que justement je retourne pension à 60 ans et que je peux faire un réajustement. Qui est au sentiment de
6: Mon passion. Pas si, ni dire, mais pour les motos, les noirs, les blancs.
7: Sa politique pension, la partie de ça d'habitude, si vous avez fait ça, elle le débat national élargi, les là, dis-moi, tu vous comprends, et vous pensez que le gouvernement, vous allez revoir tout ce système, vous mettez sa pension là, dans le débat consensuel pour la population.
1: वहीं कई ऐसे लोग सवालों के साथ आए जो बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं।
8: Moi, pour gagner 56 ans, là, Mon fini mettement doute, moi pas connais qui peut réserve moi. Qu'il a venu pour une an, nous peut cause Zenes, nous peut cause l'autre, oui. Et n'a pas de parents là, je tout peux travailler et faire sacrifice pour nos enfants. Mais c'est pas le moment quand il y a 60 ans, il est là qui va le rassembler. Vous êtes retourné pour un show normal.
1: Ye virodh matre ek din ka nahi balki bhavishy ka bhi hai. Pradarshan mein shamil kai yuvaon ka manna hai कि ये सुधार आने वाली पीढ़ी

0: नौकरियों को भी प्रभावित करेगी।
1: Je suis ici pour combattre pour notre propre droit et ainsi pour les droits des vieilles personnes aussi.
2: God, le système de pension comment il était, même à plus loin des moins de 55 ans et au marais qu'on t'aurait un tâche comme ça.
0: ये नागरिक अपनी असहमति जताने और अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरे। उनका संदेश साफ है, एक सामाजिक अधिकार की रक्षा करना, उन फैसलों के प्रति अपनी चिंताओं को सामने लाना जो उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। जब बैनर समेट दिए जाएंगे, नारे शांत हो जाएंगे, तब भी एक तस्वीर बनी रहेगी, एक साथ खड़े उन मॉरिशनों की तस्वीर जिन्होंने ये याद दिलाया कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं बल्कि नागरिकों की आवाज से भी बुलंद होता है।
3: समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभोन ने कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान नई पेंशन प्रणाली पर स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने खास तौर पर दोहराया कि मिशनों के पास 60 साल की उम्र से पेंशन लेने का विकल्प बना रहेगा, हालांकि मिलने वाली रकम कम होगी और उसका हिसाब एक एक्चुअरियल मेकानिज्म के आधार पर किया जाएगा।
4: समाज सुरक्षा मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 60 वर्ष की आयु से मिलने वाली संशोधित पेंशन सभी मॉरिशनों के लिए उपलब्ध होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मंत्रियों और जूनियर मिनिस्टर कुगन पगापेन तथा धनेश्वर दामरी की मौजूदगी में अशोक सुभो ने नई पेंशन व्यवस्था की रूपरेखा पर जानकारियां दी। कुगन पगापेन ने विस्तार से बताया कि ये सुधार कैसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और उन सभी लोगों पर लागू होगी जो 60 वर्ष की आयु से अपना पेंशन लेना चाहेंगे।
5: Ça principe de transition là, il est en cours là. Mais qui ajouté maintenant dans le SAP, c'est que cette personne qui sera anniversée à 60 ans le 1er janvier 2027, il pas nécessairement besoin attendre le 1er janvier 2029 pour être capable d'être éligible au SAP. Le premier jour à l'âge de 60 ans, il a le droit de décider s'il a envie qu'il touche ce SAP. Bien sûr, vu qu'il décide pour prendre lui deux ans en avance, ce qui était prévu, et aujourd'hui de 15 555, il peut gagner un SAP de 13 688 roupies. Qu'on assume un taux d'inflation de 3,5%, une compensation de 3,5% annuelle chaque année, nous trouvons que cette personne-là, à janvier 2027, à l'âge de 60 ans, nous estimons que ce SAP qu'il y peut gagner, c'est de 14 167 roupies. L'année ensuite, parce que pour la compensation par rapport au coût de la vie, 14 167 pour passe à 14 663. Quand il peut en 62 ans, c'est 15 176. Quand il peut en 63 ans, c'est 15 707. Quand il peut en 64 ans, 16 257. Et quand il gagne 65 ans, il peut gagner à la fois la compensation par rapport au coût de la vie, mais aussi ça qui déjà prévoit dans la loi par rapport à CSG, 1000 roupies additionnelles. Et là, il peut gagner 17 826. Donc, nous avons trouvé que juste sur une période de 5 ans, il commence le 14 167, il termine le 17 826. Donc, cette personne-là, quand il peut gagner sa pension-là, il n'est pas pour fixer à vie, comme certains peuvent dire, il peut rester sur ce chiffre-là. Et aussi, chaque année, quand il a un threshold, 65 ans, 75 ans, 90 ans, 100 ans, mais une augmentation qui est prévue, qui est prévue sur le BRP pour n'importe qui pensionné, il peut aussi bénéficier de cela.
4: साथ ही समाज सुरक्षा मंत्रालय जल्द ही आम जनता के लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर भी उपलब्ध कराएगा। इसकी मदद से लोग आवश्यक जानकारी भरकर अपनी अनुमानित पेंशन की राशि आसानी से जान सकेंगी।
3: मॉरिशस में डेमोग्राफी यानी आबादी के स्तर पर बड़ी बदलाव हो रही है। मॉरिशन लोग ज़्यादा लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, लेकिन बर्थ रेट यानी जन्म दर घट रही है। इस बदलाव का असर श्रम मंदी, पब्लिक फाइनेंस और आर्थिक विकास पर पहले से पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सभी विकास नीतियों के लिए आबादी से जुड़े रुझानों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ज़रा जानकारी आस्था गोविंद के साथ।
4: मॉरिशस की जनसंख्या धीरे धीरे बदल रही है। जन्म दर में लगातार गिरावट, लोगों की बढ़ती आयु और बदलती जीवन शैली के कारण देश की आबादी की संरचना बदल रही है। डॉक्टर क्रिस वालाइडो ने बताया, आमतौर पर किसी देश की आबादी को संतुलित बनाए रखने और उसके लगातार बने रहने के लिए हर 100 महिलाओं पर लगभग 210 बच्चों का जन्म होना चाहिए, लेकिन मॉरिशस में ये संख्या केवल करीब 140 है। हर साल हमारी आबादी लगभग 1000 से 3000 तक कम हो रही है और ये रुझान आगे भी जारी रहने की संभावना है। मेरा मानना है कि अगले 30 से 40 वर्षों में मॉरिशस की आबादी करीब 2 लाख तक कम हो सकती है। इस बदलाव का पहला असर रोजगार के सेक्टर पर पड़ेगा। कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या लगातार घटने की आशंका है। इसका मतलब ये भी है कि टैक्स देने वाले लोगों की संख्या कम होगी, जबकि पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सेक्टरों पर खर्च बढ़ता रहेगा। 15 से 64 वर्ष की उम्र वाले कामकाजी लोगों की संख्या 2022 से लगातार घट रही है और अगर इसकी भरपाई के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ये रुझान आगे भी जारी रहेगा। जैसे जैसे काम करने वाले मॉरिशनों की संख्या कम होगी और पेंशन पाने वालों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे कामकाजी लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा।
6: Évidemment, vous allez avoir la charge qui va peser sur cette personne qui doit payer la taxe va augmenter.
4: विशेषज्ञों का कहना है कि अब विकास से जुड़े हर फैसले में जनसंख्या के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखना होगा। चाहे बात आवास की हो, बुनियादी ढांचे की हो या कुशल प्रशिक्षण की, हर योजना को बदलती आबादी के अनुसार तैयार करना होगा।
6: Un plan de développement doit intégrer la variable démographique. Si on l'avait fait depuis
4: जनसंख्या के रुझानों को विकास योजनाओं का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। अगर आज़ादी के समय से ही ऐसा किया गया होता तो आज की कई चुनौतियों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता था। तभी हम ये भी बेहतर समझ सकते हैं कि पेंशन की उम्र को हमेशा पहले जैसा रखना क्यों संभव नहीं है और क्यों 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े रहने की जरूरत होगी। इसे ही हम सिल्वर इकोनॉमी कहते हैं। जनसंख्या से जुड़े बदलावों को सिर्फ समाज सुरक्षा या पेंशन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर सेक्टर और हर सरकारी नीति में इसे ध्यान में रखना होगा। आने वाले वर्षों में बढ़ती बुजुर्ग आबादी मॉरिशस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। यदि आज से ही जनसंख्या के बदलते रुझानों को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए तो भविष्य की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
3: विश्व आबादी दिवस के संदर्भ में ही मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेल्थ एसोसिएशन ने इस हफ्ते पोर्टली मीमोजन नामक प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की। यह सुविधा किशोरों और युवाओं के लिए स्थापित की गई है, जिससे जिसके जरिए उन्हें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां और ज़रूरी समर्थन प्रदान किया जाएगा। और मॉरिशस में बच्चों के साथ यौन हिंसा और यौन शोषण एक चिंताजनक वास्तविकता बनी हुई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार हर 3 पीड़ितों में से लगभग 2 की उम्र 16 साल से कम की है। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि सबसे कम उम्र के बच्चे ही मुख्य रूप से इसका शिकार होती है और इसलिए सभी को सतर्क रहना ज़रूरी है। 2025 की चीनी की फसल के लिए सिंडिकेट प्राइस यानी खेतीहरों और कारखानों के मालिकों को चीनी के लिए दी जाने वाली कीमत 24,095 रुपये प्रति टन तय की गई है। मर्शन शक्कर के व्यापार के जिम्मेदार शुगर सिंडिकेट के अनुसार इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी का ज़्यादा उत्पादन माना जा रहा है। याचना मिश्रा को सुनते हैं।
7: मॉरिशस शुगर सिंडिकेट ने शुक्रवार को 2025 के लिए चीनी के दाम पर जानकारी दी। MSS प्रति टन शक्कर के लिए खेतीहरों को 24,000 रुपये प्रदान करेगा। 2023 में रिकॉर्ड 30,954 रुपये की तुलना में ये भारी गिरावट दर्शाती है।
8: Les deux, trois dernières années, malheureusement, on a eu un surplus de production qui a mis la pression sur les prix.
7: दुर्भाग्य से पिछले दो तीन साल पैदावार ज्यादा थी, दामों को लेकर दबाव रहा। 2025 में 60% स्पेशल शुगर की पैदावार हुई जिनका दाम ज्यादा है, इससे दामों में गिरावट का असर थोड़ा कम हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद सरकार प्रति टन चीनी पर 35,000 रुपए की आय की गारंटी दे रही है उनके लिए जो 60 टन तक की चीनी का उत्पादन करते हैं। इस राशि में बैगस और मुलास का दाम भी शामिल है। 2025 की फसल के लिए इन दोनों को जोड़ा जाए तो दाम 29,600 रुपए तक पहुंचता है। सरकार ने 60,000 टन से कम शक्कर की पैदावार करने वाले खेतीहरों के लिए 35,000 रुपए की गारंटी दी, यानी टॉप अप सरकार की ओर से होगा। मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन का कहना है कि मौजूदा बाजार परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार का समर्थन बहुत जरूरी है। 6,500 किसान इस संगठन से जुड़े हैं जो देश के कुल चीनी उत्पादन में लगभग 20% का योगदान देते हैं।
8: Si nous fions seulement le 24 000 ici, nous pas capable couvrir le frais qui le business est à loss, hein?
7: 24,000 रुपए के साथ नुकसान ही होगा। बगस, मुलास और सरकार की मदद से खेतीहर अपनी खेती बरकरार रख पाएंगे और अच्छी कटनी भी कर पाएंगे। शुगर सिंडिकेट के अनुसार यूरोप में कुछ चीनी कारखानों के बंद होने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण अगले एक वर्ष के भीतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है।
3: डिप्रेशन यानी तनाव, चिंता और मानसिक थकान जैसी समस्याएं आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। मॉरिशस में भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों ने एक साझा पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय रहते सहायता उपलब्ध कराना और इस विषय पर खुलकर बात करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। विदेश में जोरदार चक्रवाती तूफान बावी की कल तड़के सुबह दक्षिण पूर्वी चीन पर प्रहार करने का अनुमान है। वहां ऑरेंज अलर्ट और दूसरे दर्जे की चेतावनी जारी की गई है। 9,00,000 से ज़्यादा लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों में पहुंचाया गया है। और 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। इस दौरे के अंतर्गत यूरेनियम के आयात को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कायम समझौता रीन्यू किया गया। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब पहले सेमीफाइनल का मुकाबला तय हो गया है। मंगलवार रात फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने की उम्मीद है। कल रात क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने कड़ी टक्कर के बाद बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। मिकेल मेरिनो ने निर्णायक गोल करके ला रोजा को प्रतियोगिता के अंतिम 4 में पहुँचने में अहम भूमिका निभाई। ज़्यादा जानकारी अरविंद बिसेसर के साथ।
9: And Spain take the lead late on. Mikel Merino climbing off the bench once.
10: लगातार दूसरी बार के लिए मिकेल मेरिनो अपनी टीम को आकर जितवाता है और स्पेन पहुंचती है वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में। देखा जाए तो मैच में लाहोरा का पल्ला भारी था, लेकिन सही तालमेल नहीं बैठ रहा था। फिर फर्स्ट हाफ में ही स्पेन का खाता खोलता है फाबियन रुइज। पर फर्स्ट हाफ समाप्त होने से कुछ ही मिनट पहले स्पेन इस वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल कंसीड करता है। रिकॉर्ड 649 मिनट तक रह जाता है गोलकीपर उनाई साइमन के लिए, मतलब स्पेन पर गोल स्कोर करने वाली पहली टीम बनी। सेकेंड हाफ में स्पेन अपना दबदबा मजबूत करता है और बेल्जियम का गोलकीपर चिबो कुतुआ हर प्रकार का सामना करता रहता है। इस बीच चिबो कुतुआ को चोट लगती है, आगे नहीं खेल पाता। उसके स्थान पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर सैन लामेंस को भेजा जाता है। आते ही गड़बड़, इस शॉट को नहीं रोक पाता मिकेल मेरिनो। पोर्टुगल की तरह यहां पर भी मौके को हाथ से नहीं जाने देता। कठिन रही ये जीत, पर क्वालिफिकेशन जेब में। स्पेन का सामना अब फ्रांस से होगा मंगलवार 14 जुलाई को। 2 चट्टान आमने सामने। एमबीसी टीवी पर इस मैच का सीधा प्रसारण होगा।
3: और वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल दौर धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। फ्रांस और स्पेन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अंतिम चार में जगह बनाने के लिए दो और टिकटों का फैसला आज शनिवार और रविवार को की रात होगा। इस दौरान दो बहुत ही रोमांचक

फाइनल मुकाबले के लिए जाएंगे। नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा, जबकि अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड भी आमने सामने होंगे। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं, खासकर आज रात से। और पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर। कल दिन के दौरान भी कुछ वर्षा हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है, इसलिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर कल सुबह के समय। कल सूर्योदय सुबह 7:15 बजे होगा।

इसी के साथ ये समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। Avenue Belle Bamboumi, Avenue Belle Bamboumi, 74 साल के, 74 years old के, श्री बासदेव नीला, श्री बासदेव नीला जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी। अर्थी कल दिन के एक बजे उनके घर एवेन्यू बेल बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। Maisonette Road, Rivière des Anguilles. Maisonette Road, Rivière des Anguilles. 73 साल की, 73 years old की, श्रीमती मारी क्लारिस जीनेट बेल, पैदाशी नाम अमादिस, और जो मारी क्लारिस नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई उनकी। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर मेजोनेट रोड रिविएरा डी ज़ोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। Royal Road, circonstance Saint-Pierre-Mi. Royal Road, circonstance Saint-Pierre-Mi. Ikiasi Sal, K. 81 years old, K. Shri Devindas Venkama. Shri Devindas Venkama. Jo Das Naam Se Zyada Jane Jate Thi Ki Mrityu Ho Gayi Unki Arthi. Kal Din Ki 10 Baje Unki Beti Shrimati Preeti Jugana Ki Ghar, Royal Road, circonstance श्रीमती प्रीति जुगाना के घर रॉयल रोड सियाकोंस्टांस सैंपियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। स्कूल लेन पॉइंट पीमामी 68 साल की, 68 ईयर्स ओल्ड की, श्रीमती रितु माला गोरीबा, जो मीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई उनके। अर्थी पैदाशी नाम सुकुना, और जो मीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई उनके। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर स्कूल लेन पर तपीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसा लेन पौतवी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड्स में 59 साल के, 59 ईयर्स ओल्ड के, श्री धीरज बागीरथी, जो विकास नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई उनके। अर्थी कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री विवेक बागीरथी के घर सोशल वेलफेयर सेंटर रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन चुमरू एट 2 PM।

0: Skolin må selvmant Saint-André mi, skolin må selvmant Saint-André mi, til han besale ki, 93 years old, ki shmeti nomauti bina, shmeti nomauti bina, jo nani naam se sada jani jati thi ki mriti ho gayi hun ki arthi, kal din ke 11 baje unke bete, Shri Hamid Chen Lachman ke ghar, स्कूल लेन मोसलमान सेंट एंड्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसलमान सेंट एंड्रे की शमशान भूमि ले जाया जाएगा क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM एवेन्यू स्टैनली 4 बोनमी एवेन्यू स्टैनली 4 बोनमी 82 साल की 82 इयर्स ओल्ड की श्रीमती कौसिलिया मंदिल रामबरत श्रीमती कौसिलिया मंदिल रामबरत जो अनसुया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी सोमवार 13 जुलाई को शाम के चार बजे उनकी बेटी श्रीमती शानीस मंदिर के घर एवेन्यू स्टैनली 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स दफनाने के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी फ्यूनरल ऑन मंडे 13 जुलाई एट 4 PM Monseigneur Lin Okule Kyopepme, Monseigneur Lin Okule Kyopepme, 94 साल के, 94 years old के श्री डॉक्टर हेमलाल बंजन, श्री डॉक्टर हेमलाल बंजन, जो डॉक्टर नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी, कल दिन के एक बजे, उनके घर मोसेन्योर लिन ओकुले क्यूपिप से उठाकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए क्यूपिप के सैं क्लेमों गिरजाघर ले जाई जाएगी और बाद में अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM सीजियम मिल फोरेसा क्यूपिप में 93 साल के 93 years old के श्री मनीला जीवता जो तोमान नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनके घर सीजियम मिल फोरेसा क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सीजियम मिल फोरेसा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 2:30 PM रिश्मा रोड सेंट द फ्लैग मी 63 साल की 63 years old की श्रीमती तारामती बेंगी रोटी पैदाइशी नाम जाओरी और जो फोनो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती मनीषा बिजमोहन के घर रिश्मा रोड सेंट द फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए L'aventure qui shmashan bhoumi li jai jai gi krimishan tomorrow at 11 AM. Ganou road rivière du Bosmi, chaurasi sal ki 84 years old ki. Shimati Sumitra Ganou. Paidashinam Bhojawan. Aur jo mama vina inam se zada jani jati thi krimiti ho gayi unki arthi. कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री विनय गनु के घर गनु रोड रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंहाबू रिविया जुपस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM एवेन्यू सीटन बासन रोड 4 बोन में एवेन्यू सीटन बासन रोड 4 बोन में 79 साल की 79 years old की श्रीमती वसंती कुमारी अनद पैदाइशी नाम बुधन की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन उनकी अर्थी वैसे आज उठा ली गई है आज दिन के 2:30 बजे पोथीराम लेन विच्यामिल ट्रियोले में 74 साल की 74 इयर्स ओल्ड की कुमारी अस्वंती नुरतन की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके घर पोटी राम लेन अभिचम मिल ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Music, Dr. Gatta.
2: RM2, Radio Mus-

0: म्यूजिक टकटकाते
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ऑलराइट, 6:35 हो चुके हैं। एंड चलिए, प्यार सीखने और ना ही सिखाने वाली चीज़ होती है ये, तो जैसे ही हमारा जन्म होता है ना, वो हमारे अंदर ही होता है। तो चलिए, उतने ही प्यार से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक गेम। वंस अगेन वी आर प्लेइंग विद अभिजीत कॉन्सर्ट। और अगर आपकी जीत होती है तो आपको मौका मिलेगा टू विन वन टिकट वर्थ 850 रुपीज टू असिस्ट द गोल्डन 90s एरा फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। तो आपको हमें बताना है कि जो कॉन्सर्ट है वो कब होने वाला है, जो अभिजीत भट्टाचार्य का कॉन्सर्ट है वो कब होने वाला है। यू हैव टू गिव अस द राइट आंसर ऑन 5499-1294 पूरे नाम और पते के साथ। ऑल द बेस्ट।
0: Music, Dr. Gutter.
1: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: चलिए, यहाँ पर हमने आपसे एक सवाल किया था, जो अभिजीत वाला कॉन्सर्ट होने वाला है वो कौन सी तारीख में होगा, एंड द राइट आंसर इज 25 जुलाई 2026, यानी कि 25 जुलाई 2026। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए, बट यहाँ पर लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है प्रियम बिहारी ऑफ थ्रियोली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू प्रियम जी, एंड आपको ऑफकोर्स मौका मिला है टू विन One ticket to the Golden 90s Era 2 featuring Abhijit Bhattacharya live in concert on Saturday 25th July 2026 as from 7:30 PM at SVI CC Pi. Step into a world of nostalgia and relive the unforgettable voice that defined Bollywood's Golden Era, or ek timeless melodies ki sham ko enjoy kijiye with the legendary hits and pure musical magic. So aapko hum bata dete hain that ticket start as from 850 rupees and are available at moticket.mu or Rezo Utayo. Don't miss this unforgettable concert experience. Or reservation ke liye aap phone kar sakte hain hotline pe, which is 466-9999, 466-9999. So once again Priyam, aapko many many congratulations, and let me tell you that aapko MBC खुद आकर अपना जो टिकट है कलेक्ट करना है, सो यू हैव टू कम विद योर आईडी कार्ड। वीकडेज के दौरान आप आ सकते हैं 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच, और आकर अपना गिफ्ट कलेक्ट कीजिए। सो वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

The Safe Hands of Vikash Ramdhani जो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए जानकार बीट्स ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल गीतों के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड ये बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो चलिए गाने के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स अपडेट्स भी मिल जाएंगे और साथ में आपको मौका भी मिलेगा टू सेंड सम ऑफ योर मैसेजेस ऑन 5499 1294 चलिए इसी के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द तब तक के लिए टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय

0: झंकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: रात के 5:25। नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय जोन झंकार बीट्स एवरी सैटरडे इवनिंग, शनिवार की रात 7-9 के बीच रेडियो मस्ती पर RM2 7-9 विद मी। एक छोटी सी मुलाकात में हूँ विकास और हूँ आपके साथ रात के 9 तक एज यूजुअल। एंड दिस इज ए स्पेशल सेगमेंट, ए ब्लेंड ऑफ म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स की बात हुई तो आजकल वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस चल रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप, एंड इट्स हैपनिंग, ग्रेट हैपनिंग। मॉरिशस में

0: दी है तो यूएस में हाई गर्मी, द हीट इज ऑन, और आज रात जो तापमान जो है टेम्परेचर जो है वो और भी बढ़ेगा। जब इंग्लैंड और नॉर्वे करेंगे एक दूसरे का आमना सामना, इट्स अ ग्रेट मैच, और गोल तो बनेंगे ही क्योंकि दो गोल मशीन जो वहां पर है, एक और है अर्लिंग हैलैंड, दूसरी और है हैरी केन, दोनों में कौन ज्यादा गोल बनाएगा। फिलहाल तो हैलैंड इज लीडिंग विद 7 गोल्स, हैरी केन ने अब तक 5 गोल स्कोर किए हैं। सो इट्स क्वार्टर फाइनल नंबर 3, तड़के 1 बजे यानी आज रात 12 बजे के बाद जो 1 बजे आता है उसमें 1 बजे होगा इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे, और फिर सुबह 5 बजे, कल सुबह 5 बजे जब ये मैच समाप्त हो जाएगा, 1 बजे यदि मैच आरंभ होगा तो लगभग 3 बजे समाप्त होगा, उसके बाद 5 बजे क्वार्टर फाइनल नंबर 4 बिटवीन अर्जेंटीना एंड स्विट्जरलैंड, ये दोनों ही मैच कल सुबह खेले जाएंगे, यानी कि कल सुबह 7-8 बजे तक आप लोग, आपको तड़के जागना होगा, फिर जागे रहना होगा, जागते रहो। दो मैचेस, सो और स्पेन कल जीत पाया तो वो पहला होगा एक्सप्लोजिव धमाकेदार सेमीफाइनल बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, मंगलवार रात 11 बजे। स्टे ट्यून्ड एंड सुनते रहिए
1: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
0: ये स्पेन कल जीत पाया, अच्छा कल जीत पाया 2-1 से अगेंस्ट बेल्जियम, एंड स्पेन इज क्वालिफाइड। एक धमाकेदार एक्सप्लोजिव मैच अगेंस्ट एकिप डी फ्रांस, जिसकी जीत हुई थी मोरक्को के विरुद्ध

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

All right, welcome back to sports and music, sports and मस्ती झंकार बीच में. सो वर्ल्ड कप में आज दो मैच खेले जाएंगे, आज नहीं बल्कि कल रात, कल सुबह तक दो मैच खेले जाएंगे. एक सुबह 1 बजे इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे और सुबह कल सुबह 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड. एंड से इट्स वेरी प्रोबेबल, बहुत संभव है कि फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनल में एक इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस एक्सप्लोजिव धमाकेदार ये फाइनल संभव है. इट्स पॉसिबल, जैसे अभी हो रहा है, क्योंकि फाइनल सेमीफाइनल में फ्रांस पहुंच चुका है अगेंस्ट स्पेन. और यदि आज सुबह इंग्लैंड जीत गया अगेंस्ट नॉर्वे तो वो भी पहुंच जाएगा. एंड इंग्लैंड विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ईदर अर्जेंटीना या फिर स्विट्जरलैंड, और वहां से फाइनल में पहुंच जाते हुए, यानी कि संभावना है, मेनी इफ्स, यदि अगर मगर, पर ऐसा संभव है. और ऐसा हुआ तो सोने पे सुहागा, बहुत ही फॉर द टाइम बीइंग कहना पड़ेगा कि फ्रांस इज द टीम टू बीट. बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है फ्रांस के लिए, एक टीम नहीं, दो दो टीमें हैं. किसी जिस किसी को भी निकालो, जो भी आता है रिप्लेस करने के लिए, वो भी अच्छा ही खिलाड़ी है. और इस वर्तमान वर्ल्ड कप में ऐसी बहुत सी कम ही ऐसी टीमें हैं जहां पर दो दो टीमें, अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर है. सो फ्रांस इज डूइंग रियली वेल विद द लाइक्स ऑफ किलियान एम्बापे, बाकुला, जस्ट नेम इट, वो बालों दो विजेता उस्मान देम्बेले, एंड जिस किसी के भी नाम लो, दे आर प्लेइंग वेल. और इंग्लैंड का स्टाइल बदल गया है, खासतौर पे जो मैच खेला उसने मेक्सिको के विरुद्ध, दैट वाज एन आई ओपनर. एंड जूड बेलिंगहम ने अपना तेवर दिखाया. सो सब, हर कोई बात कर रहा है हैरिकेन को लेकर, हैरिकेन जिसने बहुत सारे गोल स्कोर किए हैं, 5 गोल दागे हैं. बट जूड बेलिंगहम रियली प्लेड वेल अपने आखिरी मैच में, एंड इज ही इंडिस्पेंसेबल, ये तो वक्त ही बताएगा. पर प्लेइंग वेल जूड बेलिंगहम, मिडफील्ड संभाल रहा है और अटैक भी कर रहा है, एंड डिफेंस भी संभाल गया है. सो रिस जेम्स और डेक्लान राइस आदि ट्रेन कर पाए, प्रोबेबली दे विल बी प्लेइंग. और सब कुछ अच्छा चला तो नॉर्वे का अर्लिंग हैलैंड जो है उसको रोकना मुश्किल तो है, लेकिन मुमकिन नहीं है. दे नो हिम इन इंग्लैंड. और नॉर्वे की हार हुई थी अपना, आई एम नॉट मिस्टेकन, अगेंस्ट फ्रांस 3-0 से अभी फर्स्ट राउंड में. सो पॉइनाबल टीम, अच्छी टीम है. पर इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे सुबह 1 बजे और 5 बजे स्विट्जरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना देखते रहिए और सुनते रहिए. नंबर वही है 5499-1294-5499-1294-9994.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: आदत डालनी पड़ेगी सैटरडे इवनिंग 7 to 9 हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात ऑन रेडियो मस्ती RM2 मैं हूँ विकास और दिस इज शंकर बीट्स ए ब्लेंड ऑफ म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स और आजकल तो वर्ल्ड कप की चर्चा चल रही है एंड अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड कप वी आल्सो हैव क्रिकेट मैचेस गोइंग ऑन इंडिया की दोनों टीमें पुरुष और महिला दोनों टीमें अभी खेल रही हैं एंड बोथ प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड यदि महिला टीम की समय अच्छी कोशिश चल रही है ये फर्स्ट टेस्ट मैच है तो पुरुष टीम का जो पांचवा T20 मैच है यहां पर भी इंग्लैंड लीडिंग फॉर द टाइम बीइंग लीडिंग इंडिया अच्छा बटलर एंड ब्रूक स्मैक 50s एज इंग्लैंड डोमिनेट इंडिया अगेन बात करेंगे इन सब पर लेकिन फिलहाल 5499-1294-5499-1294 पे वी हैव ए स्पेशल रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम रवि हाय रवि रवि एंड अंजू लिसनिंग राइट नाउ वेलकम वेलकम आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और खासतौर पे आप ये जो अगला गीत है आप मांग रहे हैं अपने सुपुत्र के लिए जो जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में है योसन एरन जो भी एक सप्ताह पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है अपनी उच्च पढ़ाई के लिए फॉर द स्टडी सो शुभकामनाएं बेस्ट विशेस टू यू एरन कीप डूइंग वेल अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो व्हाटएवर यू आर बिकॉज यू बीन गुड ऑलवेज और अभी भी एंड दे मिस यू अलॉट यानी रवि और अंजू आपको मिस कर रहे हैं एंड और ऑफ कोर्स फ्रॉम योर नानी एंड ऑल फैमिली गामयाद एंड गावा फैमिली और फॉर यू एरन इन ऑस्ट्रेलिया और आपके सभी दोस्तों के लिए सभी फैमिली मेंबर्स के लिए रिलेटिव्स एंड एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग राइट नाउ और पुष्नि के लिए भी इट्स स्पेशल रिक्वेस्ट और नानी जो अब साथ में नहीं है वो भी अभी बहुत खुश होंगी अभी जहाँ भी है और 40 दिन आज हो गए हैं जब से छोड़ कर गई हैं लेकिन बहुत ही खुश होंगी हमें उम्मीद है पूरा भरोसा है कि जब देखते हैं कि नाती पोते जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं सो दिस वन फॉर यू एरन एंड फैमिली फ्रॉम रवि एंड अंजू एंड फॉर द होल फैमिली दिस वन गोज़ टू यू
1: RM2 Radio Musti
0: Chunkar Beats

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
3: टक टक बॉलीवुड।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वार्टर फाइनल राउंड आज तीसरा और चौथा मैच कल सुबह ये दो मैच खेले जाएंगे एंड देन सेमीफाइनल मंगलवार और बुधवार की रात 11 बजे दोनों मैच खेले जाएंगे एंड ग्रैंड फिनाले संडे की रात 11 बजे वो भी होगा रात 11 बजे ही सो गेट सेट टू वेलकम दीज मैचेस चार साल में एक बार आता है और चलो कोई बात नहीं नींद खराब होती है लेकिन कितना सुकून भी मिलता है ये दिमाग में रहता है ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे फुटबॉल अच्छे अच्छे मैचेस अच्छे अच्छे ड्रिबलिंग्स एंड ऑल दीज कितना अच्छा लगता है 5499129454 9991294 पे हमारा दोस्त गिरीश हरलोल हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है हाय गिरीश वेलकम टू रेडियो मस्ती RM2 आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और संगीत के साथ भी आप जुड़े रहते हैं सो ये गाना जो है अगला वो भी चलेगा आपके नाम एंड थैंक यू जुड़ने के लिए और चुनने के लिए यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन 5499129454 9991294 संगीत और स्पोर्ट्स का अद्भुत संगम मिलन होता है रेडियो मस्ती RM2 पर एवरी सैटरडे 7 to 9 हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात सो लाइव रिपोर्टिंग ऑन रेडियो मस्ती एवरी सैटरडे 7 to 9 अभी रिपोर्ट ये है कि मोरक्को के आउट होने के बाद यानी कि अफ्रीका की सभी टीमें तो आउट हो गई हैं एंड द लास्ट अफ्रीकन टीम वाज मोरक्को क्वार्टर फाइनल राउंड में ही ढेर हो गई अगेंस्ट फ्रांस ए स्ट्रॉन्ग एकीप दे फ्रांस पर अभी से कुछ ही मिनट पहले खबर आई है कि साउथ अफ्रीका और मामेलोडी सनडाउंस के 25 वर्षीय 25 ईयर ओल्ड मिडफील्डर जेडन एडम्स की अकस्मात मृत्यु हो गई सो इट्स शॉकिंग पुलिस अभी तक कारणों का पता लगाने की कोशिश में है साउथ अफ्रीका इज डिवास्टेटेड बाय द अनटाइमली डेथ ऑफ जेडन एडम्स कहा स्पोर्ट्स मिनिस्टर और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स यूनियन ने बता दें कि जेडन एडम्स जो है वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीनों मैच खेल पाया एंड ही वॉज ए ग्रेट मिडफील्डर बहुत उम्दा खिलाड़ी और लास्ट 16 में हारने के बाद स्क्वाड के साथ घर लौट आया था और अब ये बुरी खबर सामने आई है पुलिस की जांच जारी है अनफॉर्चुनेटली फुटबॉलर्स के साथ ऐसा भी होता है सो 5499129454 9991294 पे आपके मैसेजेस भेजते रहिए

0: and gentlemen, you are listening to Chunka Beats.
1: RM2, Radio Musty.
2: Right, live reporting on Radio Musti, RM2, ये चंकार बीट्स और रिपोर्ट अभी लाइव ये आ रही कि क्रिकेट में भारत की दो टीमें इस समय खेल रही हैं, महिला टीम और पुरुष टीम भी. पुरुष टीम की अभी खूब पिटाई हो रही है. अभी इंग्लैंड ने बैटिंग, इंग्लैंड की बैटिंग पूरी हो रही है. 19.5 ओवर यानी कि एक लास्ट गेंद अभी बची हुई है. इट्स 255 for 3, 3 विकेट के नुकसान पर 255 रन फॉर ए T20 मैच. इट्स ह्यूज ह्यूज. और इसमें बटलर ने कुल मिलाकर 131 रन बनाए, जिनमें 12 चौके और 8 छक्के भी रहे. सो बटलर ने बड़ा कमाल कर दिया. एंड ब्रूक इज नॉट आउट ऑन 93, नॉट हैपनिंग फॉर द इंडियन टीम. प्रथम जो 3 मैच हैं वे हार चुके हैं, एक मैच तो रद्द कर दिया गया था. सो कह सकते हैं इन 5 मैचों की सीरीज में 4 मैच तो वे हार चुके, 3 मैच हार चुके, एक तो कैंसिल कर दिया गया. एंड देन दिस इज द 4th मैच. इसमें भी लगता है इट्स ओवर फॉर इंग्लैंड. इनका ओवर पूरा हुआ विद 3 विकेट्स डाउन, 257 रन, 257 रन. ये तो कभी कभी वनडे में भी इतना रन नहीं बनता है. सो T20 में 257 for 3. अब इंडियन टीम की बैटिंग की बारी है. अभी कुछ समय बाद उनकी बारी अभी आएगी. सो ये तो रहा भी पुरुष वर्ग की का जो मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 मैच. और महिला वर्ग में इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडियन लेडीज टेस्ट मैच का ये दूसरा दिन है. और कल अपनी पारी में इंडियन वुमेन ने 285 रन बनाए और ऑल आउट हो गए. जवाब के तौर पर इंग्लैंड वुमेन केवल 170 पर ही ऑल आउट हो गई. और इंडिया की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है. दे आर 64 for 0 विकेट डाउन. इट्स दे आर डूइंग ग्रेट. सो कुल मिलाकर अभी इंडिया वुमेन लीड इंग्लैंड वुमेन बाय 179 रन्स विद 10 विकेट्स रिमेनिंग.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: Jhankar Beats mein it's beating time. Kiski beating ho rahi hai? So it's tennis Wimbledon all चेक रिपब्लिक फाइनल में इस समय मुकाबला है लिंडा नुस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच. दोनों ही चेक रिपब्लिक की दो उम्दा खिलाड़ी हैं एंड दे इन द फाइनल. एक पहला सेट लिंडा नुस्कोवा जीत चुकी है विद द डोमिनेंट फर्स्ट सेट 6-2 अगेंस्ट कैरोलिना मुचोवा. और ये बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि फाइनल में दोनों खिलाड़ी जो हैं वो एक ही देश के हैं और वो भी चेक रिपब्लिक के. सो इट्स हैपनिंग. आज ये मैच भी चल रहा है, फाइनल मैच बिटवीन वुमेन्स सिंगल फाइनल. और बता दें कि टेनिस का जो पुरुष वर्ग का फाइनल है वो कल संडे को खेला जाएगा बिटवीन वर्ल्ड नंबर 2 यानिक सिनर एंड रोलांग गारोस चैंपियन अलेक्जेंडर ज़ेरेव. कल का जो मैच था बिटवीन यानिक सिनर एंड नोवाक जोकोविच, जो 39 साल का हो गया है, 39 ईयर ओल्ड नोवाक जोकोविच, इट एंडेड इन ए क्लिनिकल विन बाय यानिक सिनर, जो शायद 26 साल का है और वो वर्ल्ड नंबर 2 फिलहाल है. शायद ये फाइनल जीत कर वो फिर से वर्ल्ड नंबर 1 पर आ जाएगा, स्पॉट पर आ जाएगा. एंड 6-4, 6-4, 6-4, he was good, Novak Djokovic, लेकिन not good enough to beat Yannick Sinner. So कल का फाइनल होगा Yannick Sinner and Alexander Zverev के बीच. 5499-1294-5499-1294 पे अपना मैसेज भेजते रहिए.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: चलिए बैक टू स्पोर्ट्स न्यूज़। और खबर यह है कि लिवरपूल का पुराना कोच यर्गन क्लोप ने फाइनली इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पर उसने जर्मनी का नेशनल कोच बनने की स्वीकृति दे दी है एंड इट्स ऑलमोस्ट फाइनल। यर्गन क्लोप हैज रीच्ड एन एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल टू बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ जर्मनीज मेंस नेशनल टीम। ये समझौता कल ही शुक्रवार को तय हुआ बिटवीन द फॉर्मर लिवरपूल बॉस एंड सीनियर जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन DFB ऑफिशियल्स। न्यूयॉर्क में ही कल ये बातें संपन्न हुई। सो लिवरपूल को छोड़ने के दो साल बाद यर्गन क्लोप अपने संन्यास से निकलकर वापस आ रहा है फुटबॉल वर्ल्ड में। एंड होल्डन नागेल्समैन ने अभी जर्मनी के अर्ली एग्जिट के बाद पद छोड़ दिया, तब जाकर यर्गन क्लोप ने ये स्वीकार किया। एंड इट अपीयर्स कि यर्गन क्लोप विल अग्री ए 4-year कॉन्ट्रैक्ट जर्मन नेशनल टीम के साथ लिवरपूल में 9 साल बिताने के बाद एंड विनिंग लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज। एंड साल 2024 में 2024 में उसने क्लब को छोड़ा एंड हिज फर्स्ट इन इंटरनेशनल फुटबॉल। अब जाकर वो जर्मन कोच नेशनल कोच बनेगा एंड ऐसा मालूम पड़ता है कि ही इज गोइंग टू चेंज, बहुत कुछ बदलेगा वहाँ पर। द गेगन प्रेसिंग विल नाउ कम बैक टू जर्मन फुटबॉल जैसे लिवरपूल में किया था। और अब तो इराउला अंजोनी आ गया लिवरपूल में, वो क्या करेगा इन सब पर बात करेंगे। 5499-1294 5499-1294 पर बात करेंगे। अभी ट्रांसफर बाजार की भी पर ये भी है कि दे एग्जिस्ट ए पोटेंशियल फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल। हाँ, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। या इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, हु नोज। जो फेमस हैंड ऑफ गॉड था उसको वापस तो करना होगा ना। सो ये भी हो सकता है। एंड लेकिन क्या नॉर्वे भी ये वर्ल्ड कप जीत सकता है? लेट्स सी। देखते रहिए और सुनते रहिए।
1: झंकार बीट्स RM2 रेडियो मस्ती।
0: झंकार बीट्स।

0: इधर सर्दी उधर गर्मी एंड द हीट इज ऑन तापमान बढ़ने लगा है मायामी में नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड कल सुबह 1 बजे
1: सही है सही है।

0: सो फीफा वर्ल्ड कप न्यूज आज नहीं बल्कि कल सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, 1 बजे यानी मैच समाप्त होगा 3 बजे तक, उसके बाद 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, 4 क्वार्टर फाइनल मैच समाप्त हो जाएंगे, फिर ट्यूजडे 14 जुलाई सेमीफाइनल का पहला मैच 11 बजे बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, और वेंसडे की रात 11 बजे कौन दो सी दो टीमें होंगी सेमीफाइनल नंबर 2 में, सुनते रहिए
1: RM2 Radio Masti.

Live reporting, England woman 170 all out, Indian woman 285 all out first inning, second inning mates 93 for 1. और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, इंडिया की पारी शुरू हो चुकी है, एक विकेट गिर चुका है, इंडिया इज 38 फॉर 1, इंग्लैंड ने अभी इससे पहले 257 रन बनाए, ह्यूज स्कोर.

0: मायामी स्टेडियम में कल सुबह 1 बजे से धुआं जरूर निकलेगा बिटवीन इंग्लैंड एंड नॉर्वे.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: धुआं निकला है तो आग कहीं ना कहीं लगी होंगी और आग लगी है भी विम्बलडन के फाइनल में. इट्स द ब्रेक पॉइंट फॉर मुचोवा क्योंकि लिंडा नोस्कोवा अभी अपने मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल की ओर बढ़ रही है. फर्स्ट सेट 6-2 से जीतने के बाद अभी वो 5-3 से वो ये दूसरा सेट जीत रही है और लड़कियों के लिए केवल बेस्ट ऑफ 3 होती है. एंड फाइनली इट्स ब्रेक पॉइंट इज इट कैरोलिना मुचोवा जो 10वें स्थान पर है, 10वें पायदान पर है और लिंडा नोस्कोवा 9वें पर है. दे आर गुड फ्रेंड्स एक ही देश के ऑफकोर्स एंड दे हैव प्लेड पेयरिंग भी हो चुके हैं इनकी. पेयर आर गुड फ्रेंड्स एंड प्लेड डबल्स टुगेदर एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स. अच्छी दोस्त हैं लेकिन जब ट्रॉफी की बात आती है तो दोस्ती अलग और ट्रॉफी अलग थलग. सो इज इट ओवर गेटिंग टू विद इन अ गेम ऑफ द विम्बलडन टाइटल वॉज द ईजी पार्ट. Getting over the line is not so straightforward. So break point abhi ek aur game bacha hai 6-2 and 5-3. Dekhte hain aage aage hota hai kya. 5499-1294-549-9914. So live reporting ek nazar dekhte hain cricket par. Cricket mein India abhi 65-2. So not happening for team India kyunki gadbad hai abhi. इंडियन टीम जो है इंग्लैंड ने 257 रन बनाए थे अपनी पारी में 257-3 और इंडियन टीम अभी 2 विकेट के नुकसान पर 65 पर खेल रही है. संजू सैमसन केवल 27 रन बना पाया, 3 रन अभिषेक शर्मा की ओर से. ईशान किशन अभी नॉट आउट है ऑन 25 और श्रेयस अय्यर भी नॉट आउट 9 रनों पर, 2 विकेट गिर चुके हैं. सो ये 5वां और आखिरी टी20 मैच है इन दोनों के बीच.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट। रेडियो मस्ती सुनते रहो।

0: feeling strong.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to
2: Chunka Beats.
3: RM2, Radio Musti.
4: इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे तैयारी हो रही है अभी सुबह एक बजे जी मैच खेला जाएगा मायामी में और उधर गर्मी है तापमान बढ़ रहा है और इधर टेनिस विंबलडन के फाइनल में इट्स नॉट कमाल हो रहा है अभी 5-3 से नुस्कोवा सेकंड सेट जीत रही थी बस एक ही और सेट था एक गेम और था लेकिन अभी जो है 4-5 हो गया है 5-4 सो मुचोवा ग्रेट कमबैक फ्रॉम मुचोवा सो कुछ भी हो सकता है मैच समाप्त नहीं हुआ है एंड दोनों एक ही देश की है चेक रिपब्लिक सो प्रोबेबली कुछ हुआ होगा 5-4 से अभी फिर भी नुस्कोवा की जीत हो रही है लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है क्रिकेट न्यूज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया इट्स 96-2 नाउ 8.3 overs, not bad for team India, लेकिन

0: अब विकेट बचा के रखना पड़ेगा. किशन ईशान किशन ने 42, श्रेयस अय्यर 22 पर दोनों नॉट आउट है. सो अभी 96 फॉर 2 8.3 ओवर्स, यानी कि कुल मिलाकर अभी 11.3 ओवर अभी बाकी है उनको. द नीड इंडिया नीड 162 रन्स टू विन फ्रॉम 11.3 ओवर्स विद 8 विकेट्स रिमेनिंग. So, बात कर रहे थे इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे, इसमें भी कमाल का ये मैच होगा. गोल मशीन या फिर हैरिकेन वर्सेस हैलेन का तूफान. गोल मशीन एर्लिंग हैलेन के दम पर नॉर्वे इस मुकाम पर पहली बार पहुंचकर पहले से ही इतिहास रच चुका है. तो दूसरी ओर इंग्लैंड 60 सालों में, इन 60 ईयर्स, अभी तक वो इस ट्रॉफी का प्यासा है. आपको याद होगा 1966 में उसने ये ट्रॉफी जीती थी, द ओनली टाइम. उसके बाद सेमीफाइनल में पहुंचा लेकिन फाइनल तक भी रास्ता नहीं बना पाया. मे बी दिस टाइम सवाल बस इतना सा है कि क्या द थ्री लायंस आज सुबह, कल सुबह फिर दहाड़ेंगे या नॉर्वे के वाइकिंग्स एक बार फिर इंग्लैंड की उम्मीदें बहा ले जाएंगे. जवाब कल तड़के 1 बजे से मायामी गार्डन्स के हार्ड रॉक स्टेडियम में. हैरिकेन ने यदि अब तक 5 गोल बनाए हैं तो एर्लिंग हैलेन ने 7 गोल दागे हैं और ये दोनों अभी भी लियोनेल मेसी और किलियान एम्बापे के साथ, जिन्होंने 7-7 गोल स्कोर, आई थिंक 8 गोल्स पर बाय एम्बापे एंड 8 फॉर लियोनेल मेसी. सो अभी भी ये सब गोल्डन बूट जीतने के प्रबल दावेदार हैं, कंटेंडर हैं. सो देखते रहिए और सुनते रहिए. 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, फिर 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड.
1: झलकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती.
1: झलकार बीट्स.
0: सो ये दोनों मैच देखने हैं 1 बजे और फिर 5 बजे. सो नींद को जुगा कर रखना है या फिर अभी से ही आप सो जाइए, जागना पड़ेगा. 4 साल में एक बार आता है ऐसा मौका और ये मौका हाथ से जाने न देना. इट्स वर्ल्ड कप 2026, फीफा वर्ल्ड कप. द ग्रेटेस्ट टीम्स अभी भी हैं इन. फिलहाल फ्रांस इज द टीम टू बीट, बट इंग्लैंड इज प्लेइंग वेल. डेंजर खतरा है अर्जेंटीना विद लियोनेल मेसी. 39 साल का है पर बंदा कमाल का है.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: झंकार बीच में झंकृत करने के लिए टेनिस में इट्स बिकमिंग इनसेन इट्स इनसेन इनफैक्ट लिंडा मुस्कोवा एक सेट तो जीत चुकी थी 6-2 से और सेकंड सेट जो है वो 5-3 से जीत रही थी लेकिन अब

0: और फिर 180 डिग्रीज यू टर्न और कैरोलिना मुचोवा जीतने लगी है सेकंड सेट फ्रॉम लूजिंग साइड 3-5 अब वो 6-5 से जीत रही है इनक्रेडिबल बट ट्रू अब सेट उसके हक में चला गया है लिंडा नुस्कोवा अभी सर्व कर रही है और 5 उसके लिए है 7 इट्स 7-5 सो सेकंड सेट जो है कैरोलिना मुचोवा जीत चुकी है सो इट्स 1-1 अब 5 मैच पॉइंट उसने गंवा दिए लिंडा नुस्कोवा 5 मैच पॉइंट तब जाकर वो हार गई ये सेकंड सेट शायद ये मौका उसको फिर ना मिलेगा सो इट्स 1 फॉर लिंडा नुस्कोवा 6-2 एंड 7-5 फॉर कैरोलिना मुचोवा इट्स द फाइनल ऑफ विंबलडन वुमेन्स टाइटल दोनों के लिए ये एक प्रीमियर है फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल सो कोई भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और बता दें कि पुरुष वर्ग का फाइनल होगा कल बिटवीन यानिक सिनर एंड अलेक्जेंडर ज़ेरेव ये भी एक कमाल का फाइनल होगा और क्रिकेट में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर सो इंडिया के लिए 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन 110 अब 111 49 पर ईशान किशन खेल रहा है नॉट आउट श्रेयस अय्यर अभी अभी आउट हुआ है ऑन 28 सो अभी भी 9 इंडिया नीड 147 रन टू विन फ्रॉम 9.4 overs with 7 wickets remaining.
1: Jhankar Beats.
2: RM2. Radio Musti.
0: Chaliye, last for the road. Bhulega nahi, kal subah 1 baje, tadke 1 baje, England versus Norway. फिर सुबह 5 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा
3: देखता रहा पता
0: देखते रहिए और सुनते रहिए यानी सुपर संडे की सुपर सुबह
3: गली निकल गया सामने
0: कल सुबह फिर मिलेंगे विद द लेटेस्ट न्यूज 7:30 AM शार्प ऑन रेडियो मस्ती तब तक के लिए इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी बाय बाय शुभ रात्रि सबाल खैर फिर मिलेंगे नमस्कार और शुभ रात्रि

हाँ सो दोस्तों वीकेंड ऑफिशियली शुरू हो चुका है और सैटरडे इवनिंग का असली मजा तभी आता है जब बॉलीवुड बीट्स हो फुल वॉल्यूम पर। मैं हूँ वेदिता और मैं आप सबों का एक बार फिर से वेलकम करना चाहूंगी। आपका मूड जैसा भी है आपके मूड को हम एनर्जेटिक बना देंगे। रेडी है तो स्माइल के साथ एंजॉय करना शुरू कीजिए। ये है आपका लेट नाइट जोन।

हाय फ्रेंड्स, अगर आप इस समय रोड पर हैं तो सेफ ड्राइव कीजिए और रेडियो मस्ती को अपना ट्रैवल पार्टनर बनाए रखिए। चलिए जी, विदिता का साथ है, लेट नाइट ग्रुप हमारा प्रोग्राम है, पेपी गाने हैं आपके लिए नॉन स्टॉप। ऐसा करो, सीट बेल्ट लगाइए और रिदम के साथ जर्नी को मेमोरेबल बनाए।

सैटरडे इवनिंग और फ्रेंड्स, हा हा हा, ये होता है असली कॉम्बिनेशन। अगर आप अपनी गैंग के साथ हैं, तो एक सेल्फी तो बनती है। चलो भाई, सेल्फी के लिए स्माइल जरा अच्छी वाली देना, और बैकग्राउंड में रेडियो मस्ती, सामने दोस्तों की मस्ती, क्या चाहिए लाइफ में, ये तो है जिंदगी। मैं वेदिता आप सबों का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने रेडियो मस्ती पर। प्रोग्राम है आपके लिए लेट नाइट क्रूज।

गाइस, लाइफ कितनी भी बिजी हो, वीकेंड हमेशा रिचार्ज का नाम है। तो आज निगेटिविटी को बाय बाय बोल दीजिए, पॉजिटिव वाइब्स को वेलकम कर दीजिए। वेदिता का साथ है लेट नाइट ग्रुप में, हम सफर बन जाइए। अगले गाने के साथ

दोस्तों ये बात तो आप भी मानोगे कि हम बड़े लकी हैं कि इस समय हम अपने इस प्रोग्राम के साथ आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आप घर पर हैं, आप फ्रेंड्स के साथ हैं, आप पार्टी कर रहे हो। कितने सारे लोग हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। हाउ कैन वी फॉरगेट दोज पुलिस ऑफिसर्स, अभी पुलिस स्टेशन में काम चल रहा है, हॉस्पिटल क्लिनिक्स में काम चल रहे हैं, कितने सारे लोग अभी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे, उन सबको मैं कहूँगी बोको।

भाई पार्टी घर पे हो या कार में या सिर्फ हेडफोन्स के साथ, सैटरडे इवनिंग का मूड तो बनता ही है ना। तो बॉलीवुड के सुपरहिट गाने हमारे पास हैं, विदिता का प्रोग्राम आपके साथ है, आप है रेडियो मस्ती पर और आपका जो एंटरटेनमेंट है ना

पता है दोस्तों, आपका साथी हमारे लिए बहुत कुछ है। ये आपका साथी है जो हमें एनर्जी देता है कि हम लोग देर तक आपके साथ रहें, आपको एंटरटेन करें। थैंक यू फॉर मेकिंग रेडियो मस्ती अ पार ऑफ वीकेंड। मैं हूँ वेदिता। प्रॉमिस करती हूँ हमारे गीतों के साथ आप आज बैठने वाली नहीं है, चांस नहीं दूंगी मैं। चलो तो

मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी कि एक गाना पूरे मूड को बदल देता है, है ना, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर देता है एक गाना। मुझे नहीं पता हमारे इतने सारे गीतों में आपको कौन सा पसंद आया हमारा गाना, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका टेंशन तो गया होगा तेल लेने। एनीवे, चले उसी तेल में हम अपने जितने भी क्या कहते हैं खुशियां हैं उनका भजिया बना के पकौड़ा बना के सब में बांटते हैं, खाते और एंजॉय करते हैं। विनीता का साथ है और आप सुन रहे हैं लेट नाइट क्रूज़ और रेडियो मस्ती।

क्या कहते हो, रेडी फॉर अनदर ब्लॉकबस्टर? अरे अब गाने ऐसे ऐसे लेकर आए हैं आपके लिए, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं और हम चाहते ही हैं कि हमारा प्रोग्राम भी यादगार बने, इसीलिए तो ऐसे ट्रैक्स लेकर आते हैं। चलो भाई वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा दो, पार्टी हमारी जा रही है।

सैटरडे इवनिंग का ये म्यूजिकल सफर बहुत खूबसूरत रहा आपके साथ. मैं हूँ विदिता, आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स रेडियो मस्ती पर. तो चलो दोस्तों, जाने का टाइम हो गया है. यू कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग गुड वाइब्स. याद रखिए, लाइफ थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है जब बैकग्राउंड में रेडियो मस्ती के गाने चलते हैं. तो खुश रहिए, प्यार से रहिए, गुनगुनाते रहिए एंड पार्टी जारी रखिए. मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द इन लेट नाइट ग्रूव्स. अभी तो आप रेडियो मस्ती पर गाने एंजॉय कीजिए.

सैटरडे इवनिंग हो और पार्टी ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता. रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हो, कुछ तो होना ही चाहिए. नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूँ वेदिता और आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव आपके अपने रेडियो मस्ती पर. सो सैटरडे इवनिंग का जो मूड है एकदम सेलिब्रेशन ऑन होना चाहिए. आप चाहे ड्राइव कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हो दोस्तों के साथ या घर पर चिल कर रहे हो, नॉन स्टॉप पैपी

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं, जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
2: अरे सुन सुन।
3: यस मां।
2: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
3: मां मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
2: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।